0: Ingen har bare skudt det.
1: Lunchbox with Kaiten.
2: Kiran, namaste, sasrikal, assalamualaikum, bulab ka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat show mein. Well, jiska naam hai Lunchbox Show. Mera naam hai Kaiten aur aap mujhe sun rahe hain straight from Hum Radio Studio. Ji haan, MediaWorks jo ki CBD mein hai aur aap mujhe sun rahe hain almost not just in Auckland but outside of Auckland as well. Chahe north ho ya fir south ho ya fir extreme south island ho. साउथलैंड हो न्यूजीलैंड का. वैसे एक सवाल मेरा आपसे है, साउथलैंड का सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम क्या है मुझे 5599 भी बताइए. बट यस, मैं अभी से लेके हूँ 3 बजे तक, बहुत सारी बातें करनी है. थोड़ी देर में आप सभी के लिए एक होम सिक रेमेडीज लेके आने वाला हूँ, यानी कि ऐसी चीज जो आप मिस करते हैं यहाँ पे. तो अगर आप ऐसी कोई चीज जानते हैं जो आप डेफिनेटली मिस करते हैं, मुझे टेक्स्ट कर दिए 5599 पे, बताइए मुझे. एक्चुअली कॉल भी करेंगे, आप कॉल भी कर सकते हैं 0800-00486 पे. बट यस, आप मुझे जल्दी से भेज दीजिए. बने रहिए बिकॉज उसके बाद ऑफिस शार्ट आउट की भी बातें करनी, यानी कि ऐसी चीजें जो आप ऑफिस में रह के कर रहे हैं अभी. इनफैक्ट यू नो यू आर ईटिंग और हैविंग लंच और नॉट, और वर्क फ्रॉम होम है या फिर अगर कर रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं, कहां से आपने ऑर्डर किया, ये सारी बातें आप मुझे बता सकते हैं. प्लस अगर आप कोई स्पेशल गाना आप डेडिकेशन चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, वो भी मुझे भेजिएगा. बट शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गाने से, खलीफा. बुर्ज खलीफा वाला नहीं, खलीफा A.R. रहमान की आवाज में.
1: बचाओ क्या,
3: बचाओ क्या?

0: Well, मुझे मैसेज मिला है, एक किसी शख्स ने सही जवाब दिया है। मैंने एक सवाल किया था कि साउथलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, और जवाब है इन्वकागल। वेल यस ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच यार ये जवाब देने के लिए। मैंने इसलिए भी पूछा था बिकॉज एकदम से रिमाइंड आया, मुझे हर दिन याद आती है इन्वकागल की। एक्चुअली नॉट लाइक यू नो आई वॉन्ट टू गो बैक देयर, बट ऑफ कोर्स मेरे 8-9 साल वहाँ पे निकले हैं, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई तो कनेक्शन जुड़ा ही होगा, राइट? सो यस, हर दिन मुझे इन्वकागल, और ऑफ कोर्स मेरा एक बिजनेस वहाँ पे भी है, तो हर दिन बात होती है कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या नहीं चल रहा है, तो बाय यू नो बट ऑब्वियस ये चीज़ तो होनी ही है। बट यस, होम सिक रेमेडीज के लिए ये रहा मेरे तरफ से मैसेजेस। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं कोई ऐसी चीज जो आप मिस करते हैं 0800-004-866 पे, बट कॉल अगर आता है तब तक हम मैसेजेस पढ़ लेते हैं, और मैसेजेस कुछ इस तरह से हैं। राज भाई इज ऑलवेज ऑन फर्स्ट लिस्ट, उनका सबसे पहले मैसेज आता है। पापा टोटोस उन्होंने मैसेज भेजा है, बोल रहे हैं कि ऑनेस्टली द वन थिंग आई मिस द मोस्ट इज माय मम्स फ्रेश रोटीज स्ट्रेट ऑफ द तवा, यू जस्ट कांट रिक्रिएट दैट टेस्ट हियर नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। वेल एक्चुअली राज भाई बात तो सही है, बट ये सिर्फ यहाँ की प्रॉब्लम नहीं, ये आप अपना घर छोड़ के किसी और शहर में भी जाएंगे, अगर आप इंडिया से हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पर किसी और शहर में भी जाएंगे, सो इट्स जस्ट गोना बी यू नो बिट हार्ड टू रिक्रिएट दैट टेस्ट। आई एम प्रिटी श्योर जी हाँ, बट यस आप यू नो डेफिनेटली कैन फाइंड आउट। आपकी शादी हो गई होगी राइट? आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि देखो मैं ना बहुत मिस करता था अपनी मॉम की कुछ डिशेस जो एक्चुअली खुशबू बहुत टेस्टी हो, और ये काफ़ी रेयर होता है मेरे हिसाब से कि आपकी वाइफ रिक्रिएट कर पाए वो टेस्ट जो आपकी मॉम। ऑफकोर्स मैं कंपेरिजन तो नहीं कर सकता, दोनों अपनी अपनी जगह हैं, बट सचमुच टेस्ट एक्चुअली बहुत सही है। उसके बाद कविता कहती हैं, बुला केतन फ्रॉम हेंडरसन, आई रियली मिस द लेट नाइट चाय सेशन बैक इन सुवा विथ माय कजिन्स, जस्ट सिटिंग आउटसाइड टॉकिंग नॉनसेंस एंड लाफिंग फॉर आवर्स। यहाँ पे भी हो सकता है डेफिनेटली, बट ऑफ कोर्स वो जो कजिन वाली पार्ट है वो विल बी मिसिंग अगर आपके यहाँ पे कोई कजिन्स नहीं है तो। अमन कहते हैं मनुका से, फॉर मी इट्स द स्ट्रीट फूड इन दिल्ली, पानीपुरी स्पेशली द वंस हियर आर गुड, बट इट्स नॉट द सेम वाइब स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड विथ फ्रेंड्स। वेल एक्चुअली अब धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि मार्केट वैसा क्रिएट हो रहा है, और काफ़ी जगह ऐसी चीज़ें आ रही है, सो यू नेवर नो, आई मीन यू नेवर नो कुछ ऐसी चीज आने लग जाए। चलिए फोन आ रहा है, फोन पिक कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो, गुड
0: योर सेल्फ?
1: ये गुड Nice. Very interesting topic. Yeah. मुझे सबसे ज्यादा याद आता है स्पेशली
0: ऑरेंजेस। Okay.
1: Yeah, because my hometown is near about Nagpur.
0: नागपुर के पास आपका hometown? Okay.
1: जी तो फ्रेश ऑरेंजेस, और एक और चीज जो उसे हम क्या कहते हैं, जो गाड़ियाँ होती है उसके ऊपर का जो चाइनीज होता है,
0: गाड़ियाँ होती है चाइनीज
1: होती है काइंड ऑफ, हाँ मतलब, बट वो नहीं जो चार पहिए वाली गाड़ी होती है उसके ऊपर नॉर्मली स्टॉल्स होते हैं।
0: अच्छा, काइंड
1: ऑफ फूड ट्रक, बट
0: चार मतलब ठेला।
1: जी वो हाँ। तो वहाँ पे ऐसा एक एरिया है जहाँ पे ऐसे ना काफी ठेले लगे होते
0: हैं, मतलब उसमें बोलते ना वो ऐसे डायलॉग बोलते हैं, आलू ले लो कांदा ले लो, है ना?
1: बहुत बढ़िया
0: बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करी मैंने
1: भाई, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, काफी बढ़िया आरिया है, नाइस टू टॉक टू यू,
0: थैंक यू थैंक यू,
1: आई होप यू एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे।
0: श्योर लग रहा है आप कुछ कर रहे हो, मैं गेस्ट हूँ, बट थैंक यू,
1: प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
0: नहीं ऑल गुड वन डे फॉर श्योर, बट थैंक यू सो मच फॉर कॉल, आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहे अफास भाई, थैंक यू, बाय बाय। वेल आखिरी मैसेज पढ़ लेते फटाफट से, आखिरी मैसेज शालिनी का, वो कहती है माउंट रॉस्कल से, नमस्ते, आई मिस द फेस्टिवल बैक होम्स इन मुंबई, द एनर्जी ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी, द म्यूजिक, द क्राउड्स, इट फेल्ट अलाइव इन अ डिफरेंट वे। वेल आई थिंक ये चीज आप यहाँ डेफिनेटली मिस ना करेंगे, एज लॉन्ग एज इफ यू आर इन द गुड कम्युनिटी, नॉट गुड कम्युनिटी बट गुड सर्कल, जो यू नो इस तरह के फेस्टिवल्स में जाने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मेरे को लगता है ये चीज़ यहाँ पे भी होती है, ऑनेस्टली बताऊँ ना, ऑकलैंड शिफ्ट होने के बाद मुझे ये चीज मिस नहीं हुई है. डेफिनेटली इन्वोकागल में बहुत मिस होता था, वहां पे भी कर रहे हैं. कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं, तो ऑफकोर्स वी हैव द लिमिटेड सोर्सेज एंड लिमिटेड पीपल टू हैव हेल्प अराउंड. बट यहाँ पे ऑनेस्टली बहुत बढ़िया कम्युनिटी है यार, ये सारी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है. बट यस, ऑफिस शाउट आउट के लिए आप मुझे मैसेज भेजिए 5599 पे रिगार्डिंग क्या खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है या वर्क फ्रॉम ऑफिस है, और अगर खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, कहाँ से ऑर्डर किया है. प्लस कोई गाना अगर आप डेडिकेशन चाहते हैं तो मुझे 5599 पे टेक्स्ट भेजिए अपने नाम के साथ.
2: लंच बॉक्स विद केतन.
3: मुझे पसंद है लड़का.
2: हाँ. वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी.

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: पाए सिर्फ रोवा पर।
1: एक सपना है, सपना कुछ अपना करने का, सपना एक अपने बिजनेस का।
2: हम है क्रू केयर, सिर्फ $15,000 ऑनवर्ड्स की इन्वेस्टमेंट में हम बनाएंगे आपके सपने को एक हकीकत।
3: Crew Care offers commercial cleaning franchise, which caters to after and before hours cleaning services for offices and schools. Crew Care also has tie-ups with many cleaning sites like offices, schools, gyms, medical centres and hospitality sites. Finance options available for approved purchases. Call Crew Care on 0800 800 209.
4: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
7: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
8: What kind of businesses run on business fiber? Cloud thriving businesses, CGI building businesses, even big file sharing, video calling, meme sharing businesses. For uncompromising bandwidth and reliability, get your business running on business fiber.
9: Woolworths has savings in every aisle. Get Cadbury Roses Milk Tray or Favourites 312 to 470 gram for $9.90 each. And Dove Body Wash 1 litre for $10.99 each. Woolworths Weekly Specials. Now that feels good. T's and C's apply.
10: Pacific Electrical Services presents Javed Ali live in Auckland, performing his blockbuster hits and a special tribute to the legendary Mohammed Rafi Saab in Rafi Aur Main, promoted by Star Alliance Entertainment at Victory Convention Center, 8th May, 7 PM onwards. Proudly supported by Key Contractors. For tickets, visit staralliance.com or call Edwin on 0211 382184.
11: Non-stop Bollywood.
12: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
11: हम playing Bollywood's biggest hits.
13: Lunchbox with Ketan.
14: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
13: हम office shout out.
15: Welcome back. You are listening to Lunchbox. चलिए ऑफिस शाउटआउट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम क्या करते हैं, हम आपके दिए हुए मैसेज को पढ़ते हैं यहाँ पे, जो भी शाउटआउट करने के लिए होते हैं। आई मीन आपने डेफिनेटली बताया होगा कि इस लंच टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, एज एन यू आर हैविंग लंच और नॉट, वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस। सबसे पहला मैसेज आया है रोहित भाई का, हाई ब्रुक ऑफिस, लंच टाइम हो गया है एंड टुडे वी ऑर्डर बटर चिकन एंड गार्लिक नान फ्रॉम अ नियर बाय इंडियन स्पॉट। टीम में है संदीप और जेस, सब रेडी बैठे हैं, बस नान का वेट कर रहे हैं। नाइस नाइस यार, कुछ भी बोलो यार, लाइक ये हिंदी के जो मैसेज पढ़ने का जो मजा है ना, ये बहुत ही बढ़िया लगता है, मतलब अलग ही अलग ही फील आती है। उसके बाद नेहा कहती है फ्रॉम सिल्वर पार्क, ऑनेस्टली टुडे आई एम स्किपिंग द लंच बिकॉज ऑफ द वर्क, इट्स टू मच। बाकी टीम पिज्जा ऑर्डर कर रही है, बट आई विल जस्ट ग्रैब समथिंग लेटर। शाउट आउट टू माई टीम अंकित, लीसा एंड मार्क। नाइस नाइस। उसके बाद विजय आजकल बहुत मैसेज भेज रहे हैं, नॉट द वन यू लिसन इन द मॉर्निंग, दिस इज डिफरेंट विजय। बुला फ्रॉम पेनरोज, वी आर फीजियन स्टाइल हैविंग लंच, रोटी एंड चिकन करी फ्रॉम होम एंड टुगेदर विथ मी राजेश एंड सुनीता आर हियर एंड वी ऑल आर शेयरिंग इट। ओह नाउ लवली यार, ये मैं भी किया करता था जब मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं इंडिया में एक मेरा ऑफिस था, तो वहाँ पे हम 10-15 लोग जो भी होते सब एक दूसरे का शेयर करते थे। सो यस, इट्स अमेजिंग यार, अमेजिंग, प्रॉपर घर जैसा फील आता है। एंड आखिरी मैसेज है पूजा का, अरे क्या बात है, कोइंसिडेंट, देखो पहले विजय ने मैसेज किया है, उसके बाद पूजा ने मैसेज किया। मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा ये नंबर, वो

0: ऑन यू, करते रहो, बताना मुझे ये डाइट जो है कब तक आप मेंटेन करते हैं, एज एन कब तक कंटिन्यू रखते हैं। बट थैंक यू सो मच ऑल द मैसेजेस, बने रहिए, बहुत सारी खबरें लेके आने वाला हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी देर में।
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: क्यों ना नमस्ते, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंचबॉक्स शो में। वेल यस, मैसेजेस आए हैं मुझे। मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था पैड थाई क्या होता है, एक जनाब ने मुझे भेजा है, आशीष इनका नाम है, वेलिंगटन से मुझे सुन रहे हैं। क्या बात है यार, थैंक यू आशीष भाई। मतलब इन्होंने वो चीज बताई है जो एक्चुअली मैं रोज खा रहा हूं, रोज नहीं बट मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, बट मुझे नाम नहीं पता था। मुझे पता था स्टर फ्राई के नाम से, कैश्यू नट स्टर फ्राई, ये मैं खाता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बट मुझे ये नहीं पता था कि यार पैड थाई बोलते उसको। वाह यार, इन्होंने लिखा है पैड थाई इज वन ऑफ द थाईलैंड्स मोस्ट फेमस डिशेज, स्टर फ्राइड नूडल्स मील। अच्छा नूडल्स होता है ये, ओके हाँ, मतलब वो भी खाता हूँ मैं। मील्स दैट बैलेंस स्वीट सॉर सॉल्टी एंड उमामी फ्लेवर्स इन वन बाइट, आशीष फ्रॉम वेलिंगटन FYI। Well, yes, FYI का क्या मतलब होता है जल्दी से मुझे 5599 में बताइए। Let's see यार, मतलब कितने लोगों को यहाँ पे पता है। जनाब आज आपका IQ टेस्ट किया जाएगा। So yes, not you, हाँ आपने तो लिख के भेजा, मुझे पता आपको तो पता ही होगा डेफिनेटली। आशीष भाई आप मैसेज मत करना, लेकिन यस जो मुझे सुन रहे हैं अभी आप मुझे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, जो आप सुन रहे हो ना मुझे गाड़ी चलाते चलाते, तो जल्दी से मुझे टेक्स्ट भेजिए और बताइए FYI का क्या मतलब होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है। 5599 पे। बट यस अभी आपको सबसे पहले बता देते हैं कि पॉडकास्ट हो गए या फिर कुछ गेम्स हो गए या फिर प्लेलिस्ट हो गए, ये सारी चीजें आप सुन सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। जी हाँ, हमारे कहाँ पे सुन सकते हैं, बहुत तरीके की चीजें हम डालते रहते हैं हमारे रो ऐप पे, यानी कि ROVA सर्च करिए अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से और यू नो एंजॉय करिए, बहुत बढ़िया कंटेंट हम वहाँ पे डालते रहते हैं। कुछ गेम्स हैं, चर्डल जिसका नाम है चर्डल SCHURDLE, इसे आप सर्च करिए या फिर गेम सेक्शन में जाके प्ले सेक्शन में जाके आप कर सकते हैं। पर यस आप उस गेम को खेल के, यानी कि एक कीवी वर्ड विजर्ड है जिसे आप खेल के एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय के साथ साथ अपनी IQ भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितने वर्ड्स पता है यहाँ पे लोकली, यानी कि न्यूजीलैंड के कौन से वर्ड्स हैं जो आपको पता है। साथ में आप जीत भी सकते हैं इन रिटर्न $100 a day, $100। वेल एक ने जवाब दिया FYI का फुल फॉर्म होता है फॉर यू इंडियंस। ये क्या था भाई, क्या था ये, क्या क्या मतलब, बहुत खूब, बहुत बहुत दूर तक जाओगे, बहुत दूर तक। इन्होंने अपने नाम जान मुझ के नहीं डाला है। बट यस सर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, आप मुझे FYI का सर्च, एक्चुअली ये काफी मतलब मैंने तो सीरियस तरीके से पूछा था बट जवाब एकदम सरकाज़म वे में लोगों ने भेजा है। बट यस चर्डल खेलना ना भूलिए, आप डाउनलोड कर लीजिए रोवा ऐप अपने फोन प्ले स्टोर ऐप स्टोर से और वहां से आप खेल सकते हैं। $100 जीतने का मौका आपका, आपके पास हर दिन।
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर, पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। 1 2 3

What a song, यार, what a song, what a song. मैं यहाँ पे बोलता ही रह गया और पता पड़ा माइक तो भाई बंद है. But anyways, thank you so much, यार. Messages मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे जो सब बता रहे हैं FYI का फुल फॉर्म क्या होता है. Yes, you are right. And मुझे कॉल भी आए हैं उस पर भी उन्होंने बताया है. But I like this जवाब, यार. ये पता नहीं इन्होंने जान मुझ के बताया है ऐसा या फिर सचमुच इन्हें नहीं पता है. For you Indians, FYI का मतलब. But yes, ये गाना मैंने इसलिए चलाया so that I tell you, आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है. शो की डेट जो है नजदीक आ चुकी है, 8 तारीख को ही होने वाला है, यानी कि परसों. और परसों ही बोले तो 8 तारीख को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में शो होने वाला है. जी हाँ, किसका? स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट आप सभी के लिए लेके आए हैं रफी और मैं टाइमलेस क्लासिक ऑफ मोहम्मद रफी बाय जावेद अली, प्रेजेंटेड बाय पैसिफिक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज. वेल यस, आप रेडी हो जाइए, बिकॉज आप चाहे रफी, मोहम्मद रफी जी के गाने आपके फेवरेट हैं या फिर खुद जावेद अली की मेलोडियस आवाज के आप फैन हैं, ये शो आपके लिए है. बिकॉज ये चाहे मिलेनियन से आप पहली जनरेशन से हो या फिर मिलेनियन वाले या फिर अभी जेंजी के, हर एक शख्स म्यूजिक लवर उन्हें बहुत पसंद करता है. और अभी अभी उन्होंने लेटेस्ट एक शो भी किया था फीजी में, अमेजिंग, मतलब ऑलमोस्ट हाउसफुल हुआ था आई गेस, जितना मेरे को पता है. बट अमेजिंग परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, एज यू ऑल नो. मैं उनका फैन बना था इसी गाने से जो मैंने चला रखा है बैकग्राउंड में.

0: क्या बात है, कभी कभी तो मेरा भी मन कर जाता गाने का। बट यस, ये मेरे आवाज की नहीं, ये इनके आवाज की बात कर रहे हैं अभी, और इन्हीं का शो होने वाला है 8 तारीख को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। टिकट जो है सिर्फ $59 से शुरू हो रहे हैं। स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट.com पर जाइए और टिकट खरीद लीजिए। फूड स्टॉल्स एंड इजी ऑन साइट पार्किंग अवेलेबल है। बहुत ही कम टिकट बचे हुए हैं। ये तो खैर मंडे को बताया गया था हमें कि सिर्फ 350 सीट्स बची हुई है, अभी तो और भी कम हो गई होगी। तो यस, आपके साथ जो टाइम है बहुत ही तेजी से भाग रहा है, तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पे और बुक कर लीजिए।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हाँ।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: फॉल इन लव विद योर होम अगेन विद एन ANZ रेनो लोन, अ होम लोन टॉप अप ऑफ अप टू $50,000 एट जस्ट 2.5% पर एनम, फिक्स्ड फॉर 3 इयर्स। मिनिमम 20% इक्विटी एलिजिबिलिटी, लेंडिंग रूल्स, टर्म्स एंड फीस अप्लाई। अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड टाइम। ANZ, we do how.
2: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
3: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
4: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
3: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
5: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
6: लंचबॉक्स विद केतन।
7: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
8: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मुझे यहाँ पे हम रेडियो से ही। जी हाँ, आप चाहे तो मुझे 104.2 FM के जरिए सुन सकते हैं या फिर आप मुझे रोआ के जरिए सुन सकते हैं। हम वेबसाइट भी है hum.roa.nz पे। बट यस, जल्दी से चटनी शॉर्ट के लिए आपके सामने फटाफट से न्यूज़ में रख लेता हूँ। गवर्नमेंट मीडिया रूल्स में एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटीज को हटाकर एक सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वही एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अजीब फोम बार बार दिख रहा है और एक्सपर्ट्स अभी तक इसका एग्जैक्ट कॉज समझ नहीं पाए हैं। स्पेस से जुड़ी खबर, एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि एक रेयर कॉमेट जल्द ही अर्थ से दिखाई देगा और अगले कुछ हफ्तों में इसे नेकेड आई से भी देखा जा सकता है, स्पेशली फ्रॉम न्यूजीलैंड। टेक दुनिया में मार्क ज़करबर्ग पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने एआई ट्रेनिंग के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट यूज करने को अप्रूव किया है। इंटरनेशनल न्यूज में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स को सेफली निकालने की यूएस एफर्ट्स टेम्पररी पॉज कर दी है। और आखिरी न्यूज है स्पोर्ट्स की तरफ से, बुकायो साका के गोल ने आर्सेनल को 20 साल बाद चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचा दिया है।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Throwback.
2: Welcome back. Well, thank you, यार. ये एक मैसेज आया मुझे, कह रहे हैं कि ब्रो यू ऑल्सो हैव अ नाइस वॉइस. सीरियसली थैंक यू सो मच यार. आपने अपना नाम तो नहीं बताया, बट थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. आप एक्चुअली मुझे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे कुछ ना कुछ मैं वीडियो डालते रहता हूँ अपनी सिंगिंग के भी. द सिंगर साहेब से मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल ये. और यूट्यूब पे VR3 अल्फाबेट VR3 ये अल्फाबेट है, इसे आप सर्च कर दीजिए VR3 फिल्म्स के नाम से. उस पर भी मेरे कुछ म्यूजिक वीडियोज आपको दिख जाएंगे, वहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. ये रहा मेरा सवाल अगले आर के लिए, सुनेंगे. 92 का वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान ने कब जीता था, मुझे 5599 पे भेज दीजिए इसका जवाब. 92 का जो वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान ने कब जीता, मुझे 5599 पे भेज दीजिए.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल 21 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है 16 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला 10% चांस है बारिश के 5:32 पे होगा आज का सनसेट
0: लंच बॉक्स विद केतन
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी
0: लंच के मंच पे लंच बॉक्स विद केतन
1: नमस्ते सत्रिकाल आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में मेरा नाम केतन है बहुत सारी बातें करने वाले हैं वैसे यस मैंने एक सवाल किया था थोड़ी देर पहले आप सबसे कि 92 में पाकिस्तान ने 92 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान ने कब जीता यस द आंसर इज राइट 1992 में Well, yes, March 25 it is, but yes, Ashish is very, very much open. काफी clever है. बट यस एक ने जवाब दिया है 1999 में सही है वेल यस आप बने रहिए ऐसे और भी सवाल मैं पूछूंगा आपसे थोड़े हटके थोड़ा झटके जी हाँ लंच बॉक्स शो इट इज और अभी थोड़ी देर में आपको एक टॉपिक भी बताने वाला हूँ जहाँ पे आप लंच टाइम रेंट लाइन पे भी आप मुझे टेक्स्ट भेजेंगे 5599 पे जी हाँ तो यस ये सारी बातें होने वाली है एंड ऑफकोर्स इस आर में आपको एक और खास चीज होने वाली यानी कि आपको मैं कोड बताने वाला हूँ एक ऐसे कंपटीशन का फ्लाई अवे फ्रेंजी जी हाँ जो आपको मौका देगा टू फ्लाई टू फिजी एंड कम बैक उसके लिए आपको कोड देने वाला हूँ आज तो बस बने रहिए सुनते रहिए लंच बॉक्स शो
0: बचाओ क्या

0: उदित नारायण और राधा की आवाज में आपने गाना सुना है, क्योंकि इतना प्यार करते हैं हम। क्या जानोगे। वेल यस, वेलकम बैक। मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं हम रेडियो से 104.2 FM या फिर रोआ के जरिए hum.roa.nz हमारी वेबसाइट है, वहां से भी आप सुन सकते हैं। बट थोड़ी देर में आपके लिए लंच टाइम रेंट लाइन के लिए आपके लिए जो मैसेजेस का जो भंडार है वो आना शुरू कर दीजिए। आप भेजना शुरू कर दीजिए कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको सचमुच इरिटेट करते हैं, नॉट वेरी बिग बट समथिंग विच मेक्स यू फील लाइक यार ऐसा क्यों होता है, तो वो आप मुझे भेजिए। बट साथ में एक सवाल है आप सभी से, वो भी आप मुझे भेजिए। What food would you gladly eat every day if nutrition was not important? जी हाँ, अगर न्यूट्रिशन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं होते तो क्या ऐसी चीज है जो आप हर दिन खाना पसंद करेंगे, बताइए मुझे 555-99 पे। मैं बताऊं मेरा पता क्या है, मैं हर रोज बिरयानी खा सकता हूँ। जी हाँ, सी बिरयानी, चिकन बिरयानी। ओहो, आई लव इट। जी हाँ, आप अपना बताइए 555-99 पे। बट साथ में लंच टाइम रेंट लाइन के बारे में भी मुझे बताइएगा, उसका इंतजार रहेगा।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम।
1: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
5: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
6: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
5: मेरे को समझ में नहीं। एक 2-3 दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने,
6: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
3: है।
1: 6 to 10 a.m.
7: At Bunnings, you know you're going to get the lowest prices every day, because where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
8: Bunnings Warehouse.
7: Lowest prices are just the beginning.
9: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleeping head beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2,499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
10: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
11: Indelible Homes, your building expert.
12: बार एंड रेस्टोरेंट इन सोहो होटल माउंट रॉस्कल, आए और इंजॉय करें इनका सोफिस्टिकेटेड डाइनिंग एक्सपीरियंस, जहां पर आपको तरह तरह के फ्लेवर्स मिलेंगे, क्रिएटिव एशियन फ्यूजन डिशेस से लेकर जेस्टी सी फूड तक, साथ में रिफ्रेशिंग कॉकटेल्स, सब कुछ एक बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश अंदाज में। ये ओपन है फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, क्लोज टू ऑकलैंड सीबीडी एंड मिनट्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। टाइगर रेस्टोरेंट बार इन सोहो होटल, स्टोरा रोड, माउंट रॉस्कल। विजिट टाइगर एट soho.co.nz.
13: Join the Great Big Balance Check at New World. Whether it's treating yourself to a chocky bar or treating the whole fam to dinner, you could have New World dollars waiting to spend. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
14: If you're serious about solar energy, switch on to Trade Depot. They stock the world's leading solar panels, inverters and batteries. Trade Depot specializes in powerful full house solar systems ranging from $10,000 to $20,000. Shop solar at Trade Depot for high quality solar systems with installation available nationwide.
1: TradeDepot.co.nz.
15: Lunchbox with Keithan.
16: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम। Lunchtime Rant Line.
0: लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में आपका स्वागत है और बात करेंगे यहाँ पे उन मैसेजेस की जो मुझे आपने भेजे हैं, दैट यू पर्सनली फील इज बिट इरिटेटिंग, बट क्या करें, होता रहता है यहाँ पे। वेल ये सबसे पहला मैसेज जो है वो आया है किधर गया, कुणाल का। Hi, Kunal here from Flatbush. My rant is about people who eat fish in the office kitchen. You all know who you are. ये पहले भी मैसेज आया था, किसने भेजा था, आई थिंक कल या परसों भेजा था किसी ने। बताएंगे कुणाल भाई। मेहुल कहते हैं पापागुरा से, माई रेंट एंडलेस पासवर्ड रीसेट्स, एवरी सिस्टम नीड्स अ डिफरेंट वन एंड बाय लंच टाइम आई हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन हाफ ऑफ देम। आज ही मैंने किया है, अभी लाइक थोड़ी देर पहले, जब ये हमें करना पड़ता है ऑफिस से लेके, तो ये अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले किया। इट्स वेरी इरिटेटिंग यार, बट क्या करे, करना पड़ता है फॉर सिक्योरिटी। राजीव कहते हैं इस टमाकी से, ऑनेस्टली माई रेंट इज अबाउट स्लो वाई फाई। यू सिट डाउन फॉर अ क्विक ब्रेक, ट्राई टू वॉच समथिंग एंड इट्स कीप बफरिंग। वेल आई थिंक ब्रो यू नीड टू चेंज द प्रोवाइडर। आई नो होता है कभी कभी, बट नॉट लाइक एवरी टाइम। फरांग कहते हैं मनुकाउस से, माई रेंट ऑफिस चेयर्स, ईदर दे आर टू लो और टू हाई और मेकिंग वियर नॉइसेस, बाय लंच टाइम माई बैक इज ऑलरेडी डन। दैट्स सो गुड। निलेश भाई ओटाहू से कहते हैं, माई रेंट इज अबाउट पीपल हु बुक मीटिंग रूम्स एंड देन डोंट इवन शो अप। ब्रो सम ऑफ अस आर आउट हियर हंटिंग फॉर स्पेस टू सिट एंड ईट। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये सारे मैसेजेस मुझे पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब इस तरह से लोगों ने लिखे हैं। क्रिएटिव तो है ही है, बट ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही बोल रहे हैं। एनीवेज श्रेया कहती है आखिरी मैसेज है ये एल्बनी से, क्विक रेंट, व्हाई डू प्रिंटर्स ऑलवेज डिसाइड टू जैम ओनली व्हेन यू आर इन अ हरी, इट्स लाइक दे सेंस योर स्ट्रेस वेरी वेल। आई कैन नॉट रिलेट दिस, बट यस थैंक यू यार, थैंक यू ऑल द लवली लिसनर जिन्होंने मैसेज किए हैं। एंड ऑफकोर्स टाइम के चलते हम सब तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट कीप सेंडिंग मैसेजेस व्हेनेवर आई आस्क। जी हाँ, फोन रेडी रखिएगा।
15: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं उस मौके की जिसका बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हम फ्लाईवे फ्रेंजी। सबसे पहले आपको बताता हूँ ये क्या है। ये बेसिकली आपको मौका देगा जो एक रिटर्न एयर टिकट फीजी फॉर सनसोक एस्केप यू हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ, ये मौका देगा आपको। यानी कि सुबह 8 बजे 11 बजे बाद, सॉरी नॉट एग्जैक्टली द टाइम, बट सुबह 8 बजे के बाद, सुबह 11 बजे के बाद, फिर दिन के 1 बजे के बाद और दिन के शाम के 5 बजे के बाद आपको एक कोड दिया जाएगा। और जैसे कोड सुनते आपके पास 1 घंटा होगा, यानी कि 1 आवर होगा, उसको आपको रोआ पे डालना है ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो सकें। और अगर आप लकी हुए तो ये कंपटीशन जो है आप जीतेंगे, एक रिटर्न फ्लाइट टिकट मिलेगी आपको एयर की। जी हाँ, एयर रिटर्न टिकट मिलेगी आपको फिजी के लिए। वेल यस, टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई, बट अभी का जो कोड है वो है सलू सलू। अरे वाह सलू, अपने सलू भैया नहीं, सलू दादा नहीं, भाईजान नहीं है, सलू है, SALU, SALU, दो बार है। जी हाँ, 5599 पे। वैसे ये कोड आपको अगर आप इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहते हैं तो रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ROVA, अपने प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाके और इस कोड को वहां पे डाल दीजिए, SALU, SALU, सलू। बट यस, मेक श्योर कि आप एक्टिव रहें, बिकॉज अगर आपने अभी मिस किया है तो ये डोंट वरी, आपको 5 बजे फिर से एक और कोड दिया जाएगा। तो ऐसे ही आपको सारे कोड डालने हैं रोआ पे ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो सकें। शुरू हो जाइए, किसका वेट कर रहे हैं आप।

0: वेलकम बैक। जस्ट टू करेक्ट, अगर आपने मुझे मैसेज भेजे हैं 5599 पे, तो वो नहीं करना जो कोड आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आपको डालना है रोवा ऐप पे, वहां पे डालेंगे तो ही आप ड्रॉ में शामिल होंगे। 5599 पे मत भेजिएगा आप, पहले ही बता रहा हूँ। पर ये सभी की लेटेस्ट खबर ये है कि न्यूजीलैंड में फ्यूल स्टॉक्स, पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल रीसेंट हाइज के बाद थोड़े गिर गए हैं, लेकिन ऑफिशियल्स का कहना है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि फ्यूल सप्लाई और शिपिंग साइकिल्स में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो अगर आप ये न्यूज़ पे या कहीं से सुनते हैं तो डोंट पैनिक अ लॉट, बिकॉज ये नॉर्मल है, एक्सपर्ट्स का कहना है। उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि अभी कोई शॉर्टेज या क्राइसिस नहीं है, ओवरऑल फ्यूल सप्लाई स्टेबल है और नए शिपमेंट ऑलरेडी रास्ते में है। वेल यस, ये जो चीज़ है थोड़ा रिलीफ तो देगी आपको, इतने जो हफ्तों से आप टेंशन ले रहे थे कि भाई क्या होगा, घोड़ा गाड़ी लेके आना पड़ेगा अब तो कहीं पे भी जाने के लिए। बट यस, ऐसी नौबत अभी हाल फिलहाल तो नहीं है, यानी कि अभी तो बोल रहे हैं कि ये चीज़ नॉर्मल है। सो यस, वी कैन सी द नंबर वेंट फ्रॉम 58 से 55 हो चुका है जेट फ्यूल, पेट्रोल हुआ है 52 से 49 कैपेसिटी, और डीजल हो चुका है 47.7, बट दैट्स नॉर्मल बिकॉज मैं जैसे ग्राफ देख रहा हूं तो वो अप एंड डाउन तो होता ही रहता है। तो यस, टेंशन वाली बात नहीं है नको। वेल यस, थोड़ी देर बनी रही है बिकॉज मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ बॉलीवुड की खबर।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: May month is NZ Music Month. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग। Presenting Back Your Backyard Beats, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार। आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे। ट्यून इन करो और अपने Backyard Beats को दो फुल सपोर्ट। Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
5: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
5: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
7: Flooring Extra. Adore your floor.
8: Before winter really sets in, make sure your windows and doors are ready. From drafty window gaps to doors that won't close properly, Exceed fixes windows and doors to help keep your home warm. Call 0800-EXCEED.
9: We fix windows and doors. Exceed.
10: Lunchbox with Ketan.
11: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
12: इसके पीछे?
13: Lunch के मंच पे।
0: वेल यस, बात करते हैं बॉलीवुड की एक अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा जिसका नाम है पति पत्नी और वो दो, यानी कि एक नहीं दो नहीं टोटल तीन लड़कियां हैं इस फिल्म में। वो दो का मतलब है कि भाई उसकी बीवी भी है प्लस दो और गर्लफ्रेंड, यानी कि टोटल तीन एक्ट्रेस आपको दिखने वाली है। आयुष्मान खुराना, जी हाँ, उनके अपोजिट, नॉट अगेंस्ट, सॉरी क्या बता, अगेंस्ट भी हो जाए उस फिल्म में। वैसे काफ़ी एंटरटेनिंग लग रही है ट्रेलर देख के, तो एक ऐसे आदमी का रोल प्ले कर रहे हैं आयुष्मान जो अपनी शादी के बीच एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देते हैं और फिर सिचुएशन फुल मैसी हो जाती है। वेल, फिल्म में सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह का कैरेक्टर के साथ एक ट्विस्ट लव स्टोरी दिखाई गई है जहाँ ट्रस्ट, लाइज और कन्फ्यूजन का मिक्स है। वैसे ट्रेलर में काफ़ी फनी डायलॉग्स भी हैं, ऑकवर्ड सिचुएशन भी बताई है और रिलेशनशिप ड्रामा भी दिख रहा है, टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल विद मॉडर्न ट्विस्ट। डायरेक्टर मुद्दसार अजीज ने इसे एक लाइट हार्टेड एंटरटेनर बनाया है जो कपल्स और यंग ऑडियंस दोनों को रिलेट कर सके और एंटरटेनमेंट भी हो। वैसे फिल्म जो है वो 15 मई को रिलीज होने वाली है, ठीक आज से 11 दिन बाद, सॉरी 9 दिन बाद, नॉट 11 दिन बाद, 15 मई को। और जी हाँ, तो आप इफ यू वांट टू वॉच एनी मूवी लाइक दिस, डेफिनेटली दिस इज। और मेरे को लगता है कि आयुष्मान की मेजॉरिटी फिल्में सही होती है, लाइक फन वाली होती है, राइट? वुड यू एग्री? यस यस। 555 में बताइए आप मुझे।

0: Jiggy.
1: वेलकम बैक, आपका स्वागत करते हैं फिर से। जी हाँ, वैसे कुछ लाइफ हैक्स की बात कर लेते हैं, लाइफ से रिलेटेड भी बातें कर लेते हैं। आजकल जो अनहेल्दी या फिर जंक फूड होता है वो बस टेस्टी नहीं, साइंस या डिज़ाइन किया जाता है, साइंस से डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप उसे बार बार क्रेव करो। एक्सपर्ट कहते हैं कि कंपनीज शुगर, फैट और कार्ब्स का ऐसा कॉम्बो आप सभी के सामने रखते हैं जो एक आपके ब्रेन के लिए रिवॉर्ड सिस्टम बन जाता है। जी हाँ, उसे एक्टिव कर देता है, मतलब आपको खाने के बाद अच्छा फील होता है और फिर और खाने का मन करता है। चाहे कुछ चिप्स हो गए या फिर चॉकलेट्स हो गए, आइसक्रीम हो गए, ये सारी चीज़ें, इसे स्वीट स्पॉट बोला जाता है, जहाँ टेस्ट मैक्सिमम होता है और आपको रुकना मुश्किल हो जाता है। वेल, साथ ही ये फूड ऐसे प्रोसेस किए जाते हैं जल्दी डाइजेस्ट हो सके, पेट जल्दी दोबारा भूख फील करे और आप फिर से खाने लगे। बट ऑनेस्टली ये सारे जो खाने हैं ना, ये इतने ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं दैट यू नेवर नो, इनडायरेक्टली आपकी बॉडी को इतना हार्म कर रहे हैं। मैं खुद भी हूँ उस दलदल में, मैं भी हूँ एक बार मैं अगर कुछ खाना शुरू कर दूँ, चाहे चिप्स हो गए, ये तो मैं लिटरली, मतलब मैं और खुशबू डिसाइड करते हैं कि हम रखते हैं कार में ऐसा कुछ, ताकि जस्ट इन केस अगर हमको थोड़ा सा मंचिंग के लिए चाहिए हो या फिर टेस्ट चेंज करने के लिए। लेकिन अगर एक बार पैकेट खुल गया और मेरे हाथ लग गई, भाई मैं रुकूंगा नहीं जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता है। बहुत ही गंदी आदत है, आई नो, बट आपके साथ भी ऐसा होता है, आप मुझे बताइए 5599 पे। जी हाँ, वैसे यस, मैंने एक सवाल किया था आपसे, कुछ मैसेजेस आए बट नॉट देयर येट, आप ही नंबर्स भेजिए मुझे। वेल यस, मैंने एक सवाल किया था कि अगर आपको आपकी लाइफ में अगर न्यूट्रिशन जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट ना हो तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप हर दिन खाना पसंद करेंगे। मैंने अपना बताया था, चिकन बिरयानी। आप मुझे बताइए आप क्या ऐसी चीज़ें जो हर रोज़ खाना पसंद करेंगे या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल हैव इट इफ़ द न्यूट्रिशन वॉजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। 5599 नंबर जहाँ पे आप मुझे लिख के भेज सकते हैं।

0: Mr. and Mrs. Khiladi.
1: Lunch ke munch pe.
2: तू बेच दा गोलियां सच्चू ने गल करिए कृष्ण तू गोलियां बेच दा हूं तू ना टेंशन ले कृष्ण मेरे मदर छटा

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम
2: बेटा मेरा फोन किधर है?
3: अभी बताया तो स्लाइड चप्पल कंफर्म है.
4: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? From broken flower vases to लौकी की सब्जी experiments, guess कीजिए मम्मी का मूड और जीतिए ढेर सारा कैश. हम पेश करेंगे quirky scenarios on air और आपको बताना होगा मम्मी चिल करेगी या किल करेगी. Guess and enter the lucky draw to win big cash prizes. तो तैयार हो जाइए for the ultimate game show, Mom's Mood Swings on Hum. Brought to you by Indelible Homes, PFSL, Amma's Food and Malabar Gold and Diamonds.
2: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
5: क्यों? क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
7: The Grand Musty Night in conjunction with Freight and Cargo Brokers, Low Finet in Wicked Chicken Botany Downs on 23rd May at Manurewa Netboard from 6 PM. Show featuring comedy, dance and giveaways with stars Satya Anand, Jay Bhiyaji, Rowdy Naman Chapar alongside Money, Monto, Aku and Ketan. Tickets available at Get Fresh Mingri, Jess Fresh Mart, The Agenda, Hunter's Food Town, Guest Manurewa and Wicked Chicken Botany.
8: Don't miss out.
9: Reliance Ventilation System.
10: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
9: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
10: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
9: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
11: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800 787 111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
12: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
13: हाँ. अच्छा
12: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं?
13: मिसेस सिंह.
14: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 0928130 50 और विजिट फोकस किचन .co.nz.
0: हम टाइम चेक.
15: टाइम हो चुका है दिन के ठीक एक दो.
0: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक.
16: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 2. The government is confident the broadcasting industry is capable of self-regulation. It's scrapping the Broadcasting Standards Authority, which oversees TV and radio standards. Media and Communications Minister Paul Goldsmith says the current framework can create unfair outcomes and inconsistencies. There's been a drop in fuel stocks across the board, but the movements are still seen as normal. Diesel is down by 5 days' worth, but this follows a boost in the previous update as tankers unloaded and MBC's levels remain high. There's a warning that pressures are building despite a small drop in unemployment. Stats NZ figures show it fell 0.1% in the March quarter, but Alan McDonald from the Employers and Manufacturers Association says the Iran conflict is taking a toll on businesses.
17: It's put a real handbrake on confidence, and we're also hearing from our members that they're kind of preparing for the worst. It hasn't arrived yet, but they're taking steps necessary.
16: Police are pleased with the behaviour of duck hunters so far. An operation during opening weekend saw officers visit ponds and Mai Mai across Southland to check rules were being followed. 3 firearms were seized for shooting without a game bird licence, but otherwise compliance levels were high. To football with Hisense, proud partner of the FIFA World Cup, the all-white squad for the World Cup will be announced next Thursday morning. Coach Darren Baisley will confirm his 26-player group at Auckland's Eden Park. New Zealand football has also confirmed the warm-up game against Haiti in Florida. And first blood to Detroit in their NBA Eastern Conference semi-final with Cleveland. The top-seeded Pistons have held on to win Game 1, 111-101 in Detroit. Game 2 is on Friday.
7: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Ross Skill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
15: वेदर के हाल चाल 21 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 16 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10% चांस है बारिश के, 5:32 PM पे होगा आज का सनसेट।

0: Talks with Ketan.
1: Welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan. Well, yes, बहुत सारी बातें आज भी होगी, इस आर में भी होगी. क्या स्पेशल बातें होने वाली इस आर में? Well, yes, इस आर में आपको of course टेक की बातें होगी, साथ में मदर्स डे के जो मौके हैं वो भी आपको मैं देने वाला हूं, जहां पे आप मुझे कॉल करेंगे और अपना नाम जो है ड्रॉ में शामिल करेंगे और फिर जीत सकते हैं तीन में से एक प्राइज, चाहे फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन. और कैश प्राइज मिल रहा है, यानी कि $300, $200 और $100 मिल रहा है आपको. बट यस, उसके लिए बने रहिए और IPL की भी खबरें आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में. बता, एंजॉय करते रहिए यार, चिल आउट करिए. शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे गाने से, लुट पुट गया ऐसे कुछ है ना शायद. हाँ,
0: बचाओ क्या

0: branch nahi hai.
1: Celebrating NZ Music Month.
2: Back your backyard beats.
3: वेल ये गाना चलाएं उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि हम ये पूरा महीना जो है मे मंथ ये हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे लोकल आर्टिस्ट को। यहाँ पे आप हमें भेजते हैं, अगर आप सिंगर हैं और आप अगर गाने लिखते हैं बनाते हैं तो आप हमें भेजते हैं और उन्हें हम यहाँ पे चलाते हैं आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग। वेल यस, आज के जो सेलिब्रिटी हैं, लोकल सेलिब्रिटी हैं, वो है एफाज ललवानी। जी हाँ, वो कह रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बायो आपको बता देता हूँ कि वो 3 साल से उन्होंने सिंगिंग शुरू करी है। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने ग्रैब भी की है बाय परफॉर्मिंग इन डिफरेंट इवेंट स्टेजेस। काफ़ी आपने देखा होगा इन्हें अलग अलग स्टेजेस पे परफॉर्म करते हुए, बहुत ही अच्छा गाते हैं। वेल यस, ये जो गाना चलने वाला ये उनका पहला कवर है और इन्होंने खुद ने ही घर पे रिकॉर्ड किया है। क्या बात है, एक बेसिक सॉफ्टवेयर से, बट दे इवन ट्राइड इट, नो प्रोफेशनल स्टूडियोज इन्वॉल्व, बट इट्स फाइन, इट्स अ स्पेशल माइलस्टोन फॉर हिमसेल्फ, ये कहते हैं। बट यस, ये जो गाना है ये हवा, आप एंजॉय करिए और उन्हें वोट भी करिए। जी हाँ, वोट क्या है, कैसे करना है, आपको MM लिख के 5599 पे भेज देना है इनके नाम का। जी हाँ, टेक्स MM टू 5599 एंड आप इनके नाम से भी कर सकते हैं ताकि वोट के लिए जा सकें। बट यस, अगर आप भी किसी सिंगर या किसी को जानते हैं तो उन्हें कहिए कि buzz@hamfm.com पर भेज दें अपने गाने।

0: केतन
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगी ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: ब्रो लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। और ये कॉफी ल्यूक वार्म, टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
3: Listen to Hum on Rova every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rova app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rova app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rova. T's and C's apply.
4: Resene is New Zealand's most trusted paint brand, made in New Zealand for our unique conditions. Resene's quality, innovative paints and wood stains, plus the huge variety of colors, are ideal for homeowners and professional painters. Always choose Resene for your decorating projects.
5: Time out, ref!
6: Here's the play. We grab crispy chicken McWings from Macca's. We dunk them in Korean sticky barbecue sauce. We leave no crumbs. Let's go. Available between 11 a.m. and 11 p.m. T's and C's apply.
7: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
9: An award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
10: Kahani of Indelible Homes.
11: Hey, Mum.
12: Hey, sweetheart. How are you?
11: Good. Hey, could I borrow 10K?
12: This is a new phone. Ooh, this.
13: Well, that's awkward. But borrowing money doesn't have to be with Nectar Money. Using their fast and super simple online process, Nectar Money can lend up to 50K with 7-minute quotes and same-day funding. C's, T's, fees and credit criteria apply. Get lending without the awkward.
11: Nectar Money. Lending sweeter.
14: Pacific Electrical Services presents Javed Ali live in Auckland performing his blockbuster hits and a special tribute to the legendary Muhammad Rafi Saab in Rafi Aur Main, promoted by Star Alliance Entertainment at Victory Convention Center, 8 May, 7 p.m. onwards. Proudly supported by Key Contractors. For tickets, visit staralliancentertainment.com or call Edwin on 0211-382184.
15: Ek din tera hota hoga.
16: मेनिकाउ चैरिटेबल क्लब इन एसोसिएशन विद भक्ति सत्संग बॉयज ला रहे हैं भक्ति कीर्तन संध्या फ्राइडे 8 मई को रात 7 बजे से वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापाटोईटोई में, जिसमें कलाकार रहेंगे फिजी के नितिन निलेश प्रकाश और न्यूजीलैंड के दवेन नाथ। दो पहुंचे हुए कलाकारों को एक साथ देखने का अनोखा मौका। टिकट सिर्फ $20 है। तैयार हो जाइए भक्ति कीर्तन संध्या के लिए फ्राइडे 8 मई को रात 7 बजे से वैदिक सेंटर पापाटोईटोई में।
0: Playing Bollywood's biggest hits.
17: Budget Gandhi.
14: Lunchbox with Ketan.
18: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे?
0: हम.
14: Skip your replay.
19: वेल मदर्स डे, मदर्स डे का जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल तो क्या, एक सेलिब्रेशन है, वो आने वाला है बहुत ही जल्द और उसके बारे में बात होगी। आपको एक सिनेरियो देने वाला हूँ। सिनेरियो पता है क्या है? सिनेरियो बहुत ही मस्त है, ये एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ है। सिनेरियो ये है, एक्चुअली मेरे साथ उल्टा हुआ है। वेल सिनेरियो जो ये है वो ये है कि आपकी मॉम ने सुबह उठ के जल्दी आपके लिए खाना पकाया और आपको टिफिन में भर के दिया। आप स्कूल गए और आपको जाने से पहले कहा था कि शाम को जब आए खाली डब्बा आना चाहिए। वेल यस, खाली डब्बा तो आता है रिटर्न में, लेकिन वीकेंड पे आपका दोस्त आपके घर आता है और आपको बोलता है, आपकी मम्मी को बोलता है, आंटी जी आपने जो वो दाल जो बनाई थी वो बहुत ही टेस्टी थी, मज़ा आ गया, आप ऐसे और बनाओ ना। यानी कि मॉम को पता चलता है कि आप वो जो टिफिन भर के दिया था वो आपके बेटे ने नहीं, किसी और ने खाया है, आपके दोस्त ने। तो ये जो सिनेरियो है ये आपको क्रिएट करके बताना है कि आपकी मॉम का रिएक्शन क्या रहेगा इस पे। जी हाँ, मेरे साथ उल्टा इसलिए होता था क्योंकि मेरे घर पे नॉर्मल चीज़ें बनती थी, जैसे मैंने बताया कि दाल हो गई या फिर पुलाव हो गए या फिर यू नो अलग अलग तरह की, कभी पास्ता, ये सारी चीज़ें नहीं बनती थी। तो जब मैं अपने स्कूल्स में जाता था, वहाँ पे जो हमारा सर्कल था, फ्रेंड सर्कल था, वो इस तरह के खाने लेके आता, मैं खुद का तो खाते ही था। एक्चुअली उनको मेरा खाना पसंद था, दाल हो गई, ये सब हो गया, जो एकदम होता ना कि एकदम मिडिल क्लास टाइप फूड। अब पता नहीं क्या क्या कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्या कैटेगरी में आता है ये, बट यस ये वो खाते थे और वो लेके आते थे आलू मटर पनीर सैंडविच पास्ता एंड देन पता नहीं और अजीब नाम वाले खाने, बट इतने यमी लगते थे यार। तो मैं उनका टिफिन खाता था और वो मेरा खाते थे। बट यस ये जो सिनेरियो है आपको कॉल मुझे कॉल करके बताना है 0800-004-866 पे कि आपकी मॉम का रिएक्शन कैसा रहेगा जब उन्हें पता पड़ेगा कि टिफिन आप नहीं कोई और फिनिश कर रहा है आपका, जो आपकी माँ सुबह जल्दी उठ के आपके लिए प्रिपेयर करती थी। जी हाँ, तो ये आपको जल्दी से मुझे बताना है। वेल यस हमारे बीच आ चुके हैं आज के लोकल सेलिब्रिटी का कॉल, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी मॉम का क्या रिएक्शन होता है। कैसे हो भाई?
5: Hi. बहुत बढ़िया।
19: वेल कैसा लग रहा है आपको आपका गाना यहाँ पे चला के, आई मीन सुन के कैसा लग रहा है आपको?
5: देखो वैसे तो आई वुड से कि वो आप लोग ही ज्यादा बेटर बता सकते हो।
19: नहीं बट एक सेल्फ प्राउड मोमेंट भी तो होता ना, एक खुद की आवाज।
5: या आई मीन आई एम रियली हैप्पी, या आई एम रियली हैप्पी,
19: दैट्स
5: नाइस। और एक लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे माइलस्टोन कंप्लीट हो गया लाइफ।
19: वेल इसे आप बस पहला माइलस्टोन रखिए एंड आई वुड रिकमेंड कि आप एक प्रॉपर थोड़ा पैसे डाल के और एक स्टूडियो हायर करिए और वहां पे जाके प्रोफेशनली रिकॉर्ड करिए। आई एम श्योर यू विल लव इट एंड वो एक आपका पहला पड़ाव होगा एंड स्लोली स्लोली ऑफ कोर्स यू विल ग्रो मोर, राइट?
5: थैंक यू सो मच।
19: बट यू बहुत ही अच्छा साउंड कर रहे थे आप यहाँ पे, ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा साउंड कर रहे थे।
5: थैंक यू।
19: बट यस अभी जो टॉपिक, अभी जो कॉल आया है वो इसलिए आया है बिकॉज आप इस कॉम्पिटिशन पार्ट लेना चाहते हैं, तो जल्दी से बताइए कि आपकी मॉम का रिएक्शन क्या होने वाला है। सॉरी बिफोर यू स्टार्ट, ये पीछे साउंड आ रहा है उसको थोड़ा ऑफ करेंगे। ओके ओके, हाँ जी बताइए।
5: तो सबसे पहले तो मेरी मॉम मुझे पहला क्वेश्चन ऐसा पूछेगी कि खाने में तूने क्या खाया था जो तूने मेरा खाना नहीं खाया,
19: राइट?
5: और सेकेंडली फिर अगर मैं ये बार बार रिपीट करूंगा तो वो मुझे बोलेंगे तू एक काम कर, खाना भी वही था और सामान लेके जा उधर ही रह क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ तेरे लिए। और स्पेशली एक बार ऐसे भी हुआ था जैसे मेरी फेवरेट चीज बनी है और वो भी मैंने नहीं खाई, मेरे फ्रेंड ने, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी जो जब मैं जॉब करता था तो वो मेरे साथ होती थी एंड वो ऑब्वियसली बात है वो बाहर से आके हॉस्टल में रहती थी तो शी लव द घर का खाना लो, तो वो मेरा खाना खा जाती थी। तो वो टाइम पे ये सीन बहुत बार हुआ एंड देन वन टाइम शी केम टू होम एंड शी सडनली से आंटी इट वाज रियली नाइस, आई हैड दैट डे मिक्स वेजिटेबल एंड इट वाज यमी। देन सडनली माय मॉम आस्क्ड के तूने क्या खाया, तो आई सेड के मैंने कैफेटेरिया से खाना खाया। तो ऐसा हुआ था। या
19: परफेक्ट परफेक्ट अफास भाई, थैंक यू सो मच यार आपके कॉल के लिए। एक कॉल उठाने वाला था बट उनका कॉल कट गया। तो अभी आप जो फोन कर रहे थे मुझे 4545 वाले लास्ट के दर मुझे आप फिर से कॉल करिए सो दैट वी कैन टॉक। बट अफास भाई थैंक यू सो मच,
5: हैव अ गुड वन ब्रो।
19: यप एंड एंजॉय द डे फॉर योर ऑल लवली लवली सॉन्ग व्हाट यू हैव प्रोवाइडेड अस। थैंक यू सो मच,
5: थैंक यू,
19: बाय। वेल यस मुझे और भी कॉल्स आते हैं, कॉल करिए, कुछ मिस हुए हैं मेरी तरफ से कॉल, आप मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे बात होगी। बट यस मीन वाइल आपको एक और मौका बता देता हूँ जहाँ पे आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए और आपको एक पर्सनलाइज वाउचर जो है जो आप मॉम के लिए बनाएंगे, चाहे वो अपने हाथ से बनाए या फिर ऑनलाइन जाके बनाए, उसे आप पोस्ट करिए हम 104.2 FM के जरिए ताकि आप एक और ड्रॉ में शामिल हो सके जहाँ पे आप जीत सकें $200। जी हाँ, विनर जो है वो अनाउंसमेंट की जाएगी 8 तारीख को, 8 मई को द ड्राइव शो में, और जो मैंने पहले जो इंसिडेंट सिनेरियो बताया था उसका डिस्क्लोजर होगा द ब्रेकफास्ट शो में सेम डे 8 तारीख को ही। जी हाँ, वैसे यस बने रहिए, बड़े बड़े सितारे यहाँ पे आ रहे हैं उनके बारे में बात बताऊंगा थोड़ी देर में।
2: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

वेल, आपका स्वागत करता हूँ लंच बॉक्स में फिर से। अभी लेटेस्ट खबर मैं आपको बता देता हूँ। लेटेस्ट खबर ये है कि ऑकलैंड में एक आदमी ने फ्रॉड किया है और उनकी केस में सजा हुई है, क्योंकि उसने कोविड रिलीफ फंड के लिए 15 अलग अलग आइडेंटिटीज यूज की, जिनमें उसके डिसीज फादर का नाम भी शामिल था। वैसे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और फेक कंपनीज का नाम यूज़ किया है। 23 फेक एप्लीकेशंस फाइल की ताकि गवर्नमेंट के पेंडेमिक सपोर्ट स्कीम्स में पैसा मिल सके, और इन फ्रॉड्स के थ्रू उसने करीबन $108,000 डायरेक्टली रिसीव किए हैं, जबकि टोटल क्लेम अमाउंट 224,000 से ज़्यादा था। दैट्स अ बिग अमाउंट यार, दैट्स अ बिग मनी। कोर्ट ने उनको होम डिटेंशन की सजा दी है और रीपेमेंट का भी ऑर्डर दिया है। आप रे, अब तो कैसे करेंगे ये चुकता। इनफैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ होम डिटेंशन पे, यानी कि घर पे वो लॉक है, कहीं जा नहीं सकते। मुझे पता नहीं उस पे काम करना अलाउड है नहीं है, आई हैव नो आइडिया। बट उन्हें रीपेमेंट के लिए भी गया, सही किया एक्चुअली गवर्नमेंट ने, कि यार जो फैसिलिटीज़ दे रही है सरकार उसका मिसलीड जो है मिसयूज ना करें। दैट इज़ गुड दैट ये चीज़ हो रही है। बट यस, ये तो बात थी लेटेस्ट खबर की। बट आपको एक चीज़ बता देते हैं, जावेद अली, जी हाँ, वो

आ रहे हैं, एक्चुअली आने वाले हैं, आज हमारे शहर लैंड करने वाले हैं, फीजी से आ रहे हैं वो, और आपके पास मौका बहुत ही कम है, सिर्फ दो दिन ही बचे हैं। परसों उनका शो है जिसका नाम है रफी और मैं, टाइमलेस क्लासिक ऑफ मोहम्मद रफी बाय जावेद अली, प्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट ब्रिंग्स टू यू ये वाला शो। वैसे staralliance.com पर जाइए और वहीं से आप टिकट भी खरीद सकते हैं, $59 से शुरू हो रही टिकट, बहुत ही कम टिकट बचे हुए हैं आपके पास। फूड स्टॉल एंड इजी ऑनसाइट पार्किंग भी अवेलेबल है। 8 मई परसों विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में ये शो होने जा रहा है।

स्वागत करते हैं फिर से आपका रब रखा सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। आपने गाना सुना है, वैसे इसमें एक और बहुत ही बढ़िया गाया है, उनका नाम आधा ही आ रहा है, सलीम ने म्यूजिक दिया है। जी हाँ, बहुत ही प्यारा गाना है। आपको एक और लेजेंडरी का शो है, होने वाला है, उनको भी आप देखिए। आप जल्दी से जाइए dryticketsdotcom पर और खरीद लीजिए, बिकॉज जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस, शहजादा प्रोडक्शन आप सभी के लिए लेके आए हैं एक अमेजिंग नाइट, जिसमें आने वाले हैं राहत फतेह अली खान। जी हाँ, आप इनका शो होने वाला है द ट्रस्ट एरिना में 25th of July को। आप विटनेस करिए, बहुत ही ट्रिमेंडस इनकी आवाज़ है, बहुत ही बढ़िया कवाली भी गाते हैं। और आपको डबल पास अगर जीतना है तो हमें ऑफकोर्स एक मैं गाना चलाने वाला हूँ जिसके आपको लिरिक्स जो है वो आपको मुझे भेजने हैं जल्दी से। मैं थोड़ा सा चलाऊँगा यहाँ पर और उसे आपको फटाफट से मैं यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ और आपको उसके लिरिक्स जो है पूरे करने हैं, बाय 5599 पे भेज दीजिए। RFK लिखना मत भूलिएगा, वो लिखेंगे तभी आप इस ड्रॉ में शामिल होंगे। RFK लिखिए, अपना नाम लिखिए और इस गाने की पूरी लाइन जो है वो लिख के मुझे 5599 पे भेज दे ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो सकें डबल पास के लिए।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: You get money, get cash.
3: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
4: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
5: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटो C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू. विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटो ग्रीन लेन और बॉटनी. टीज़ एंड सीज़ अप्लाई.
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड.
6: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. Lunchbox with Ketan.
7: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
0: इसके पीछे
2: हम.
0: Tech Talk.
8: स्वागत करते हैं आपका लंच बॉक्स शो में फिर से. वेल यस, एक और महारथी यहाँ आ रहे हैं. बहुत ही बढ़िया लेजेंड है ये. लेजेंड तो नहीं कहूँगा, बट उनका जो बात करने का तरीका है, उनकी जो रियल लाइफ स्ट्रगल है, वो बहुत ही बढ़िया सुनने में को लगती है. एक लगता है कि हाँ, कैसे एक इंसान छोटे से शहर से, छोटे से जगह से आके अपना नाम कमाता है, एक अलग ही प्राउड मोमेंट होता है. वेल यस, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के बोल्डेस्ट कॉमिक मुनावर फारूकी, जो आ रहे हैं ऑकलैंड ढांडो शो लेके. ब्रूस मैसन सेंटर में होने जा रहा है 23rd of May, और आप इस रॉ रियल अनफिल्टर्ड कॉमेडी शो को मिस नहीं करना चाहिए. आप जाइए ticketmaster.co.nz पे. जी हाँ, वेल यस, आपके पास एक और मौका है हमारे लिसनर के लिए, जो कि है डबल पास जीतने का. वो ये है कि आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, 104.2 FM, टैग करिए वहां पे उस पोस्टर के अपने दोस्त को. जैसे ही रील आप देखते हैं, तो कौन सबसे पहले आपके जहन में आता है, उसे आप टैग करिए वहां पे और ड्रॉ में शामिल हो जाइए. ड्रॉ का विजेता जो है वो घोषित किया जाएगा 11th of May को, यानी कि ठीक आज से 5 दिन बाद. ड्रॉ विल हैपन ऑन द 11th of May. बट यस, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट डूइंग इट नाउ बिफोर वी क्लोज दिस कॉम्पिटिशन डबल पास वाला. बट यस, ticketmaster.co.nz is the website जहां पे आप टिकट जाके खरीद सकते हैं.

0: ευκαιρία να βάσκουν, Τζέκη.
1: स्वागत करते हैं फिर से आपका लंच बॉक्स शो में। बट यस, आज के लिए बहुत ही बढ़िया रहा आज का दिन, समय और बातें। मेक श्योर रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ROVA अपने प्ले स्टोर ऐप स्टोर से कम्प्लीटली फ्री है, सर्व कर सकते हो, फ्री ही है ऑलमोस्ट, बिकॉज उससे ज़्यादा डेटा तो आप हमारे आप अपने सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करने पर लग जाते हैं। बट यस, आप बने रहिए, अभी कॉफी ब्रेक में आपका स्वागत करने वाली है सैंडी एंड देन रुज़वी, उनका साथ देंगे इन द ड्राइव शो। बढ़िया, तब तक के लिए मैं निकलता हूँ, आई विल सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम 12 से 3, राइट? वेल यस, अब तक तो याद होना चाहिए आपको। बढ़िया, थैंक यू सो मच एंड यू गाइस टेक केयर एंड एंजॉय, लव यू।

0: with Kaitan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत हो.
4: आए आए बताओगे यार.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Reliance Ventilation System.
7: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
6: Moisture और ventilation का problem लगता है.
7: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
6: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
8: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
9: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
10: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें. पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए. auckland council.govt.nz/where-it-goes पे. Tamaki Turuki, All Together Auckland.
0: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. A person is in a serious condition after falling into a fertiliser bin in central Hawke's Bay. They were helped by firefighters this morning at a commercial property in Waipukoro. WorkSafe is making initial inquiries. Today's unemployment figures are being described as encouraging but fragile. Despite it falling 0.1% in the March quarter, the Iran conflict and rising fuel costs are putting pressure on businesses. Alan McDonald from the Employers and Manufacturers Association says firms are reacting.
12: Trying to put your hand out and say we need help, that's not going to get a response. But what we are seeing is businesses are preparing and taking steps to manage down their fuel use.
11: A Salvation Army report suggests a lack of stable housing is one of the main drivers of high reoffending rates. Mission officer Ian Hudson is also concerned about the wider effects.
13: If you don't have a home base, you can't deal with some of the other things that are related, like seeking help around mental health, addictions, life skills.
11: Fuel stocks have dipped since the last update, but are still within normal levels. Diesel is down by 5 days, but this follows an earlier boost as tankers unloaded. Both petrol and jet fuel have dropped by about 3 days. To rugby with Shift 4, a possible change of heart at the Crusaders. Last month it was announced the Crusaders' pre-match experience was going to be reined in because it was too risky to run the horses in the new stadium. Horses have been seen there today. And the basketball, game one of the NBA Conference semis. In the West, the Thunder well ahead of the Lakers in the final quarter. In the East, the Pistons beat the Cavaliers.
0: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
14: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 21.9 डिग्री और आज को ओवरनाइट 15 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है. हल्की सी बारिश होने के चांसेस है. मोस्टली फाइन वेदर.
0: द बीट ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
14: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ है कॉफी ब्रेक में. और 4 बजे के बाद मेरा साथ यहाँ पे ड्राइव शो में हो जाएगा रुजबे के साथ. सो कैसे है आप, आपका डे आज का कैसा जा रहा है सो फार, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा. न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ में लोकल आर्टिस्ट को हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड बैकयार्ड बीट्स हम प्ले तो कर रहे हैं फ्रंट यार्ड में, लेकिन बैक करना भी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज जब तक आप बैक नहीं करते हैं तो ये हमारे आर्टिस्ट बैक यार्ड से फ्रंट यार्ड में जाएंगे कैसे, वो आपका काम है करने के लिए। सो सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जाइएगा, हमारे इंस्टा पेज आप विजिट कर सकते हैं, hum_fm, hum_fm। हमारे कुछ लोकल आर्टिस्ट है जिन्होंने अभी वहाँ पे कुछ वीडियोस अपनी शेयर की है, और एक तो लोकल आर्टिस्ट ऐसा है जिसने अपनी दो दिन पहले वीडियो शेयर की थी, वो इतना वायरल हो गया है, इतना ज़्यादा वायरल हो गया है कि उसके पीछे पेपरेजी लग गए हैं। ये आप वहाँ पे वीडियो जाके देखेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। यू हैव टू गो एंड वॉच दैट वीडियो। एंड वो एक्चुअली में वो जो अब सेलिब्रिटी बन चुका है, दो दिन पहले यहाँ पे रेडियो पे आप उसका गाना सुन रहे थे, अभी वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है, लेकिन काइंड इनफ है कि यहाँ पे आके दर्शन देता रहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट केतन कुमावत। केतन, सो मैंने सुना तुम बहुत वायरल हो गए हो यार। हाँ, लोग यार तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए वीडियो बना रहे हैं तुम्हारी।
15: मतलब मैं, मेरी लाइफ में ये पहली बार हुआ, तभी अगर आप वीडियो में देखो मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं मतलब ना हाय बोल पाया ना बाय बोल पाया, बस सीधे सीधे कार में घुस गया।
14: वो गाड़ी की बात करें तो गाड़ी बड़ी क्लासिक है, किसी और की गाड़ी में घुस गए
15: पहले। नहीं, उसमें घुसा नहीं, मेरे को लगा मेरे लिए
14: वो जैसा
15: वो मेरे लिए नहीं थी, वो किसी और के लिए थी। मैं तो भाई सीधे सामने नैनो खड़ी थी, उसमें बैठ गया।
14: सो अगर आपको समझ में नहीं आया तो यू हैव टू गो एंड वॉच द वीडियो फर्स्ट।
15: हाँ, वॉच करिए और बताइए वो कौन से एयरपोर्ट का है, कौन से एयरपोर्ट का वीडियो है।
14: एयरपोर्ट कहाँ, मतलब कितने एयरपोर्ट है हमारे।
15: देखते हैं अभी कौन से एयरपोर्ट का वो सीन है जहाँ पे बाहर आते ही।
14: हाँ।
15: मेरे को लग रहा है लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि काफी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं,
14: काफी सेलिब्रिटीज
15: जो ऑकलैंड आ रहे परफॉर्म करने,
14: और मुझे ऐसा लगा होगा कि जावेद अली नहीं है ये केतन कुमावत नहीं है, ये जावेद अली है।
15: हाँ,
14: तो ये भी एक रीजन हो सकता है,
15: कुड बी, कुड बी,
14: बिकॉज़ जावेद अली तो लैंड हो चुके हैं।
15: हाँ, बट उनके जगह मैं निकला हूँ,
14: वही ना, ये भी एक रीजन हो सकता है।
15: कंफ्यूज नहीं हो गया हूँ।
14: बॉडीगार्ड कहाँ से मिला तुम्हें?
15: अब यार मेहनत कर रहा हूँ इतने सालों से, कहीं तो फायदा होगा।
14: तो हाँ, ये तो है, गार्ड तो चाहिए होगा।
15: हाँ, सही है, थोड़ा एटीट्यूड चाहिए बस, और क्या, गार्ड आ जाएंगे अपने आप।
14: इफ यू डोंट नो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम पे जाके आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
2: Shower dome.
3: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
4: टाइगर बार एंड रेस्टोरेंट इन सोहो होटल माउंट रॉस्कल। आए और इंजॉय करें इनका सोफिस्टिकेटेड डाइनिंग एक्सपीरियंस, जहां पर आपको तरह तरह के फ्लेवर्स मिलेंगे, क्रिएटिव एशियन फ्यूजन डिशेस से लेकर जेस्टी सी फूड तक, साथ में रिफ्रेशिंग कॉकटेल्स, सब कुछ एक बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश अंदाज में। ये ओपन है फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, क्लोज टू ऑकलैंड सीबीडी एंड मिनट्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। टाइगर रेस्टोरेंट बार इन सोहो होटल, स्टोरहट रोड, माउंट रॉस्कल। विजिट टाइगर एट soho.co.nz।
5: Join the Great Big Balance Check at New World. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
6: The Vibe Mix Events presents
7: the Grand Musty Night in conjunction with Freight and Cargo Brokers, Low Finity in Wicked Chicken Botany Downs on 23rd May at Manurewa Netboat from 6 PM. Show featuring comedy, dance and giveaways with stars Satya Anand, Jay Bhiyaji, Rowdy Naman Chadpar alongside Money, Monto, Aku and Ketan. Tickets available at Get Fresh Mingri, Jay's Fresh Mart, The Agenda, Hunter's Food Town, Guest Manurewa and Wicked Chicken Botany.
6: Don't miss out.
8: Capture the impossible with Spark and the new Samsung Galaxy S26 series with huge deals on now. Heading to Spark Arena? Put the latest nightography to the test and capture the best details of the night. Then with Photo Assist, easily say goodbye to the dancing photo bombers in the back. Buy from Spark for huge deals on the Galaxy S26 series now. T's and C's apply. Delivery times may vary.

0: 3:17 हो चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। वैसे न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी BSA, जहाँ पे कंप्लेंट्स होती है या फिर टीवी रेडियो कंटेंट की जहाँ पे फीडबैक दिया जाता है, BSA, इसको वो स्क्रैप कर देंगे। सो ये जो डिसीजन, इसे कन्फर्म किया है मीडिया के मिनिस्टर पॉल गोल्डस्मिथ ने। सो BSA डिस्टैब्लिश्ड हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी एंड एक डिफरेंट सिस्टम आएगा इसकी जगह में। सो गवर्नमेंट ने बोला है कि मीडिया वर्ल्ड हैज़ चेंज टू मच। BSA जो था, ये ट्रेडिशनल टीवी एंड रेडियो के लिए डिज़ाइन किया गया था 1989 की एरा के, उस समय के बाद से। आजकल लोग सिर्फ रेडियो एंड टीवी कंज्यूम नहीं करते हैं, वो पॉडकास्ट, स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कंटेंट, बहुत कुछ कंज्यूम करते हैं। लेकिन सिर्फ थोड़ा ही पोर्शन ऑफ कंटेंट है जो कि रेगुलेट होता है बाय द BSA। सो प्लान इज़ टू मूव फॉरवर्ड, सेल्फ रेगुलेशन होगी। लाइकली एक ग्रुप होगा, जैसे कि मीडिया काउंसिल, एक ग्रुप होगा जिसके थ्रू रेगुलेट की जाएंगी चीज़ें। फिर भी रेगुलेट होंगी लेकिन एक ग्रुप के जरिए, रेदर देन BSA। जर्नलिस्ट एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वुड पुलिस देम सेल्फ मोर बेसिकली। सो स्पार्क हुआ क्या, ये ट्रिगर क्यों हुआ इस मूव का, बिकॉज BSA ने रिसेंटली रूल किया कि इट कुड रेगुलेट ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर्स लाइक पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीम, जिसके बारे में आपसे शेयर किया था कि सिर्फ टीवी रेडियो नहीं, उनको भी वो रेगुलेट करेगी। तो वहाँ से क्वेश्चंस रेज हुए अबाउट ओवर रीच या फिर डिजिटल वर्ल्ड में जो रेलेवेंस है BSA की, इसकी। तो दैट्स वाई उन्होंने बोला कि इससे अच्छा है कि आप उन सबको रेगुलेट करने से अच्छा है कि किसी को भी रेगुलेट नहीं करो। ये डिसीशन हुआ है। सो आपका इसके ऊपर क्या टेक है? आपको लगता है कि ये एक एक्सटर्नल बॉडी होनी चाहिए जहाँ पे आप कंप्लेंट्स कर सके? बिकॉज हम यहाँ पे जैसे रेडियो पे काम करते, कुछ ऐसा होता है तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आप कंप्लेन कर सके, आपकी सुनी जा सके। सो इफ़ देयर इज़ नो BSA, हु डू यू कंप्लेन टू व्हेन समथिंग ऑफेंसिव होता है कहीं पर भी? सो इज़ इट अबाउट मॉडर्नाइजिंग हम कर रहे हैं मीडिया की, या फिर एक ओवरसाइट भी है, या फिर आपको लगता है कि विद टाइम थिंग्स आर चेंजिंग, तो दिस वॉज हाई टाइम ये चीज़ भी चेंज होनी चाहिए थी इन मीडिया, लाइक इन रेडियो? आई अंडरस्टैंड दिस, इस पर्स्पेक्टिव से समझ में आती है चीज़ें कि अगर कोई बहुत ही लॉजिकल, ऑथेंटिक, अच्छी कंप्लेंट होती है तो उसके ऊपर काम होता है, 100% होता है उसके ऊपर काम। लेकिन देन वी डोंट नो कि टीवी कंटेंट को भी लेके दिस इज़ लाइक वाइडर वे, बहुत सारे रेडियो स्टेशन इसमें आते हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स भी इसमें आते हैं। खैर, आपका क्या टेक है इसके बारे में कि ये अथॉरिटी होनी चाहिए थी, इसको स्क्रैप करके अच्छा किया है या फिर नहीं? शेयर कर सकते हैं 2599 पर।
1: Hollywood's most wanted. गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना A game. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. वैसे किड्स हु आर डूइंग बिग थिंग्स इंस्पायरिंग किड्स, रियान अरशद का नाम भी आता है. रियान अरशद जो है, वैसे ही वॉज जस्ट 10 ईयर ओल्ड जब इसने मेंटल हेल्थ ऐप बनाई थी. सो ही फोकस्ड ऑन हेल्पिंग किड्स एंड टॉक अबाउट द फीलिंग्स. एंड क्या होता है कि बच्चों के बीच में कई बार ये इनकरेज करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो जैसा फील कर रहे हैं उसके बारे में शेयर ज़रूर करें. बहुत सारी चीज़ें होती है, कई बार उनको शर्म भी आती है कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए, हेजिटेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. सो रियान अरशद जो है ये यूके बेस्ड ऐप डिवेलपर है. He emerged from a background in computer science and analytics. Now he emerged from it. But at the age of 10, he thought about this app, jiski programming ki. He made this app and jahan pe data analysis, user-focused design isne tayar kiya. And jahan pe bachche apne feelings ke baare mein baat kar sakte hain. This is so cool. So if you know about any such prodigy जिसने बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, you know, नाम बनाया, हमारी कम्युनिटी में भी अगर कोई है तो प्लीज़ उसके बारे में यहाँ पर ज़रूर शेयर कीजिएगा. उनसे बातें करने का हमें यहाँ पर सौभाग्य होगा एक्चुअली में. इफ़ यू नो सच किड तो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं 5599 पर मैसेज करके या फिर ई मेल करके buzz@humfm.com पर. Sweetie, pretty,

कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड मैक्सिको ने क्या किया है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है एक ब्रीड को, एक डॉग की ब्रीड को। ये हनी कलर्ड स्ट्रीट डॉग है, इसको इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, इसको नाम दे दिया है कैरोमेलो। कैरोमेलो इसको नाम दिया है। सो बेसिकली ये जो डॉग है ना, ये ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर है, इज़ वन ऑफ द नेटिव ब्रीड्स वहाँ पे मैक्सिको में। सो एवरी कॉर्नर में ये स्ट्रीट डॉग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। सो इसी कारण उन्होंने क्या बोला कि ये जो स्ट्रीट डॉग है इसको कोई स्ट्रीट डॉग नहीं बोलेगा आज से, इसका नाम कैरोमेलो होगा। जो भी इसको देखोगे कैरोमेलो, आई स्पॉटेड कैरोमेलो देयर। सो ये जो मूव है इट बेसिकली एम्स टू गिव स्ट्रीट डॉग्स अ वैल्यू दे डिजर्व एंड इनकरेज रेस्पॉन्सिबल अडॉप्शन अक्रॉस द कंट्री। सो नो लॉन्गर जस्ट अ मट, कैरोमेलो इज नाउ मैक्सिकन सिंबल देखा जाए तो। वेल एनीवे, आर यू अ पेट पर्सन और नॉट? आपका कभी मन किया है कि आप अपने घर में पेट रखो, बताइए यहाँ पे, या फिर आपने कभी पेट रखा है? पेट रखा है तो क्या रखा है, डॉग, कैट, कोई बर्ड आपने रखा है? काफ़ी लोग तो टॉर्टोइस भी रखते हैं, या फिर फिश अगर आपने अपने घर पे रखी है। आपने अपने घर पे पेट अगर रखा है तो क्या रखा है, ज़रूर शेयर कीजिए यहाँ पे 5599 पर मैसेज करके शेयर कर सकते हैं।

थ्रोबैक गाना आप यहाँ पे सुनने वाले हैं, अर्ली 2000s के जो गाने हैं, 2000s के जो गाने हैं आप थ्रोबैक में इस बार सुन रहे हैं. इफ़ यू आर मिसिंग आउट ऑन सम सॉन्ग्स, अगर आप यू नो 60s 70s के गाने, उस एरा के गाने आप सुनना चाहते हैं जिसे गोल्डन टाइम बोला जाता था, या फिर 80s के गाने सुनना चाहते हैं, तो आप हम पे जाके म्यूज़िक स्टेशन सुन सकते हैं जहाँ पे रिवाइंड एंड हम 80s जुकबॉक्स जो है ये आप सुन सकते हैं. वैसे भी यू नो इस समय पर रोवा पे ट्रेंड कर रहे हैं ये दोनों म्यूज़िक स्टेशंस टॉप पर, तो आप भी जाके सुन सकते हैं कि ट्रेंड क्यों कर रहे हैं. और भी काफ़ी म्यूज़िक स्टेशंस हैं हमारे, जैसे कि चढ़दी कला पंजाबी हिट, जिसमें बैक टू बैक पंजाबी गाने आपको मिलेंगे. देन राहत फ़तेह अली खान जो कि आगे परफॉर्म करने वाले हैं, इनके कुछ गानों का हमने एक टेप वहाँ पर रखा है. राहत फ़तेह अली खान के गाने आप सुन सकते हैं, कव्वाली सूफ़ी सॉन्ग्स इसका म्यूज़िक स्टेशन है. एंड देन वी हैव फीजी भजन्स एंड फीजी कीर्तन्स जो है इसका भी म्यूज़िक स्टेशन है. तो आपको जब टाइम मिले ज़रूर सुनिएगा और इसकी फीडबैक दीजिए और बताइएगा कि आने वाले दिनों में ऐसा कौन सा म्यूज़िक स्टेशन है जो एक्चुअली में आप यहाँ पे सुनना चाहेंगे. म्यूज़िक स्टेशन इज़ बेसिकली लाइक यू नो एक प्लेलिस्ट हम तैयार करके वहाँ पे देते हैं और वो प्लेलिस्ट आपकी बैक टू बैक गाने वहाँ पे एक्चुअली में आपके लिए प्ले होते हैं रोवा पे. सो यू कैन फाइंड, अगर आप रोवा पे जाके हम पे क्लिक करते हैं तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके ये सारे के सारे म्यूज़िक स्टेशन आपको मिलेंगे.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Feels like 20 degrees, 20.3 actual temperature. Overnight temperature is going to be as low as 15 degrees tonight. It's not that cold tonight. 5:32 ko hoga aaj sunset. Few showers hai mainly north of Harbour Bridge aur northeasterlies ka bhi saath rahega.
0: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: Hamesha saath dene wale dost.
3: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepy at Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
0: Super Se Ooper. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Drive Show with Sandy and Rizvi.
4: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: 4:02 हुए हैं. गुड आफ्टरनून. यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुज़बे. हाय सैंडी, गुड आफ्टरनून.
5: अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून रुज़बे. हाउ आर यू?
1: एकदम मस्त यार सैंडी. लेकिन आज सही मतलब नाइस साउंड ऑन द रेडियो.
5: नाइस साउंड ऑन द रेडियो, ऐसा क्यों?
1: नहीं, ऐसे ही अच्छा लग रहा था. मतलब वो क्या, ये बहुत अच्छा लगा ये सुन के. ये सुन के बहुत अच्छा लगा. किधर गया यार? एक मिनट, मैं सुनाता हूँ आपको ना.
5: okay,
1: अगर okay. आपको इतना ही अंदर से ये हो रहा है तो मैं आपको सुना देता हूँ. आप सुन लीजिए.
0: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने.
5: अच्छा, ये
1: क्या है? ये बेस है फाड़ू मेरे थाइस के लिए.
5: ये तुम्हें लिरिक्स सर्च करने पड़ेंगे.
1: अच्छा, ये मेरे को जानना पड़ेगा कि कौन से सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग.
5: By the way, मैंने लास्ट आवर में न्यूज पढ़ी है एक.
1: हाँ, अरे वाह, क्या बात है.
5: और ये शेयर करना जरूर बनता है तुम्हारे साथ भी
1: प्लीज,
5: अगर आपने गाइस मिस आउट की है. ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी टू बी स्क्रैप्ड.
1: क्या बात कर रहे हो यार, ये तो बहुत गलत बात है यार.
5: क्यों गलत बात है?
1: तो कोई रोक टोक ही नहीं होगी मेरे पे मतलब फिर अभी.
5: या,
1: तो मतलब मैं तो अभी खुलेआम ऑफेंड करूंगा लोगों को.
5: तुम खुले हो जाओगे एकदम क्या?
1: अभी तक तो थोड़ा तो डर था कि हाँ बीएसए है, थोड़ा बहुत होगा. ये तो बहुत ही गलत बात हो रही है.
5: सो या, ऐसा हो रहा है कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है इट विल स्क्रैप बीएसए जो टीवी रेडियो कंटेंट को ओवरसी करता है. एंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो है पॉल गोल्डस्मिथ, इन्होंने बोला है कि जो सिस्टम है वो बहुत आउटडेटेड है.
1: अरे बाप रे, आउटडेटेड से याद है जीएफके क्यों नहीं स्क्रैप हो रहा है फिर?
5: एग्जैक्टली वो बात की बात है. खैर, मे बी वहां तक भी पहुंचेंगे.
1: सो किसी को पता नहीं है तो उनको बता दे कि जीएफके एक ऐसा सर्वे होता है जिसमें बहुत ही मॉडर्न टेक्निक्स यूज होती है पता चलने के लिए कि
5: कितने लोग रेडियो सुनते हैं.
1: हाँ, और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये है जहाँ पे वो बुकलेट्स भेजते हैं रैंडमली लोगों को.
5: कितने घरों में वो बुकलेट जाती है वो इस हिसाब से होता है और वहाँ से पता चलता है कि रेडियो स्टेशन में कितने लिसनर्स हैं, वो सब चीजें.
1: सो वेरी मॉडर्न एंड हाईफाई टेक्नोलॉजी.
5: सो बेसिकली इसमें क्या हुआ है ना रुज़बे, बिकॉज ये डिबेट है कि जो आजकल की ऑडियंस है ये कंज्यूम करती है कंटेंट अक्रॉस पॉडकास्ट, स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो सिर्फ रेडियो और टीवी को ही क्यों रेगुलेट किया जाए? Because it's being it's everywhere.
1: तो इसलिए वो बोल रहे हैं हम किसी को भी regulate नहीं करेंगे.
5: No, there will be like a bigger role. हाँ. There will be a replacement role like New Zealand Media Council.
1: Oh, right.
5: ऐसा कुछ रहेगा. So जहाँ पे still चीजें होंगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं रहेगा. But there is a push towards self-regulation by the media industry as well.
1: Yeah.
5: So, वो भी कुछ ऐसी चीजें होने वाली
1: है. Which is good, yeah, because I think we all have to be responsible for what we broadcast out.
5: 100%,
1: क्या पता हमारे words किसको किस हिसाब से affect करें.
5: Yeah. You never know, कभी भी कुछ भी हो सकता है. कोई चीज ऐसी चल गई जिसके ऊपर कोई ऑफेंस ले लिया किसी ने, नहीं पता होता है.
1: हाँ यार, and completely like for example जैसे कि ये बेस है फाड़ू, ये जो वर्ड्स थे हनी सिंह के शब्द थे ना, ये ऑफेंड कर सकते हैं किसी को भी.
5: या, ये भी हो सकता है.
1: तो
5: गाने में नहीं करते लेकिन ऐसा स्पेसिफिकली कभी बजेगा तो कर सकता है.
1: बार बार अगर बजेगा तो कर सकता है ऑफेंड. तो ये सेल्फ रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बीएसए को स्क्रैप कर दो क्योंकि लीगल फीस बढ़ जाते हैं ना उसमें.
5: सो या, ये हुआ है लेटेस्ट. सो आई थॉट कि ये भी शेयर करते हैं. व्हाट इज योर टेक? मैंने लास्ट आवर में भी पूछा था. लास्ट आवर में मैंने शेयर किया था अबाउट मैक्सिको में पेट जो स्ट्रीट डॉग है उसको नाम दे दिया जाएगा कैमिलो. बट काफी लोगों ने यहाँ पे लिख के भेजा है जो उनके पास पेट्स हैं.
1: एक ने लिखा है आई हैव गॉट टू रैबिट्स एज अ पेट, स्नोई एंड मफिन.
5: Wow.
1: That's so cool. Nav ne likha hai, I'm a huge dog lover. I have two dogs in India and also had a pet turtle. Oh, illa. Turtle, meko laga illegal hota hai turtle ko rakhna, yaar.
5: I don't think so.
1: Haan, turtle is illegal. You can't have a pet turtle or a tortoise.
5: So, wo to usne yahan pe, yahan ki baat nahi hai, wo India ki baat kar raha
1: hai. India mein bhi illegal hai. Pure world mein illegal hai. Turtle ya tortoise. Like, you need to have a proper license to have them.
5: Okay, ये मुझे नहीं पता था. It's
1: क्योंकि वो endangered species है, मतलब वो बहुत कम है. So it's illegal to have a pet.
5: In New Zealand, you generally can't just buy any turtle you want. So New Zealand के पास strict biosecurity laws है basically to protect the native wildlife.
1: I'm very sure India में भी illegal है.
5: Okay.
1: But obviously, I'm not saying कि ये.
5: So काफी turtle species actually जो है ना वो restricted है या banned है. So इसके कारण कई बार authority जो है DOC जो है Department of Conservation कई बार permit नहीं देते हैं.
1: Yeah. So anyway, आपके साथ इस घंटे हम एक हमारे expert को लेकर आने वाले हैं. आपके साथ वो बात करेंगे और आपको थोड़ा update देंगे about what's happening in the housing and mortgage sector. तो गुरु कंडोला से बात करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस घंटे की with अरिजीत सिंह, देव नेगी एंड नकाश अजीज़.

0: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits. हमारे साथ यहाँ पे अभी एक कॉलर जुड़े थे ऑफ एयर और उन्होंने कहा one of the reasons कि क्यों टर्टल्स और ये इलीगल हुए is because वो गंद बहुत करते हैं
1: यहाँ और इसलिए काफी लोग उन्हें और बाहर छोड़ देते थे.
0: मेरे को लग रहा है कि वो ऐसा वो स्लो चलते हैं ना तो वो जहाँ पॉटी करते हैं वहाँ भी ज्यादा टाइम के लिए ऐसा मेरे को लग रहा है.
1: टर्टल भाग भी सकते हैं.
0: टर्टल भागते हैं.
1: भाग भी सकते हैं या उनकी मर्जी है. बहुत मर्जी के हिसाब से काम करते
0: अच्छा,
1: हैं
0: ऐसा टर्टल है।
1: या
0: और टॉर्टोइस
1: आई हैव नो आइडिया.
0: हाँ सेम. टॉर्टोइस मेरे को लगा हमको बचपन से बताया था कि वो कछुआ और टॉर्टोइस का जब भी रेस होता है तो टॉर्टोइस जीतता है और बोलते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. इसलिए तो मैं लास्ट आता था हमेशा रेस में.
1: ये भी है. ओ अच्छा.
0: ओके
1: क्या यार कौन सी शेल थी तुम्हारे ऊपर.
0: इट टेक्स
1: क्या था.
0: इट टेक्स सम टाइम. एनीवे आपके लिए अभी हम क्या मदर्स डे कॉम्पिटिशन थोड़ी देर में लेकर आएंगे.
1: मदर्स डे का कॉम्पिटिशन भी लेके आएंगे. स्टे ट्यून. आपको यहाँ पे कॉल करना होगा 0800 00 हम पर
0: 0800 00 4866. थोड़ी देर में मदर्स डे कॉम्पिटिशन में यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए और $300 $200 या $100 आपके नाम कर लीजिए.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
4: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं.
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
6: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस वाज सिंपल एंड फ्रैंक.
5: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 0984699934 और सर्च PFSL. T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
7: With local grants, anytime you play a Lotto NZ game, it's a win for your local community. Because 100% of profits go back into wins across Aotearoa. Cheers, Lotto NZ players.
8: What kind of businesses run on business fibre? Businesses with no time for downtime, businesses that could flatline when deadlines are missed, and businesses that simply can't afford to be offline. If you need fast restoration when there's a network outage, get your business running on business fibre.
9: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations, like LA and San Francisco from just $939 one way. Or fly to Vancouver from only $999 one way. Book now at FijiAirways.com or call your travel agent. Conditions apply.
10: Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
3: TradeDepot.co.nz.
11: बिग बॉस देखा है ना. अब घर से बाहर निकलो और विनर को लाइव देखो. मुन्नावर फारूकी आ रहे हैं ऑकलैंड विद हिज स्टैंड अप कॉमेडी शो धंधो.
12: छोटा तो मेरे को नहीं समझ में आता था. मैंने अपने चाचा से पूछा कुबुले कुबुले कुबुले क्यों होता है ऐसा तीन बार. मेरा चाचा बोलता है औरतों को एक बार में समझ में कहा आता है.
11: सैटरडे 23rd में ब्रूस मेसन सेंटर ताकापुना 7 PM onwards. बुक योर टिकट्स नाउ ऑन ticketmaster.co.nz.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby.
13: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
14: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from $449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
3: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
0: सुपर से ऊपर ये शो आपके लिए जारी है. अभी 4:19 हुए हैं एंड मदर्स डे कंपटीशन में पार्ट लेने का मौका आप आपको अब मिल रहा है।
1: Yes, Mother's Day में आपको यहाँ पे अभी कॉल करना है 0800 हम पर।
0: आज कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि क्या होता है अक्सर हम आपको एक सिनारियो देते हैं और फिर आप वो सिनारियो के साथ रिलेट करते हो और फिर आप हमें कॉल करते हो, लेकिन फिर हमने सोचा कि उनका क्या ना जो हमारे सिनारियोस के साथ नहीं रिलेट कर पा रहे हैं। आज हम उनको भी मौका देना चाह रहे हैं। सो टुडे यू गिव अस अ कॉल 0800-004-866 एंड शेयर योर फॉन्डेस्ट मेमोरी विथ योर मॉम।
1: कोई भी बात आप शेयर करना चाहते हैं अपनी मम्मी की,
0: फॉन्डेस्ट मेमोरी है
1: या फॉन्डेस्ट या कोई भी क्लोज कुछ भी एनीथिंग,
0: कुछ भी हो सकता है, चलो ठीक है
1: एनीथिंग। यू नो मम्मी को लेके कई बार बड़ा हम हो जाएंगे कि यार कौन सी वाली मेमोरी शेयर करें। फॉर एग्जांपल यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक वन मेमोरी बेसिकली,
0: कॉल इट द फॉन्डेस्ट मेमोरी।
1: या
0: डिफिकल्ट, यस वेरी डिफिकल्ट। एंड वी हैव आवर कॉलर। हाय
15: हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग।
1: यस गुड इवनिंग,
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप?
15: बस मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं?
1: बढ़िया।
0: क्या लगता है आपको?
15: ठीक है, सो फार सो गुड।
0: अच्छा, सो फार सो गुड।
15: मिडवीक तो वो ब्लूज तो होते ही है ना, तो
1: अच्छा ऐसा। हाँ, ब्लू कलर भी पहने हमने, बताओ।
15: सही है, गुड गुड गुड ऑन यू। सी मम्मी नहीं है, शी पास्ड अवे 12 इयर्स बैक, बट एक जो उनका लास्ट मेमोरी है मेरे पास कि वो थर्सडे की कथा करती थी, तो वो रोशनी के साथ बैठ के वो कथा कर रही थी। और दूसरा वो मैं सैटरडे निकलने वाली थी, तो थर्सडे नाइट ऐसे ही बैठे बैठे आई थिंक 11:30 आई टोल्ड हर कि छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, तो 2:30 रात को उठ के वो छोले ढूंढ रही है ताकि वो भिगोए और मेरे लिए छोले बनाए।
1: wow.
15: तो मेरा मम्मी के हाथ का, उसके बाद मतलब उसके 15 डेज बाद मम्मी पास गए।
1: किसी भी समय पे कुछ भी बोलो।
15: यू वोंट बिलीव, वो वॉकर पे थी, वो बहुत बीमार थी, वो वॉकर पे चलती थी, बट स्टिल शी मेड छोले भटूरे फॉर मी कि मैं खा के जाऊँ। और मतलब आई एम सो इमोशनल राइट नाउ, वो छोले भटूरे वैसे नहीं खाए मैंने आज।
1: Because it's made with special love,
0: that can't be replaced. सपना थैंक्स सो मच फॉर शेयरिंग। लेकिन मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये सब आप रोशनी के सामने अगर अभी आपने शेयर कर ली, अब कल को रोशनी अगर मांगेगी आपसे छोले भटूरे, आप मना नहीं कर पाओगे।
1: You have to have that recipe.
0: अभी आपको अभी वो आपको वो अभी आपको फुल इमोशनल ढांचे देगी, बोलेगी देखो आपकी मॉम ने तो आपको देखो कितना कुछ किया, आप मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये
15: नहीं, नहीं, मेरे लिए मेरी मम्मी है ना
0: जो
1: हमें सुन रहे हैं हर कोई रिलेट करेगा इस चीज के साथ।
15: Right.
0: And Sapna, you're a great mother. Yeah, you're a great mother. You've got such beautiful daughters, and dono bhi.
15: Thank you.
0: Abhi bhi aapke saath aise aapke participate karte, aapki side lete. Kitni achhi baat hai na?
1: It's more like friends, na?
15: Bilkul, I'm blessed. Yes. I'm blessed. Yes. Uncle,
0: kya bol rahi hai Megha? Megha kuch bol rahi hai.
15: Raat ko chicken wings
0: bante hai. Kya baat hai? Very nice.
1: Nice.
0: ओके चलो एंजॉय गाइस।
1: थैंक यू फॉर कॉलिंग।
0: हाय आपका भी स्वागत है।
16: हेलो
0: जी बोलिए।
16: मुझे थोड़ी सी इमोशनल सी स्टोरी मेरी मम की शेयर करनी है।
0: प्लीज
16: ऑफ कोर्स मम्स यू नो ऑलवेज हम बोलते हैं कि पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं घर के ना। सो आई रिमेम्बर आई वाज ओनली 14 ईयर ओल्ड व्हेन माय डैड पास्ड अवे। तब मेरी मॉम वाज लेफ्ट विद सेवन चिल्ड्रन लुक आफ्टर। तो ऐसे हुआ कि देयर माय टाइम व्हेन शी हैड लेफ्ट विद नथिंग लाइक नो सेविंग्स, कुछ भी नहीं था। तब शी स्टार्टेड सेलिंग हर ज्वेलरी बिकॉज एक एक करके उसने, हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो कैसे हम लोग को लुक आफ्टर करती थी, फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी ना, बिकॉज वी वर लिविंग इन अ विलेज एंड देयर वाज नो जॉब। मम्मी वाज नॉट डूइंग एनी जॉब और एनीथिंग बिकॉज डैड वाज द प्रोवाइडर। सो ही पास्ड अवे, तो वो धीरे धीरे अपनी एक एक करके ज्वेलरी बेचने लगी थी, हम लोग को पता ही नहीं। एंड देन लास्ट जब मेरे भाई का जब स्कूल का फीस पे करना था तो आई रिमेम्बर दैट शी वेंट टू हर ज्वेलरी बॉक्स. तो उनके पास सिर्फ एक ज्वेलरी पीस बचा था विच वॉज द मंगलसूत्र दैट शी हैड एंड शी वॉज इन टीयर्स लाइक. और मैं नहीं जानती थी वो क्यों रो रही है कि मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि शी वॉज गोइंग टू sell it and you know get the money to pay the college ka fees and that's the day I realized tab to nahi samajh mein aaya ki mom ro rahi hai. Maine bola mom don't cry, you know things will work out for us and things like that. She goes, she sells and mera bhai finally college pass kar leta hai, you know, after because that was the final year fees she had to pay. Aur fir he started working and things slowly slowly worked for us, you know, worked out and my brother started working paying us. Mm-hmm. But aaj mujhe realize hua ki maaon ko kyu bolte hai na ki pillar of strength or courage or inspiration hota hai. So she never gave up on us. She supported us as much as she could till the last piece of jewelry she had as a memory of my father. And still today I salute her for that, you know. Every wow. time I look at her and I see ki you know how much she sacrificed. दूसरे जन अपने jewelry को छूते तो भी तो गुस्सा आता है ना कि you know piece of jewelry हमारी है ना like but she never had वो उसके उनके पास वो नहीं था कि ये सब मुझे अपने लिए बचाना है. But she gave up till the last piece of jewelry for us children to educate us and bring us up in the way we are today successfully. We are living, every one of us, seven children have their own good future. Main yahan par hoon, meri ek behan, she's in another country. My brother also is well settled. So, yeah.
1: प्राउड यार लाइक यू नो फाइनली यू आर एक्नोलेजिंग टुडे. आप वो चीजें देख पा रही है कि कहाँ से उन्होंने आपको पाला यहाँ तक लेके आए कि डिफरेंट कंट्रीज में एंड ऑल सेटल्ड.
16: I know.
0: Aksar,
16: I know. And she is the one who taught me never to give up on
1: exactly.
16: your life, no matter how difficult the situation becomes. You have to keep fighting and keep living because this is the life God has given us and the challenges that he gives us to make us stronger.
0: Yep.
16: So she is 84 today and she's still moving and doing stuff and still active and khana khud banati hai, kapde khud ke dhoti hai, washing machine mein dalne nahi deti. खुद से हाथ से
0: धोती
16: है. कुक्स अवर ओन फूड. उनको नहीं चाहिए कि मेरी सिस्टर्स मसाला ग्राइंड करे, वो खुद जाएगी. वो हमारे वहाँ सिलबट्टा होता है ना, साउथ में जो गोल वाला होता है उसका बड़ा सा स्टोन होता है जिसको सर्कल सर्कल घुमाते तो मसाला पिसता है. तो शी इज गॉट द स्ट्रेंथ टू डू दैट एवरी डे इन द इवनिंग.
0: थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस.
1: थैंक यू.
0: इट्स ऑफन दे आर

0: अरमान मलिक, श्रद्धा कपूर की आवाज, और सुन रहे थे आप ये बहुत ही रोमांटिक ब्यूटीफुल गाना। मुझे पता नहीं था श्रद्धा कपूर ने गाया इस गाने को, सब तेरा।
1: या उसने बीच में थोड़े से लिरिक्स गाए हैं,
0: लिरिक्स गाए थोड़े से, बट मेन तो अरमान मलिक ने गाया ना, अमाल मलिक का भाई।
1: Yeah,
0: right. Well, anyway, भाई से याद आया कि गुरु भाई is over here, गुरु कंडोला from Logic Finance. Welcome to the Drive Show. कैसे हो आप?
2: मैं बढ़िया, रुस्बे आप बताओ, और सैनी जी
1: एकदम फर्स्ट क्लास है।
0: गुरु मेरे पास ना एक सवाल था, वीकेंड पे मेरी बात हो रही थी कुछ दोस्तों के साथ, एंड
2: पहले मुझे रुस्बे बताओ, आपके पास सवाल कब नहीं होता, आप हमेशा सवाल के साथ ही आते हो।
0: भाई मैं क्या करूँ, अभी मेरा काम ही ऐसा है ना, मेरे को, मैं जहाँ जाता हूँ मैं लोगों को या तो सवाल पूछता हूँ, या तो उंगली करता हूँ, बस ये दो ही काम है मेरे।
2: आर्मी का यही काम होता है।
0: जी जी, तो अभी सवाल ये है कि डेवलपर्स दोस्त है मेरे, जो डेवलपर्स डेवलपिंग वो सब कर रहे थे, मतलब अपने घर वर बना रहे थे, एंड मार्केट की बात की तो थोड़ा सा यू नो, थोड़ा उनका थोड़ा लो रिस्पॉन्स था कि यार मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, घर थोड़ा बिकना डिफिकल्ट हो रहा है, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द करंट सिनारियो, जो ग्लोबल सिनारियो भी हो रहा है उसके कारण काफ़ी डाउन चल रहा है चीज़ें। उन्होंने मुझे कहा ये आपसे पूछने के लिए कि ऐसे सिनारियो में जहाँ पे काफ़ी लोगों का पैसा लग चुका है, इन्वेस्टमेंट हो गया है, घर बना लिए उन लोग ने, बट अब घर बिकरे नहीं है, ऐसे सिनारियो में गुरु कंडोला क्या कर सकता है उनके लिए?
2: क्या बात है भाई, गुरु गुरु गुरु कंडोला को आप रियल स्टेट भी बनाओगे क्या, रियल स्टेट ब्रोकर भी बनाओगे कि गुरु कंडोला क्या कर सकता
0: गुरु
2: है?
0: अभी गुरु कंडोला बेच रहा है पापा टोटो में प्रॉपर्टी बना के, तो अभी हम बोले चलो इनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले लेते।
2: बिल्कुल बिल्कुल, गुरु कंडोला भी उसी शोज में ही है कि हाँ, अभी वैसे प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में, और बेसिकली प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी जो बनता है, जो डेवलपर्स बनाते हैं वो अपने बहुत दिल से प्रॉपर्टी को बनाते हैं और उस पर शेप देते हैं। तो बेसिकली पर्सनली मैं तो अभी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैंने फर्स्ट डेवलपमेंट किया, बट मैंने तो बहुत दिल से उसको शेप दिया। बट यू राइट कि मार्केट इस तरह की ट्रेंडिंग ले रहा है कि और जैसे ग्लोबल इंपैक्ट आ रहे हैं, उसकी वजह से उसकी जो जो प्रॉफिटेबिलिटी, ये नहीं कि वो बिकेगा नहीं, बिकेगा, बट लेकिन वो अगर वो अंडर लॉस बिक रहा है या फिर आपको प्रॉफिट नहीं देके जा रहा, तो जो आपने मतलब इतना आपने उस पर पैसा लगाया, उतना आपने उस पर रिस्क लगाया, उस रिस्क का अगर आपको पेमेंट ही वापस नहीं आ रहा या फिर लॉस में जा रहे हो, तो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेलिंग इट एज वेल। तो बट लेकिन अगर आप सेल नहीं करोगे, तो जो जिस जिस पार्टी से आपने पैसा उठाया, जिस बैंक से पैसा उठाया है, उसको आप कैसे पे करोगे? तो बेसिकली यू गेट इनटू कैच 22 पोजीशन की यार मैं क्या करूं, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो उस केस में इट इज वेरी लाइक डिफिकल्ट कि आप कैसे उसको सर्वाइव करोगे, बट उसका एक सोल्यूशन गुरु कंडोला लॉजिक फाइनेंस के पास है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी बायर नहीं खरीद रहा, तो आपकी प्रॉपर्टी बैंक ले लेगा, और बैंक भी आपको नियर अबाउट उतना ही पैसा देगा जितना आपको बायर ने देना था।
0: Okay.
2: तो आपका जो अभी जो डेवलपमेंट फंडिंग होती है वो नॉर्मली क्या होती है, 1 ईयर या 1.5 ईयर्स के लिए मिलती है आपको, राइट? बट लेकिन अगर आपकी लेट्स से कि $1 million की प्रॉपर्टी है, उस 1 million की प्रॉपर्टी के ऊपर वी कैन गेट यू फंडिंग फ्रॉम द बैंक अप टू 90%, दैट मीन्स $900,000 आपको उस एक प्रॉपर्टी के ऊपर, और अगर आपके पास 5 है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, अगर 9 है तो 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, वी कैन गेट 90% अगेंस्ट दोज प्रॉपर्टीज वैल्यूएशन, एंड ऑल्सो फॉर 30 years टर्म। तो 30 साल के लिए वो लोन मिलेगा, तो आपके ऊपर कोई बंदूक लेके खड़ा नहीं हुआ कि मुझे पैसा वापस दो, पैसा तो वो वापस दो, तो वो आपको 30 years लोन टर्म के लिए वो लोन मिलेगा, 90% लोन की वैल्यू मिलेगी आपके जो बैंक अकाउंट में आ जाएगी। सो बेसिकली यू कैन पे टू द अदर पार्टी, यू कैन पे टू द अदर पार्टी जिनसे आपने लिया था, और प्लस आपके पास और पैसा आ जाएगा, जिस पैसे से आप उठा के यू कैन नाउ बाय अनदर डेवलपमेंट प्रॉपर्टी एंड स्टार्ट योर डेवलपमेंट विद दैट मनी। बट इन सेइंग दैट कि आपके पास एक प्रेशर जोन जो है वो हट जाएगा, और आपका तब तक आप उस प्रॉपर्टी से रेंटल्स भी ले सकते हो, और जब आपको ऐसे रेंटल आ रहा है, यू कैन वेट, यू कैन फाइंड द राइट मार्केट, बिकॉज डेफिनेटली यू राइट रुस्बे, मार्केट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिचुएशन इट इज टेकिंग अ बिट ऑफ हिट, बट लेकिन अगर आपको वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेलिंग इट। बट अगर आपको सेल करना है, क्योंकि जैसे ही आप सेल करोगे, स्ट्रेट अवे पहले तो आपके पास आईडी आगे खड़ा हो जाएगा, भाई जितने का भी आपने सेलिंग किया उसका पहले 15% तो मेरे अकाउंट में डालो,
0: जीएसटी हो जाएगा।
2: तो अगर 1 million का उठाया, तो लाओ भाई 150 तो पहले आप मेरे अकाउंट में डालो, सीधा मांगेगा, राइट? उसके बाद फिर इनकम टैक्स आएगा कि कितना इनकम, तो चलो बना ही नहीं है तो टैक्स क्या होगा, वो तो प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। बट लेकिन जो 150 जो जीएसटी वो तो वहां खड़ा ही खड़ा है.
0: That's right.
2: So in saying those lines, I think someone has to talk smartly. But again, every situation is different. Every person is different. So मैं ये हरे के लिए एक ये tailor-made solution नहीं है. But again, जब आप मेरे से बात करोगे, जब आप when we discuss about it, when to you know minds, क्योंकि आप developer हो और आपका thought process चल रहा है, आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं भी developer हूँ, but मेरे पास already finance का भी experience है. So then when we can get together, then definitely we will find a solution. जो इट्स गोना बी इन बेनिफिट सिचुएशन आपके लिए होगा और डेफिनेटली वी विल गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट. और आपका जो प्रेशर जोन है वो हट जाएगा. जब आपके ऊपर प्रेशर जोन हट जाता है ना, देन आपका जो थिंकिंग है वो और तेज भागने शुरू कर देता है. सही बोल रहा हूँ उसमें कि नहीं?
0: अरे एब्सोल्युटली. आई थिंक इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू. गेट इन टच विद गुरु. मुझे लगता है ये अभी ऐसा मोटो होना चाहिए आपका. बट गुरु, आई थिंक ग्रेट कॉन्वर्जेशन. काफ़ी सारे सवाल भी है इसको लेकर. बट इफ समवन वांट्स टू हैव अ डिटेल चैट विथ यू अबाउट दिस, एक डिटेल में, क्योंकि अगर कोई ऐसे सिनारियो से जा रहा है और उनको आपसे बात करनी है रूबरू मिलके, तो हाउ टू दे गेट इन टच विथ यू द बेस्ट वे?
2: Sure, absolutely. I'll share my details. But before I share my details, I just give you an example that, as you said, yes, it is too good to be true. But last month itself, I've settled $10 million of deal in this space. We've got client, you know, up to that 90% with 30 years lending. Or us client, uske liye to wo, matlab, ek client nahi tha, but there was like multiple clients. But unke liye wo aisa ho gaya ki basically sone pe suhaga ho gaya. और उसी पैसे को यूज करके दे हैव नाउ यूज्ड टू डेवलप और फंड सम अदर प्रोजेक्ट, जिनकी वजह से अब उनको एक प्रेशर बिल्कुल ही खत्म हो गया. जो आप पहले पांच एक एक साल का प्रेशर लेते थे 9 महीने का कि हमें डेवलप करना है, नाउ दे हैव फ्री माइंड. और मार्केट डेफिनेटली, सी मार्केट तो यहां से ऊपर ही जाएगा. देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. इट इज गोना गो अप फ्रॉम हियर. या तो यहीं पर स्टेबल रहेगा या यहां से ऊपर जाएगा. यहां से नीचे जाने का तो मतलब ही नहीं है. राइट. तो अगर इस सब डिस्कशन के बारे में मेरे से बात करनी है तो इट्स अ सिंपल डिटेल्स. यू फाइंड लॉजिक फाइनेंस ऑन गूगल. आप लॉजिक फाइनेंस गूगल में डालो. यू विल सर्च द नंबर देयर. यू विल गेट आदर व्हेन यू कॉल देयर टू नंबर्स. आदर यू गेट थ्रू मी और थ्रू कमल हु इज माय बिजनेस पार्टनर. अगर आपको फ्री नंबर लेना है विच इज 08 नंबर विच इज 0800 लॉजिक जी. आप जब 0800 लॉजिक जी टाइप करोगे तो यू विल गेट थ्रू टू मी विच इज 0800 564 424. 0800-564-424. That's the best way to get in touch with me. और अगर मेरे बारे में कुछ ज्यादा जानना है और या लॉजिक फाइनेंस के बारे में ज्यादा जानना है, तो you can also search us on Google and check our reviews before you come to us.
0: Absolutely. Thank you so much, Guru, for joining us at the Drive Show. We'll have a chat with you next week again.
2: Thank you, Rusmi. Thank you, Sandy ji.
0: Thank you.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
5: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Accurate traffic.
6: Experience fun at Snow Planet.
7: Mostly cloudy tonight, down to a low of 16 degrees. On the northwestern motorway heading away from the city, we've had a crash just after Lincoln Road. Delays are all the way back to St. Luke's. Looking very heavy for that stretch, at least 40 minutes to Massey from town, and no doubt that drive time will get worse. If you're going to take the northern, it's heavy to Esmond and then clear after that, 35 minutes out to Constellation.
6: Ski, board, slide, tube. Fun for the whole family at Snow Planet. Not a million miles away.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare. जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे. विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: गो बनानास चाइल्ड केयर इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस.
8: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स. और सबसे खास बात, गो बनानास चाइल्ड केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम. तो देर मत कीजिए. कॉल 0800-46-26-26 टुडे.
9: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस. टीज एंड सीज अप्लाई.
10: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves. बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना, अम्मास फूड्स मल्टी ग्रेन डोसा बैटर बनाए। हर मील हेल्दी और डिलिशियस, हाई प्रोटीन, रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर। ये है हर घर का बेस्ट चॉइस, अम्मास फूड्स मल्टी ग्रेन डोसा बैटर, 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध। आज ही करें ट्राई, आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है। स्वाद भी, सेहत भी।
11: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
12: Popeyes is turning two, but you get the presents. Their limited time birthday box is packed with two drumsticks, six nuggets, and regular Cajun fries for just $11.90. Celebrate 2 years of world famous Louisiana fried chicken at Popeyes.
13: Love that chicken from Popeyes.
14: Before you turn up the heating this winter, it's worth checking your home is set up well. By cleaning your heat pump filter, sealing drafts, and reducing dampness, you can keep the heat in and your energy bill down. Search EECA, that's EECA, get winter ready.

0: to me. Power through Miss with Morning Fresh.
1: Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
2: Good evening, I'm Bridget Hastie with the latest at 5. A major boost to youth mental health support in Northland has been unveiled. An acute respite service is set to open later this year in response to a coroner's report into the deaths of 6 young people. Mental Health Minister Matt Doocy says he's glad to see the recommendations implemented.
3: Initially, Health New Zealand said that they wouldn't implement the recommendations from the coroner's report, but I stepped in to say actually we need to do better.
2: There's little surprise from industry after confirmation the Broadcasting Standards Authority will be scrapped. Newsroom co-editor and commentator Mark Jennings says it's overdue.
4: It was for the era of TV stations and radio stations and not for streaming services and multimedia companies like we've got now.
2: WorkSafe is making initial inquiries after a person fell into a fertiliser bin in central Hawke's Bay today. They're in a serious condition. The South Island's west coast is in for a major drenching. Westland could see up to 35 mils of rain an hour through to Thursday evening. Katie Lyons from Met Service puts it into context.
5: People start to feel like rain is heavy, really anywhere above 6 millimetres. The west coast might be only impressed once it reaches 10.
2: To sport, the Super Rugby Pacific weekend kicks off in Christchurch on Friday night, the Crusaders hosting the Blues. The Horses may be back in the pre-match experience. There was a test run today. Into Rugby League with Machinery House, good and bad news for the Warriors in their NRL bye week. Chance Nickel-Clock star Mitch Barnett and Ale Leator will be available against the Broncos on May 17th, but no return date for Roger Tuivasa-Sheck, who has a shoulder injury.
1: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
6: World's best, hamari good brands bhi hai.
1: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
7: वेदर का हाल काफी कमाल. मेनली नॉर्थ ऑफ हार्बर ब्रिज थोड़े बहुत शावर्स हो सकते हैं. नॉर्थ ईस्टर्लीज का साथ रहेगा. 5:32 को होगा आज सनसेट. वन लेयर ऑफ क्लोथिंग इज रिकमेंडेड एंड राइट नाउ फील्स लाइक 18 डिग्रीज. ओवरनाइट टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू बी दैट बैड. 15 डिग्रीज आज ओवरनाइट टेम्परेचर.
1: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्पी.
8: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
9: ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस मोनाको एंड पुकेकोई विद स्लीपी हेड क्वीन मैट्रेस फ्रेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 449 एंड जिमी टेलर एंड टीम फ्रॉम वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप. The home of GWM Havel and Omura Jeku.
1: Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
10: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
7: 5:03 on the 6th of May. Good evening. Drive Show में आपका स्वागत है. Hi Sandy, good evening.
11: Hi Ruzbe, a very very good evening to you. 6 तारीख हो चुकी है, कल 7th है, परसों 8th है, यानी कि जावेद अली का शो है 8th को, this Friday.
7: Right, yes, इसी Friday. My God, time's flying यार. अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग बस प्रमोट ही कर रहे थे शो को, एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट देयर.
11: ऑलमोस्ट देयर, या आई नो. विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर गाइस, अभी तक इफ यू आर थिंकिंग कि टिकट खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, गो फॉर खरीदनी चाहिए. एंड इसके बहुत सारे रीजंस हम दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ हम आपको रीजन जो देंगे ना, वो शायद जावेद अली की आवाज में ही देंगे.
7: ओह राइट, ओके, यस. सो देयर इज समथिंग दैट वी आर प्लानिंग, होपफुली वो जो हमने प्लान किया है वो वैसे ही हो जैसे हमने प्लान किया.
11: बट टिकट्स के लिए staralliance entertainment.com.
7: यस, staralliance entertainment.com. एंड या इफ यू लव म्यूजिक, गो बाय योर टिकट्स राइट नाउ, क्योंकि यू विल रिग्रेट इट अगर आप ये शो मिस करोगे तो.
11: एंड यू नो व्हाट, जैसे रुज़बे तुमने एक दिन बोला था कि ये शो जो है बहुत सारी जनरेशंस के लिए है, बिकॉज ही इज गोना डू द ट्रिब्यूट टू रफी, मोहम्मद रफी. सो रफी और मैं, सो वो रफ़ी को ट्रिब्यूट देके खुद के गाने भी गाने वाले हैं. सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक पैक्ड शो रहने वाला है ये.
7: एक ऐसा शो रहेगा जहाँ पे मुझे लग रहा है 3 generations कैन रिलेट एंड कैन कनेक्ट टुगेदर
11: 100%. तो फैमिलीज के साथ एक्चुअली में इस शो को आप इंजॉय कर सकते हैं, ऐसा शो है ये.
7: या सो या डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. काफ़ी कम टाइम ऐसे मिलता है जहाँ पे यू नो यू कैन हैव all your generations together at one place.
11: Yeah.
7: और एक ही show को आप enjoy कर सकते हो, तो yeah, give it a shot.
11: एंड ऑल्सो ना मैं उस कम्युनिटी को भी बोलना चाहती हूँ रुजबे जो सिंगर्स बनना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है कि वो आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो कंपोजर है, जो गाने लिखते हैं, जैसे कि हम लोकल आर्टिस्ट को अभी प्ले कर रहे हैं, उनको भी ये मैं बोलना चाहूँगी कि जब आप ऐसे शोज अटेंड करते हो, जब सिंगर्स आते हैं यहाँ पे, तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है, आप कुछ वहाँ से लेके ही निकलते हो, यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट.
7: या एंड देन यू रियलाइज ना कि मतलब क्या क्या आपको जिंदगी में like you know what you want to achieve.
11: Yeah.
7: You see someone on the stage and you're like, oh, I want to be there one day. Hmm. So uske liye, you know, you'll have to just be there, witness that energy.
11: Yeah.
7: And yeah, definitely it inspires you a lot. But हाँ, और भी बातें करेंगे वाले हम आज. Local artists हमारे कौन है इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे. और
11: it is New Zealand Music Month, तो local artists का गाना इस गाने के बाद आपके लिए.

0: गुड इवनिंग. आज पावर ड्राइव एट 5 में, मतलब ये महीने एक्चुअली हम लोकल आर्टिस्ट को शाउट आउट दे रहे हैं, उनके गाने प्ले कर रहे हैं,
1: उनके गाने प्ले कर रहे हैं. और एक जो आज हमारे लोकल आर्टिस्ट है, ये हमारे बहुत ही डेडिकेटेड लिसनर भी हैं.
0: जी, बहुत ही हमारे लगातार ये लिसनर, पार्टिसिपेटर, सब कुछ है. और थैंक यू सो मच यार एफाज फॉर सेंडिंग इन योर सेंडिंग अस योर सॉन्ग. ये एक्चुअली रेडियोथॉन पे भी आए थे,
1: इन्होंने तब भी गाया था
0: पिछले साल.
1: या
0: और वहाँ पे भी आके उन्होंने परफॉर्म किया था अलॉन्ग विद बेनाम आर्टिस्ट, जो एक दूसरा ग्रुप भी है.
1: वैसे पिछले 3 साल से रुजवे ये परफॉर्म करते रहे हैं, डिफरेंट स्टेज पे भी ये परफॉर्म करते रहे हैं. सो इस बार इन्होंने एक बेसिक से सॉफ्टवेयर में, लाइक प्रोफेशनल स्टूडियो से रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्डिंग की एंड हमें भेजा यहाँ पे. बिकॉज अभी तक इन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स नहीं बनाई हैं, बट बहुत सारी जगह पर लाइव परफॉर्म किया है.
0: And we understand it is very tough for our local talent to, you know, go through recording, yes, studio hire karna. It's a very expensive affair. So
1: it
0: we
1: is.
0: Do understand. And I think it means a lot ke Efaz aapne itni mehnat ki hai aur ye gaana ek record kiya hai hamare liye taki hum isko on air play kar sake. Aur sabko suna sake aapka talent. So for today, our artist of the day
1: is Efaz, and suniye unka ye cover song.

0: इसके आगे क्या है,
1: इसके आगे की लाइन क्या है, ये आपको बताना है.
0: स्टार्ट ऑफ एनी स्टैंजा, क्योंकि ये एक हुक लाइन बोलते हैं इसको.
1: लाइन है, इसके बाद कोई स्टैंजा आता है तो वो भी हो सकता है.
0: यू हैव द ऑप्शन टू चूज व्हिच स्टैंजा यू वांट टू स्टार्ट विद. बट ये गाना काफी लोगों के यू नो जहन में बस चुका है. काफी लोगों को बहुत पसंद आता है, तो आपको फिर से सुनाता हूँ एंड यू टेल अस. इसके आगे क्या आता है, ये आपको लिख कर भेजना है.
1: RFK कीवर्ड के साथ नेक्स्ट लाइन आपको लिख के भेजनी है 5599 पर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
2: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
3: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आओ,
4: मैं लाऊं अपना A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. वैसे मदर्स डे कंपटीशन, मदर्स डे इज राउंड द कॉर्नर. अगले वीकेंड ही मदर्स डे है ना?
1: Yes.
0: या ये वीकेंड
1: पे, अगले नहीं,
0: ये वीकेंड पे मदर्स डे. ओह माय गॉड,
1: संडे इज मदर्स डे.
0: संडे इज मदर्स डे, इज ऑलरेडी हियर. एंड सोशल मीडिया के थ्रू भी आप यहाँ पे जीत सकते हैं कुछ, $200 का वाउचर जीत सकते हैं. गो टू आवर फेसबुक, फाइंड आउट हाउ यू कैन गेट इन टू द ड्रॉ. एंड आई थिंक बहुत कम टाइम बाकी अभी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए.
1: या बट आप यहाँ पे पिछले आवर में तो आपने यहाँ पे कॉल किया, लेकिन आपको डिफरेंट चांसेस मिल रहे हैं. सोशल मीडिया पे जाइए, पार्टिसिपेट कीजिएगा इस कंपटीशन में. एंड ऑल्सो आपको बता दें कि इसी फ्राइडे को जावेद अली लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. रिमेंबर गाइस, इसके लिए आप यहाँ पे टिकट जो है ये खरीद सकते हैं staralliance.com. ये वैसे टिकट की वेबसाइट है जहाँ पर कुछ लास्ट फ्यू टिकट्स है. जितनी मैंने लास्ट कन्वर्सेशन सुनी है रुजबे प्रमोटर से, उन्होंने बताया कि कुछ $59 की टिकट बाकी है कुछ. एंड आप सुनेगा तो सुनेगा इंटरव्यू भी वैसे इनकी. तो बहुत ही जल्दी जावेद अली की इंटरव्यू भी आपके लिए हम लेके आने वाले हैं, जहाँ पे वो आपको बताएंगे अपने करियर के बारे में, इस शो में क्यों आना चाहिए इसके बारे में भी.
0: एंड वी आर ट्राइंग कि हम एक स्पेशल सेगमेंट आपके लिए लेकर आए. जैसे कि आपको पता है ट्रेंड मेकर्स में यू नो वी डू लाइक अ सेगमेंट वेयर हम एक आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट देते हैं. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कल का जो हमारा ट्रेंड मेकर्स हो वो हम आपके लिए एक स्पेशल जावेद अली स्पेशल लेकर आए. बट नॉट जस्ट विद हिज सॉन्ग्स,
1: या
0: बट विद समथिंग एल्स एज वेल.
1: समथिंग एल्स, वी विल ट्राई दैट.
0: वी विल ट्राई टू गेट हिम ऑन द शो.
1: वेल लेट्स सी. या एनीवे गाइस, सो तब तक अपने टिकट्स आप खरीद लीजिएगा, बिकॉज़ ये एक ऐसा शो है जो आप मिस आउट नहीं करना चाहेंगे.

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Events ढेर सारे हो रहे हैं हमारे ऑकलैंड में सुपर सिटी में और ऐसा मुझे लग रहा है कि we are back in that zone जहाँ पे you know things are buzzing around, things are happening.
1: It's good to say this because जब ऐसी चीजें buzzing होती हैं ना इसका मतलब इस कंट्री की इकोनॉमी चल रही है.
0: कितना डिफिकल्ट हो जाता है ना बोलना कि इसका मतलब कि यहाँ पे तरक्की हो रही है. डिफिकल्ट है.
1: एटलीस्ट अभी इकोनॉमी चल रही है यही बोलना बहुत है.
0: जी जी, थिंग्स आर मूविंग एंड मुनावर फारूकी इज गोइंग टू बी हियर वेरी सून. उसका एक स्टैंड अप स्पेशल है कॉल्ड धंधो, ये लेकर आ रहे हैं यहाँ पे.
1: यू नो, अगर आपने रिसेंटली कपिल शर्मा शो देखा है और उसमें आपने समय रैना को देखा है एंड द फील ऑफ इट, अगर आपने समय रैना का शो मिस किया था तो एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, लेकिन मुनावर फारूकी भी रोस्ट के कारण बहुत जाने जाते हैं.
0: आई वुड वांट टू से समथिंग जो ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा शायद, बट मुनावर फारूकी एंड समय रैना हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स.
1: वेरी क्लोज फ्रेंड. इनफैक्ट समय रैना के साथ जब ये सब कुछ हुआ, ही कॉन्टेक्टेड मुनावर फारूकी टू अंडरस्टैंड कि इसको डील कैसे किया जा सके,
0: क्योंकि मुनावर फारूकी वाज हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ बैकलैश एंड लॉट ऑफ ट्रबल इन द पास्ट. और जब एक्चुअली मैं जब मुनावर फारूकी बाहर भी निकले थे, वो जेल में गए थे थोड़े टाइम के लिए, जब बाहर निकले थे समय रैना के फीड पे थे एक बार वो लाइव स्ट्रीमिंग में, एंड समय वॉज जोकिंग विथ हिम अबाउट जेल, लाइक यू नो कि यू नो जोक्स वॉज पर्टेनिंग टू जेल. सो What I'm trying to say is,
1: and in fact, मुनावर फारूकी ने बाद में एक गाना लगाया था, मित्रा ते केस चलदा.
0: So
1: it's kind of banter between them. So I'll say कि मुनावर फारूकी का शो आप डेफिनेटली देखना चाहेंगे गाइस, बिकॉज उसके बाद जो वीडियोज रील्स बाहर निकलेंगी कि उसने क्या बोला, क्या क्या हुआ, then you're gonna have a FOMO.
0: और अभी ना काफी लोग समय का लाइव वो शो देख रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे देख रहे हैं, which is the most viewed stand-up special. और वो देखकर बहुत खुश हो रहे हैं कि अरे यार क्या मस्त कॉमेडी का, बट एक्चुअली मैं हमने लाइव देखा है वो शो,
1: अलग ही फील होती
0: और
1: है.
0: लाइव का फील वाज कंप्लीटली डिफरेंट. आपने देखा यूट्यूब वाला देखा?
1: मैंने देख लिया है.
0: आपको फर्क पड़ा पता चला?
1: देयर फ्यू थिंग्स मुझे लगता है जो मिसिंग है यूट्यूब पे,
0: काफी चीज मिसिंग है यूट्यूब पे, एंड द फील आल्सो वाज कंप्लीटली डिफरेंट.
1: इट इज डिफरेंट, मतलब मैंने वो देख के ऐसा रिवाइंड हुआ, आई विल से कि फ्यू थिंग्स का रिवाइंड जरूर हुआ, बट आई एंजॉयड लाइव मोर.
0: लाइव वाज अमेजिंग यार, आउटस्टैंडिंग. सो यार डेफिनेटली अगर आपको पसंद है मुनावर फारूकी, आपको पसंद है स्टैंड अप कॉमेडी, यू शुड नॉट मिस द opportunity to watch him live.
1: 23rd May को शो होने वाला है, टिकट मास्टर पे जाके आपको टिकट्स मिल जाएंगी. एंड अगर आप टिकट जीतना चाहते हैं फेसबुक पेज पे जाइए, फीचर फोल्डर में पिंड पोस्ट है मुनावर फारूकी की वीडियो की, उसके नीचे अपने फ्रेंड्स को टैग कर दीजिए.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: हमेशा साथ देने वाले दोस्त. Brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe with Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449 and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jacob.
4: Bro, look at you. Blue light screen को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा. और ये कॉफी lukewarm, a taste बिल्कुल हार्टब्रेक जैसा. प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए.
3: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply. Hum. Accurate traffic.
5: Switch to AMI car insurance.
6: Mostly cloudy, down to 16 degrees tonight. On the northwestern motorway out of town, it's more packed than a campsite at New Year's at the moment. We've had a crash after Lincoln Road. Delays are all the way back to the city. 50 minutes to get to Massey from town, so very heavy there. On the northern, at 55 up to Silverdale, traffic through to Tristram. And at the southern, it's looking slow in patches out to Papakura.
5: AMI roadside rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
7: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वेस्ट सिटी GWM Havel. Havel का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
8: Jen didn't think she needed a DVS system.
9: Oh, I've got insulation in that.
8: But Jen had forgotten about the mold on her walls and curtains.
9: Ah, yeah.
8: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
10: Gift instant joy this Mother's Day with Instant Kiwi. Whether you've got flowers, chocolates, or a good book, Instant Kiwi is the perfect something extra to spoil her with. Get a $10 gift pack from your local Lotto NZ store. R18.
11: If you're out there working hard, it's time to put down the tools and pick up a pie. Just head into your nearest Zed and show your Zed Business fuel card to get $1 off any pie. Now that's worth going to work for. Ends 25 May while stocks last.
12: Right now at Guthrie Bowron. Enjoy free curtain making on thousands of quality fabrics. Take 15% off selected blinds, shutters and motorisation. Plus receive a free in-home measuring quote. Cozy up your home in time for the cooler months. Guthrie Bowron. Inspiration starts here.
13: Beating pump prices is easy with Auckland Transport. Simply use your hop card, credit or debit card, smartphone or smartwatch to tag on and off buses, trains and most ferries. Search AT Journey Planner and save when you mix your go with AT.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Hamesha saath dene wale dost. Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepy Head Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku. Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.

0: सिंपली गए मुलाकात हो गई आपसे। हम थ्रोबैक।
1: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits, and now is the time that people have been waiting for.
2: So fly away frenzy का कोड अब आपके लिए हम लेके आए। अगर आपको लगा था कि हम भूल गए, नहीं नहीं, टाइम अभी हुआ है।
1: टाइम अभी हुआ है और अभी से आपके पास एक घंटा है to put in your fly away frenzy code.
2: So आज का कोड है Y2I.
1: Y2I.
2: WAITUI.
1: WAITUI.
2: This is a spelling. WAITUI. Y2E.
1: और आज हमने हमारा रिसर्च किया है, हमको पता है Y2E का मतलब
2: क्या है। लेकिन अभी हम बताएंगे नहीं।
1: हाँ।
2: आपको मैसेज करके यहाँ पे बताना है कि Y2E का मतलब क्या है।
1: 5599 पे FF लिखकर अगर आप मैसेज करते हो तो आपको साथ में लिंक भी मिल जाएगा कि आप वो कोड कहाँ पे डाल सकते हो।
2: सो
1: सेंड अस अ मैसेज 5599 पे Y2E का मतलब क्या है, और यही है आज का फ्लाई अवे फ्रेंजी कोड।
2: सो कोड डालिएगा, हम का स्पेशल कोड, और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा। रिटर्न एयर टिकट टू फिजी आपके नाम हो सकती है।
1: या यू कुड बी द वन। तो फटाफट जाइए रोवा ऐप पे एंड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग।

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: You get money, get cash.
2: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover. Accurate traffic.
3: Northern Lights Autumn Carnival Meet.
4: Mostly cloudy tonight, a low of 16 degrees. The northwestern motorway has been an absolute shocker this afternoon. We had a crash after Lincoln Road. That looks to have been cleared now, but it's still slow to Tauratu, 40 minutes to Massey from town. Similar time to Constellation on the northern, with traffic queuing out to Northcote Road. The southern has slow patches to Papakura. It's about 45 minutes to Manukau.
3: Get trackside at Alexandra Park this Friday night. Book at alexandrapark.co.nz.
5: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us, with great deals on selected sleeping aid beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
6: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
7: At Bunnings Trade, no matter where you are, we're here to help. Our builders team with dedicated account managers has got you covered at every building stage, from the front fence to the back gate. Call 0800 134 872 to find out more. Bunnings Trade, helping business is our trade.
8: It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
0: Time check. You by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Young people in Northland experiencing mental health crises will soon have somewhere more local to turn to. An acute respite service will offer short-term care and support outside of hospital settings. Mental Health Minister Matt Doocy.
10: We've heard loud and clear from the people of Northland, who quite often, with young ones needing to travel to Auckland, we want to bring timely mental health support closer to home.
9: Cordons remain in place near Kaikoi as police continue to investigate the death of a dirt bike rider. They were one of two people believed to have been knocked off their bikes overnight. An industry great agrees self-regulation is the best path forward for broadcasting, with news the BSA is to be scrapped. Newsroom co-editor and commentator Mark Jennings says it has to be done right.
11: The Media Council can only ask you to apologise. It can't impose a monetary penalty on you. And I think there'll be a part of the community who will not be happy with that.
9: Republican primary election results suggest Donald Trump still has significant influence in Indiana. Five of the seven senators targeted by the US president for retribution have been defeated, and one remains too close to call. Trump considered the incumbents disloyal for voting against gerrymandering the state's borders ahead of the November midterms. To sport, Super Rugby Pacific, the table-topping Hurricanes showing the depth in the squad. Seven changes against Moana Pacifica in Auckland. Halfback Cam Roygaard is out for up to a month with a calf injury. And to football with Hisense, win a FIFA World Cup experience at hisense.co.nz. The all-white squad for the FIFA World Cup will be announced on Thursday next week. Coach Darren Baisley will confirm his 26-player group at Auckland's Eden Park.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
12: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
13: Raki Raki Fiji ke swargiya Bechu Prasad ke putra, Cameron Chand ke pita, Go Place the Gardens ke Bob Krishna Chand ki mrityu Auckland mein ho gai. Antim Sanskar, Thursday ko dupair 1 baje Anne's Funeral Home में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-932-666 पर कॉल कर सकते हैं। राखी राखी फिजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के पुत्र कैमरॉन चंद के पिता गो प्लेस द गार्डन के बॉब कृष्ण चंद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार थर्सडे को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021 932 932-666 पर कॉल कर सकते हैं। ताउआ के स्वर्गीय मुन सामी के पुत्र, ऑकलैंड की शारदा मणि के पति रोनिल कृष्ण पुजारी और मेलबर्न की शालिनी कृष्ण के पिता मनोरेवा के श्री कृष्णा हेरी की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार फ्राइडे को दोपहर 1 बजे मनुकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0292-6578 पर कॉल कर सकते हैं। ताउआ के स्वर्गीय मुन सामी के पुत्र, ऑकलैंड के शारदा मणि के पति रोनिल कृष्ण पुजारी और मेलबर्न की शालिनी कृष्ण के पिता मनोरेवा के श्री कृष्णा हेरी की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार फ्राइडे को दोपहर 1 बजे मनुकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0292-6578 पर कॉल कर सकते हैं।
12: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
14: शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। The Drive Show with Sandy and Rusby.
15: हमेशा साथ देने वाले दोस्त।
16: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
17: Let's go! 3, 2, 1.
0: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusby.
18: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
8: 6 बज चुके हैं, ट्रेंड मेकर्स में आपका स्वागत है। यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बे। सैंडी, ट्रेंड मेकर्स में क्या है आज स्पेशल?
19: ट्रेंड मेकर्स में वैसे हम यहाँ पे आज खास लेके आए हैं, आज एक लिरिसिस्ट के बारे में लेके आए हैं।
8: क्या लेकर आए? लिरिसिस्ट के बारे में?
19: लिरिसिस्ट के गाने लेके आए हैं।
8: लिरिसिस्ट के गाने। सो बेसिकली एक शाउट आउट दे रहे हैं हम एक लिरिसिस्ट को जिनका नाम है स्वानंद किरकिरे।
19: या
8: इनका नाम आपने काफी बार सुना होगा क्योंकि काफी मशहूर गाने इन्होंने गाए हैं। और आज के लिस्ट में आप देखोगे कि जो गाने इन्होंने एक्चुअली गाए नहीं, लिखे है, करेक्ट मैसेज,
19: लिखे और कई गाए भी है।
8: वो गाए भी है एक्चुअली। यस, ही इज अ सिंगर एज वेल।
19: या ही इज अ सिंगर एज वेल, ही इज अ राइटर एज वेल, इज अ परफॉर्मर एज वेल।
8: वाला गाना तू किसी रेल की, वो स्वानंद किरकिरे ने गाया ना?
19: स्वानंद, हाँ, वही है।
8: क्या, कौन?
19: स्वानंद किरकिरे।
8: नहीं, वापस से बोलो।
19: स्वानंद किरकिरे।
8: नहीं, आज सैंडी स्वानंद किरकिरे को स्टार्टिंग में सवानंद बोल रही थी।
19: हाँ, मैंने ए डाल दिया था एक्स्ट्रा।
8: हाँ, होता है ऐसा।
19: एनीवे, सो यस, इनके लिखे हुए गाने, बाय द वे ये एक्टर भी रह चुके हैं रुस्बे।
8: एक्टर भी रह चुके हैं ये?
19: या, ये एक्टर भी रह चुके हैं। इनको 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं बेस्ट लिरिक्स के लिए, फॉर द मूवी लगेरो मुन्ना भाई एंड 3 इडियट्स।
8: ओ, 3 इडियट्स तो डेफिनेटली यार, व्हाट अमेजिंग सॉन्ग्स।
19: या, सो वी गोना स्टार्ट विद दैट एज वेल।
8: ऑलराइट, यस, तो पहला गाना आपके लिए स्वानंद किरकिरे ने लिखा हुआ और गाया भी है इस गाने को उन्होंने थोड़ा सा।
19: या,
8: सो अलोंग विद सोनू निगम एंड शान, दिस इज स्वानंद किरकिरे फॉर यू विद ऑल इज।

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Trend Makers में आज स्वानंद किरकिरे को हम शाउट आउट दे रहे हैं. स्वानंद किरकिरे एक लिरिसिस्ट है मशहूर, और इसी के साथ साथ ये एक गायक भी है. इन्होंने गाने भी गाए हैं, और जो अगला गाना है वो एक्चुअली उन्हीं का गाया हुआ गाना है, जो बहुत ही कमाल सॉन्ग है.
1: कौन सा वाला?
0: तू किसी रेल.
1: अरे आई लव दिस सॉन्ग.
0: और ये लिखा गाना किसी और ने है ना, वरुण ग्रोवर ने गाया.
1: वरुण ग्रोवर ने लिखा है इस गाने को. इस गाने के बारे में हमने बात की थी जब वरुण ग्रोवर यहाँ पर आए थे, और राहुल राम जब यहाँ पे आए थे.
0: राम भी आए थे यहाँ पे.
1: सो दे टॉक्ड अबाउट दिस सॉन्ग एक्चुअली में, कि जिस समय पर ये गाना बनाया था. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना, जिस वजह से इन्होंने इस गाने को गाया भी है, जिस वजह से लिखा भी है. इट्स अ वेरी डीप सॉन्ग, बेसिकली
0: मीनिंगफुल सॉन्ग. ये स्वानंद किरकिरे ने लिखा है, उसने सिर्फ गाया है.
1: हाँ, ये वरुण ग्रोवर ने लिखा है.
0: वरुण ग्रोवर ने लिखा है,
1: या
0: बट आज हम शाउट आउट स्वानंद किरकिरे को दे रहे हैं ना.
1: ये सिर्फ गाया है, मतलब हम उनके गाए हुए गाने भी प्ले कर रहे हैं.
0: दैट्स राइट, दैट्स राइट. नहीं, आप गाने लिखे हुए की तारीफ कर रहे हो, तो मैं बोला नहीं आज उसकी तारीफ मत करना, आज गाने की तारीफ करो, किसे गाया कितना बढ़िया है.
1: एनीवे,
0: बट एक बहुत ही ग्राउंडेड पोएटिक इनको माना जाता है. ग्राउंडेड एंड पोएटिक, और अक्सर इनके जो गाने हैं उनमें एक फिलोसॉफिकल टच होता है,
1: जो कि एक्चुअली में इस गाने में झलकता है.
0: जी, और आपने कहा था ना कि लगे रहो मुन्ना भाई के लिए इन्होंने जीता था नेशनल अवार्ड. तो गाने का नाम था बंदे में था दम, वंदे मातरम.
1: या इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग. सो फिलहाल ये गाना सुनिएगा इनकी आवाज में, और इनके लिखे हुए गाने भी थोड़ी देर में हम प्ले कर रहे हैं.

0: Trend Makers.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.
2: Hey, hey.

0: देखने जैक बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स। फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: Bunnings gift card is a great gift for Mother's Day because it unlocks the whole warehouse for Mum. She's in for a treat. She'd be like, oh my gosh, yes, now I can buy all those extra plants that I was looking for the front garden. Perfect.
5: Bunnings Warehouse.
6: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleepy head beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2,499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
8: हाँ, अच्छा
7: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह,
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
11: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
12: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
11: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्पी,
13: हमेशा साथ देने वाले दोस्त।
14: ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस मनुको एंड पुकेकोई विद स्लीपी हेड क्वीन मैट्रेस फ्रेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 449 एंड जिमी टेलर एंड टीम फ्रॉम वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप, द होम ऑफ GWM हैवल एंड ओमुडा जेकू।
15: आप सुन रहे ट्रेंड मेकर्स, एक ऐसा शो जहां पे हम हर दिन हर शाम 6 से 7 के बीच किसी एक को ट्रिब्यूट देते हैं, किसी थीम के बारे में बात करते हैं। और आज तो हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं लिरिसिस्ट स्वानंद किरकिरे को।
16: यस, इनके बारे में हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। इन्होंने गाने गाए हैं, इन्होंने गाने लिखे हैं, तो इनके लिखे हुए और गाए हुए दोनों गाने एक्चुअली में हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं। तुम्हें पता है, ये वेब सीरीज क्रिएटर भी रह चुके हैं रुजबे। He co-wrote, created and starred in 2026 web series जिसका नाम है बैंड वाले। ये तुमने देखी है अभी तक?
15: बैंड वाले?
16: बैंड वाले?
15: No, I haven't actually.
16: मैंने भी नहीं देखी है यार।
15: पड़ेगी यार इसके, that's quite cool. Actually मैं ये इन्होंने गाने आप, हाँ बैंड वाले, इन्होंने actually 2026 में ही ये हुआ है।
16: Yeah, he's actually featured himself also in this series. He's also an actor.
15: Lead actor जैसे आए हैं।
16: Lead actor जैसे। So it's actually his very ambitious project.
15: Okay.
16: Band
15: so
16: वाले।
15: Definitely something to check out. Actually मैं अगर acting की बात करें, so पंचायत season 3 में वो he has appeared as a politician.
16: Okay.
15: सांसद जी। और कला movie 2022 की जो movie थी बहुत popular,
16: yeah, yeah.
15: उसमें उन्होंने मंसूर खान साहब का role play किया था। So he's actually not just a lyricist or a singer, but he also likes to act.
16: Yeah.
15: मालिक movie में भी इन्होंने acting किया था, MLA बलहार सिंह, राजकुमार राव के साथ ये movie थी। उसमें उन्होंने acting, तो he's kind of always tried to play politician का role.
16: बिट उसमें उन्होंने, या मेरे को लगता है कि वो जैसे दिखते हैं ना, तो शायद वो सूट भी करता है कई बार उनके ऊपर।
15: राइट, सो अभी जो गाना आपको हम सुनाने वाले हैं, दिस हैज बीन आई थिंक अ टॉप सॉन्ग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। हम जब अमित त्रिवेदी को शाउट आउट दे रहे थे तभी भी ये गाना हमने प्ले किया था।
16: और ये लिखा है इन्होंने
15: स्वानंद किरकिरे ने, तो एंजॉय कीजिए मांझा, ओनली ऑन हम

0: श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे ये बहुत ही बढ़िया गाना, स्वानंद किरकिरे ने लिखा हुआ गाना। आज ट्रेंड मेकर्स में स्वानंद किरकिरे को हम शाउट आउट दे रहे हैं।
1: यस, जिन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, गाए हैं, बहुत सारी मूवीज में एक्ट भी किया है।
0: मैं आज एक गलती कर रहा हूँ।
1: क्या?
0: मैं आज जिसको हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं उनका नाम मैं ले रहा हूँ बार बार, मुझे लगता है ये अभी
1: स्वानंद किरकिरे। तुम्हें पता है वैसे ग्रेजुएटेड फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन 1996। उनके बैचमेट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे।
0: अच्छा।
1: या सो फिल्म ब्रेक से पहले ही आल्सो वर्कड एज असिस्टेंट टू डायरेक्टर सुधीर मिश्रा, तो उनके साथ वो एज असिस्टेंट काम किया करते थे पहले।
0: यू नो दिस ऑल मेक्स सेंस बिकॉज़ इनको नेशनल अवार्ड एक्टिंग के लिए भी मिला है। इन 2018 इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर द मराठी फिल्म चुंबक।
1: ओह वाओ।
0: जहां पे उन्होंने एक मेंटली चैलेंज्ड मैन विद इनक्रेडिबल नुआंस ये उन्होंने प्ले किया था।
1: सो सी स्वानंद किरकिरे के बारे में ऐसे फैक्ट्स आज आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। तो अभी उनका लिखा हुआ गाना है नेक्स्ट रुजबे।
0: जी, उनका ही लिखा हुआ गाना है और गाया भी हुआ उनका है।
1: अरे वाह,
0: उन्होंने गाया भी है इस गाने को और इस गाने को हमने रेडियो पे काफी बार सुना है। दिस इज आई थिंक वो

0: जानवी
1: कपूर की मूवी
0: नहीं, जानवी कपूर के मॉम,
1: अरे इंग्लिश इंग्लिश का गाना है,
0: इंग्लिश यस यस यस, श्रीदेवी, श्रीदेवी के, माय गॉड क्या दिन आ गया, ओ गॉड, आई कैन आई प्लीज,
1: श्रीदेवी की डॉटर होता है,
0: ओह नो,
1: जानवी कपूर की मॉम,
0: ओह माय गॉड दैट्स सो बैड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी श्रीदेवी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: Traffic.
2: Winter immunizations are available now.
3: Mostly cloudy, down to 16 degrees tonight. On the northwestern motorway, delays are slowly easing, but that is the key word there, slowly. Still looking heavy out to Te Atatū, 35 minutes to Massey, just over half an hour to Constellation on the northern, and it's busy out to Esmond Road. The southern has some heavy patches around Green Lane and Papakura, 40 minutes to get to Manukau, 50 to Drury.
2: Book your winter immunizations, including flu. Search Book My Vaccine or ask your healthcare provider.
4: There are days when you nail parenting, but this isn't one of them. There's not even a single cherry tomato for their lunchbox. And is that a tumbleweed? Luckily, a DoorDash hero emerges. That's me.
5: Dash! Savior of the lunchbox!
4: Now the kids have a tasty lunch that you can totally share on the gram. With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
5: Dash!
6: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखें प्लास्टिक 125 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें. सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है. सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड.
7: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल, कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटो C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक, सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू. विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटो ग्रीन लेन और बॉटनी. टीज एंड सीज अप्लाई.
8: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
9: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
8: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
10: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर
11: Gold. The Drive Show with Sandy and Rusby.
12: Hamesha saath dene wale dost.
13: Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
14: Let's go! 3, 2, 1.
11: Trend Makers.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आज का दिन बहुत ही कमाल रहा यहाँ पे. Drive show has was packed up full on. 104.2 FM पे आप हमें सुन रहे थे या Rova app के जरिए. Thank you so much for listening in. Sandy, it's time for us to say bye-bye.
1: Yes, यहीं पे टाटा bye-bye कहने का वक्त आ चुका है. Remember guys, जावेद अली बहुत ही जल्दी आपकी सुपर सिटी में परफॉर्म करने वाले हैं 8th मई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. टिकट्स कुछ बाकी है, खरीद लीजिए staralliance.entertainment.com पर. इसी नोट पे हम यहाँ पे टाटा बाय बाय कहते हैं. स्वानंद किरकरे का एक और गाना यहाँ पे हम सुनेंगे जाने से पहले. दो गाने एक्चुअली हम सुनने वाले हैं
0: जाने. लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ इज ऑन करंटली एंड वी वांट यू टू बैक योर बैकयार्ड बीट्स. उसका मतलब ये है कि जो हमारे लोकल आर्टिस्ट है, लोकल टैलेंट है, उनका सपोर्ट कीजिए, उनको उनका साथ दीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आप हमें यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि आपको किसके गाने पसंद आ रहे हैं, किसके गाने नहीं पसंद आ रहे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार टू सपोर्ट आर लोकल टैलेंट. तो ज़रूर यहाँ पे प्लीज़ मैसेज कीजिएगा एंड सुनते रहिए हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स. दिस इज अस साइनिंग ऑफ फॉर नाउ.
1: बाय
0: बाय.

0: Happy Hour on Hum.
1: हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर हाजिर है

0: Happy Hour on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दूसरी तो
4: आए आए बताओगे यार।
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: हम सब चाहते हैं कि रिसाइकल सही तरीके से हो, तो याद रखिए प्लास्टिक बैग, ड्रिंक कार्टन्स और पुराने लैपटॉप अपने रिसाइकल बिन में मत डालिए। रिसाइकल सही करें, ये आपके हाथ में है। सर्च ऑकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमाकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ऑकलैंड।
6: Kick off the winter season with these winning deals from Rebel. Like 20% off all women's Puma, New Balance and Under Armour clothing and running shoes. And 20% off football, rugby and netball equipment. These deals and so much more are now at Rebel Sport. See online for T's and C's.

0: Happy Hour on Hum. Breakfast show with Vijay and Pooja.
1: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
0: है। 6 to 10 a.m.
4: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy 2 full price pieces and receive a third one free, just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May in store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
5: At Bunnings Trade, we've got your next build covered from foundation to finish. With our estimating and takeoff service, our team provides costings and calculated quantities, then partner with local suppliers to keep you covered throughout your build. Call us on 0800 134 872. Bunnings Trade.
0: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
6: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. The media minister says the journalism sector can be set free with the disestablishment of the Broadcasting Standards Authority and a shift to self-regulation. Paul Goldsmith confirming today the authority will be scrapped after assessing whether it was still fit for purpose. A lack of secure housing is being linked to New Zealand's high reoffending rates. A Salvation Army report has found issues like unemployment and addiction become harder to manage without a secure home. And the South Island's west coast's being hit by back-to-back weather systems. Met Service forecasting heavy rain from Fiordland to Tasman, delivering up to 35 millimetres an hour. Spokesperson Katie Lyons says the second system will also bring wind. In sport, the Super Rugby Pacific teams, the table-topping Hurricanes, showing the depth in the squad. 7 changes against Moana Pacifica in Auckland. Halfback Cam Roygaard out for up to a month with a calf injury. No Ruben Love either. And football with Hisense, proud partner of the FIFA World Cup. In Auckland this evening, the Oceania Pro League, Auckland FC playing South Melbourne right on half-time. South Melbourne leads 2-1.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
7: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
8: गुड इवनिंग एवरीवन, नाइट कैफ़े लेकर मैं एक बार फिर आ गया हूँ। पूरे हफ्ते भर अभी आपके साथ नाइट कैफ़े एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसा ही आपका साथ हमें मिलता रहे। और कल भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन मंडे एंड ट्यूसडे को आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच। वंस अगेन वेलकम टू द शो नाइट कैफ़े, लेकर मैं क्रिश आ गया हूँ। और आज वेंसडे है, मिड वीक में हम आ चुके हैं, और जैसे ही मिड वीक में आते हैं तो मिड वीक मसाला आपके लिए हम सेगमेंट लेकर आते हैं, जिसमें शुरू हो जाता है आपके लिए मसालेदार बॉलीवुड गॉसिप विद ग्रेवी, और साथ में काफ़ी बॉलीवुड खबरें, ग्लिट्स एंड ग्लैमर दुनिया में क्या हो रहा है, ये जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। सो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपके लिए नाइट कैफे मिडवीक मसाला।
0: थोड़ा हटके, थोड़ा स्पाइसी, ये है मिडवीक मसाला।
8: वेलकम एवरीवन नाइट कैफे मिडवीक मसाला में, जहां पर बॉलीवुड न्यूज़ आपके लिए हम लेकर आएंगे, और इंटरेस्टिंग बॉलीवुड खबरों का लाइनअप हमारे पास है जो एक एक कर मैं आपको बताऊंगा। शाहरुख खान ने अनाउंस किया है रिलीज डेट ऑफ सैफ अली खान थ्रिलर कर्तव्य, और इसके अलावा अभिजीत भट्टाचार्य ने शाहरुख खान को ब्लेम किया है, शाहरुख खान के ईगो को ब्लेम किया है फॉर देयर फॉलिंग आउट, इस पर भी जानकारी आपके लिए रहेगा। और अनिल कपूर ने एडमिट किया है कि ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम हिज किड्स लाइव्स, सुनीता वॉज ए सिंगल पेरेंट टेक्निकली, क्योंकि ये बहुत बाहर रहते थे, इस पर भी जानकारी। ऑल दिस कमिंग अप ऑन दिस आवर, स्टे ट्यून्ड, मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, एंड वेलकम टू द शो।

मैं बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और मिडवीक मसाला जारी है आपके लिए 8 to 9 ये सेगमेंट हम लेकर आते हैं ड्यूरिंग एवरी नाइट कैफे. तो शाहरुख खान ईगो और माई सेल्फ रिस्पेक्ट इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा क्लैश हुआ. सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने ये कहा है आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ फॉलिंग आउट विद शाहरुख खान. अभिजीत का कहना है कि शाहरुख खान का ईगो के वजह से दोनों के बीच में काफ़ी दरार आ गया, क्लैश हो गया, क्योंकि सुपरस्टार्स ईगो और इनका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल उठ गया था. अब अभिजीत भट्टाचार्य आपको याद होगा इन्होंने काफ़ी ऐसे शाहरुख खान पर गाने गाया है जो शाहरुख खान पर पिक्चराइज किया गया है. इसका वॉइस बहुत ही क्लोजली एसोशिएट किया जा रहा था विद शाहरुख खान ऑन स्क्रीन पर्सना ड्यूरिंग द 90s एंड अर्ली 2000s और इनका जो फॉलिंग आउट हुआ है इट इज़ बिकॉज ऑफ शाहरुख खान ईगो, ये कहना है अभिजीत भट्टाचार्य का. और इन्होंने ये भी कहा है कि शाहरुख खान के बिहेवियर के बाद कोई भी अपॉलोजी नहीं आया फ्रॉम दिस सुपरस्टार और इससे वो डीपली हर्ट हुए थे, इसलिए दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गया और ये उनके लिए गाना बंद कर दिया. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ 12 तक रहेगा, लेकिन फिलहाल मिडवीक मसाला 9 o'clock तक चलता रहेगा आपके लिए.

0: वेडनेसडे का तड़का मिडवीक मसाला ऑन हब
1: नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी है 8-9 PM तक ये चलता रहेगा, लेकिन नाइट कैफे आपके लिए मिडनाइट तक जारी रहेगा और मैं क्रिश आपका साथ दूंगा। शाहरुख खान ने अनाउंस किया है सैफ अली खान नेटफ्लिक्स थ्रिलर के बारे में। मई 1 को अनाउंसमेंट हुआ है। शाहरुख खान ने अनवेल किया है पोस्ट ऑफ कर्तव्य, जिसमें सैफ अली खान काम करेंगे और ये फिल्म 15 मई को रिलीज़ होगा ऑन नेटफ्लिक्स, जिसमें सैफ एक ब्रूज्ड इंटेंस पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाएंगे और ये स्टोरी एक स्ट्रगल दिखाएगा बिटवीन ड्यूटी एंड पर्सनल लाइफ। और शाहरुख खान ने इस फिल्म मतलब सैफ अली खान का इस फिल्म की पोस्टर की लॉन्च करते हुए इस फिल्म को बहुत सारी बधाइयां और ऑल द बेस्ट कहा है। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं और भी बातें बॉलीवुड से संबंधित मसालेदार गॉसिप नाइट कैफे मिडवीक मसाला में लेकर आते रहेंगे आपके लिए।

0: Night Cafe on Hum.
1: May month is NZ Music Month. ये सिर्फ music नहीं, ये है emotion, passion और थोड़ा सा desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, जहाँ हर गली, हर corner से निकलता है एक नया superstar. आज का local artist, कल का global sensation. तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे? Tune in करो और अपने backyard beats को दो full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: Moisture और ventilation का problem लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
5: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
6: Manukau Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys la rahe hain Bhakti Kirtan Santhya Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center 32 Glasgow F Papatoetoe mein jisme kalakar rahenge Fiji ke Nitin Nilesh Prakash aur New Zealand ke Davin Nath do pahunche hue kalakaron ko ek saath dekhne ka anokha mauka tickets sirf $20 hain taiyar ho jaiye Bhakti Kirtan Santhya ke liye Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center Papatoetoe mein
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz
10: The beat of Bollywood.
11: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
10: Hum. Night Cafe on Hum. Wednesday का तड़का. Midweek मसाला on Hum.
12: You're listening to your number one humping Bollywood's biggest hits. Night Cafe Midweek Masala जारी है. Interesting खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे about Bollywood, Bollywood की glitz and glamour दुनिया से हमारे B-Town के जितने भी सितारे क्या कर रहे हैं इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा. वैसे आपको बता दूं कि राजा शिवाजी big release hype already शुरू हो चुका है. रितेश देशमुख brings historical epic और ये फिल्म का प्रीमियर हुआ था with strong celebrity presence और काफ़ी legend मराठा किंग पर ये आधारित है मूवी राजा शिवाजी के ऊपर और ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑडियंसेस है इस फिल्म को लेकर और एक हिस्ट्री और सिनेमा की बात करें तो ये एक ब्लॉकबास्टर गैम्बल हो सकता है और रितेश देशमुख एक अलग अवतार में इस फिल्म में नजर आएंगे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी बातें कुछ ही देर में.

0: फोन किधर है?
1: अभी बताया तो फ्लाइट चप्पल कंफर्म है।
2: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? From broken flower vases to लौकी की सब्जी experiments, guess कीजिए मम्मी का मूड और जीतिए ढेर सारा कैश। हम पेश करेंगे quirky scenarios on air और आपको बताना होगा मम्मी चिल करेगी या किल करेगी। Guess and enter the lucky draw to win big cash prizes. तो तैयार हो जाइए for the ultimate game show, Mom's Mood Swings on Hum. Brought to you by Indelible Homes, PFSL, Amma's Food and Malabar Gold and Diamonds.
3: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number यार।
4: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
6: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
7: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz. You gotta go.
8: Pacific Electrical Services presents Javed Ali live in Auckland performing his blockbuster hits and a special tribute to the legendary Mohammed Rafi Saab in Rafi Aur Main, promoted by Star Alliance Entertainment at Victory Convention Center, 8 May, 7 p.m. onwards. Proudly supported by Key Contractors. For tickets, visit staralliancentertainment.com or call Edwin on 0211-382184.
9: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Good evening to you with the latest at 9. I'm Jeff Bryan. The Broadcasting Standards Authority is entering its final months. The government is scrapping the regulator due to the changing media landscape. Newsroom co-editor and commentator Mark Jennings says it's overdue. A Place to Live is being described as the missing piece in the approach to reducing reoffending. A Salvation Army report shows those who leave prison without stable accommodation are more likely to return. The South Island's west coast is in for a major drenching. A heavy rain warning stretches from Fiordland to Tasman, with at least 200 millimetres expected inland. In sport, week 13 of Super Rugby Pacific kicks off in Christchurch. Big night on Friday night. The Crusaders and the Blues, always a highlight. And the Crusaders may have the horses back as part of the pre-match experience. What happened at the stadium today looked a lot like a dress rehearsal. And football updates brought to you by Hisense in Auckland this evening. The Oceania Pro League, Auckland FC playing South Melbourne, close to full time, and South Melbourne leading 2-1.
9: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum, playing Bollywood's biggest hits.
7: Night Cafe on Hum.
9: Aapka Moment. Krishka Magic. Only on Hum.
11: वेलकम बैक एवरीवन. नाइट कैफे में मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूँ. नाइट कैफे मिडवीक मसाला के बाद अभी न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपने सुना, और अभी 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक पेश करने का टाइम आ चुका है, जो आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स मैं लेकर आया हूँ, और इट इज़ गोइंग टू बी फन लिसनिंग टू देम बैक टू बैक. बातें हम नहीं करेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और आपको सुनाएंगे आपके फेवरेट सॉन्ग्स एक के बाद एक फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स. 30 मिनट्स के बाद इंटरेस्टिंग खबरें हमारे पास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: वेलकम बैक एवरीवन। चर्डल कंपटीशन के बारे में तो आपने सुना होगा। कीवी वर्ड विजिट अगर आप है, एक कीवी वर्ड फ्रेज या सेइंग आपको दिया जाएगा विच यू नीड टू क्रैक, और ड्रो में शामिल होकर $100 a day जीतने का मौका रहेगा। बहुत ही क्विक और शार्प रहते हैं तो बेटर योर चांसेस ऑफ स्कोर। एवरी डे आप खेलते हैं, ड्रो में शामिल हो जाएंगे। एक गेम का मतलब है एक एंट्री। आंसर जल्दी देते हैं, फास्ट देते हैं, तो फिर बोनस एंट्री आपको मिल सकता है $7,000 टू बी वन। और जितना भी दिन आप खेलते हैं, द मोर डेज यू प्ले द बेटर योर ऑड्स आर। और रोवर पर ये कॉम्पिटिशन उपलब्ध है, आप आज ही रोवर डाउनलोड करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। क्रिश के साथ है और भी प्यारे गाने आपको सुनाते हैं।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स ब्रो लुक एट यू ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा पर ये कॉफी ल्यूक वार्म और टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा प्लीज सर तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए तू बीच के लिए बनाए तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए
2: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
3: Get Mum a gift, she'll love the bunnies.
4: We've got plants, the hanging baskets, the seedlings. We've got a really good range of coloured pots as well. This year, give a Mother's Day gift that keeps on growing.
5: 14-centimetre Calathea prayer plant, only $26.87. Fiskars Ruby Bypass Pruners, $36.95. Northcote Pottery 20-centimetre Paloma Egg Pot, just $19.98.
4: Pop into Bunnings and find something she'll love. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.

0: Murphy on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. प्यारे songs तो लेकर आते हैं, लेकिन interesting खबरें, खासतौर पर जानकारी लेकर आते हैं about competitions जिसके जरिए आप इनाम तो बहुत बेहतरीन जीत पाएंगे. जैसे हम फ्लाई अवे फ्रेंजी है. अगर आपको ये कोल्ड विंटर जो हर सुबह उठते ही आपको पता चलता है कि कितना ठंडी है आज, ठंड है आज, और आपको डबल टू लेयर्स ऑफ क्लोथिंग या थ्री लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कभी कभी एक्सट्रीम ठंड के दिन पहनना पड़ता है, ये आपको नहीं पहनना पड़ेगा. और इंस्टेड इमेजिन कीजिए अगर आप वाइट सैंडी बीचेस पर रहेंगे, क्रिस्टल क्लियर वाटर्स एंजॉय करेंगे, यू विल टेक अ डिप, यू विल टेक अ स्विम, पीवा आइलैंड वाइब्स एंजॉय करेंगे, ये फिजी से बेहतर जगह नहीं हो सकती है. तो रोवा ऐप डाउनलोड कीजिए सुबह 8 बजे, दिन में 11 बजे, 1 बजे और 5 बजे. हम स्पेशल कोड वर्ड्स आपको दिए जाएंगे. जैसे कोड वर्ड्स आप सुनते हैं 60 मिनट्स के अंदर आपको रोवो पर एंटर करना होगा और रिटर्न एयर टिकट टू फिजी के ड्रो में शामिल आप अपने नाम को कर लेंगे और ड्रो के दिन शायद आप लकी विजेता भी हो सकते हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगे, हमारे वेबसाइट पर आपको मिलेगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: Welcome back, everyone. You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits, 30 minutes of non-stop music ke baare mein. To aap jante hain kya kuch hota hai, and I'm sure aapne enjoy kiya hoga jo segment abhi aapne suna. Ultimate Mother's Day voucher create kar sakte hain, personalized voucher for your mom, jisme har ek cheez hona chahiye jo wo deserve karti hai. Ek Mother's Day gift list banaye, phir aap voucher create kare jisme jisko aap draw kar payenge khud ya design karna chahte hain online. Facebook page par hamara aap post kare. वहाँ पर एक पिंड पोस्ट आपको मिलेगा. हम 104.2 FM पर, और अपने फैमिली मेम्बर्स को टैग करें, $200 जीतने का मौका होगा अगर आप ड्रो में शामिल हो जाते हैं. और ड्राइव शो ऑन फ्राइडे 8 मई को ड्रो होगा, एंड आई एम श्योर योर मम विल फील एक्स्ट्रा स्पेशल जो आप अपने क्रिएटिविटी से इस कॉम्पिटिशन में भाग लेंगे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, रात 12 तक हमारा साथ रहेगा. कीप लिसनिंग टू योर नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
1: Tiger Bar and Restaurant in Soho Hotel, Mount Roskill. Aaye aur enjoy kare inka sophisticated dining experience. Jahan par aapko tarah tarah ke flavors milenge. Creative Asian fusion dishes se lekar zesty seafood tak. Saath mein refreshing cocktails. Sab kuch ek bahut hi elegant aur stylish andaaz mein. Ye open hai for breakfast, lunch and dinner. Close to Auckland CBD and minutes away from the airport. Tiger Restaurant Bar in Soho Hotel, Stodart Road, Mount Roskill. Visit Tiger at soho.co.nz.
2: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? Switch to Leap Moto C10 or B10 Ultra Hybrid or Electric. सिर्फ 44,990 plus on road से शुरू. Visit Armstrong's Leap Moto Green Lane or Botany. T's and C's apply.
3: Beating pump prices is easy with Auckland Transport. Simply use your hop card, credit or debit card, smartphone or smartwatch to tag on and off buses, trains and most ferries. Search AT Journey Planner and save when you mix your go with AT.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
4: Night Cafe. आपका moment. Krish का magic. Only on Hum.
6: नाइट कैफे जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. आज 6th मई है, आज वेंसडे नाइट है और मिड वीक आ चुके हैं. थैंक गॉड बहुत ही जल्दी वीकेंड भी आ जाएगा. एंड आई एम श्योर आपका वीकेंड का प्लानिंग शायद कुछ आप डिसाइड कर रहे हैं और होपफुली बहुत ही अच्छी तरह जाए. एनजेड म्यूजिक मंथ जारी है. बैक योर बैक यार्ड बीट्स इज आवर थीम, जिसमें लोकल टैलेंट को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. आप अपने ओरिजिनल ट्रैक्स भेजे अगर आप सिंगर हैं. बेस्ट सॉन्ग के साथ अपने बायो भी भेजे buzz@humfm.com पर और शॉर्टलिस्टेड आर्टिस्ट के सॉन्ग्स प्ले किए जाएंगे. चांस टू कलेब विद हम ऑन इंस्टा और लिसनर्स के गानों को वोट, लिसनर्स इनफैक्ट फेवरेट ट्रैक्स के लिए वोट भी कर पाएंगे बोथ ऑन एयर एंड ऑनलाइन. टॉप 3 आर्टिस्ट के गाने फीचर होंगे रोवा ऐप पर और एक्साइटिंग हैम्पर प्राइज जीतने का मौका भी रहेगा. विनर टोटल एंगेजमेंट से डिसाइड होंगे. तो आज ही अपना फेवरेट ट्रैक अपने बायो के साथ buzz@humfm.com पर भेजे. क्रिश के साथ है और भी प्यारे गाने आपके लिए नाइट कैफे में.
7: हेलो
8: हेलो
7: जी.
8: सत श्रीकाल, की हाल चाल है?

0: You're listening to number one hum playing Bollywood's biggest hits. Final reminder आपको दिया जा रहा है कि आप tickets जल्दी से ले ले. Show ये Friday को होने जा रहा है, यानी कल Thursday और Friday night को आप live जावेद अली को देख पाएंगे. रफी और मैं timeless classics of मोहम्मद रफी में Pacific Electrical Services द्वारा ये show लाया जा रहा है. Presenting partner in fact है और Star Alliance Entertainment ये show ला रहे हैं आपके लिए. 8th मई को होगा this Friday, Victory Convention Center. Tickets from $59. Food stalls और easy on-site parking भी रहेगा. तो आप जल्दी से टिकट्स ले ले बिफोर यू मिस आउट ऑन इट. starlionsentertainment.com पर आप जाए और टिकट्स ले ले. टिकट्स काफ़ी बिक चुके हैं तो आपको निराशा अगर नहीं रखना है, मिस आउट नहीं होना है, तो फिर टिकट्स आप जल्दी से ले सकते हैं टू वॉच जावेद अलीज लाइव इन कॉन्सर्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन न्यूजीलैंड, जहां पर वो अपने गाने और रफ़ी जी के गाने पेश करेंगे आपके लिए. क्रिश के साथ है एक बहुत ही प्यारा जावेद अली का गाना आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो आप बहुत एंजॉय करेंगे.
1: हेलो ऑकलैंड, मैं हूँ आपका अपना जावेद अली. दिस इज माय फर्स्ट टाइम टू ऑकलैंड और मैं आ रहा हूँ 8 मई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ हम सब याद करेंगे रफी साहब के गोल्डन सॉन्ग्स.

0: Murphy on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: Welcome back, everyone. आप सुन रहे हैं नाइट कैफे में क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. You're listening to हम playing Bollywood's biggest hits और सारे हिट और हॉट गाने आपके लिए इस घंटे पर भी रहेंगे. शुरू करेंगे 30 minutes of non-stop music after news and sports update. I'm sure आप entertainment चाहते हैं और that's the whole purpose की 30 minutes तक आपको बगैर disturbance के प्यारे गाने सुनाए. आपके लिए मुनावर फारूकी पर जानकारी इसी घंटे पर रहेगा. डबल पास कैसे जीत पाएंगे इस पर. राहत फतेह अली खान शो पर भी डबल पास जीतने का मौका है. और बैक योर बैकयार्ड बीट्स पर बातें करेंगे जो हमारा एनजेड म्यूजिक मंथ का थीम है और लोकल आर्टिस्ट को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. फिलहाल 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक आप एंजॉय करें.

چی نیا ہوا آغاز، برسوں بعد بھی دیکھو میری ٹریکٹر سے اونچی۔

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. एक एक करके आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स मैं पेश करूंगा आपके लिए जो आप एंजॉय करेंगे. और आपको मुनावर फारूकी पर जानकारी मैं दे दूं कि ये ओकलैंड आ रहे हैं. इंडियाज बोल्डेस्ट कॉमिक धंधो इनका जो इवेंट का शो का नाम है और ब्रूस मेसन सेंटर में पर ये शो होगा 23 मई. रो रियल और अनफिल्टर्ड कॉमेडी अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जाना होगा. मोस्ट टॉक्ड अबाउट कॉमेडियंस में से एक है और फियरलेस स्टोरी टेलिंग इनका टेक्निक है, इनका आर्ट है और शार्प नो फिल्टर ह्यूमर ये लेकर आते हैं. तो ticketmaster.co.nz से आप टिकट्स ले पाएंगे. हमारे फेसबुक पेज आप विजिट करें 104.2 FM, जहां पर आप अपने फ्रेंड को टैग करके ड्रो में शामिल होकर डबल पास जीत पाएंगे. ड्रो 11 मई को होगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. नाइट कैफे जारी है.

0: एक सपना है, सपना कुछ अपना करने का, सपना एक अपने बिजनेस का।
1: हम है क्रू केयर, सिर्फ $15,000 ऑनवर्ड्स की इन्वेस्टमेंट में हम बनाएंगे आपके सपने को एक हकीकत।
2: Crew Care offers commercial cleaning franchise, which caters to after and before hours cleaning services for offices and schools. Crew Care also has tie-ups with many cleaning sites like offices, schools, gyms, medical centres and hospitality sites. Finance options available for approved purchases. Call Crew Care on 0800 800 209.
3: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
4: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
6: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
7: Introducing Pizza Hut's new tikka and paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only, T's and C's apply.
8: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: Night Cafe on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
5: नाइट कैफे आपके लिए जारी है, ये फाइनल आवर है और कुछ ही देर तक और मैं आपका साथ दूंगा। राहत फतेह अली खान को लाइव इन ओकलैंड आप 25 जुलाई को देख पाएंगे द ट्रस्ट अरीना में। तो टिकट्स अवेलेबल है dryticketsdotcom पर, आप टिकट्स जाकर जल्दी ले ले। डबल पास अगर हमारे साथ होकर आप जीतना चाहते हैं तो फिर एक गाना आपके लिए कुछ सेकेंड्स के लिए प्ले किया जाएगा और आपको लिरिक्स कम्प्लीट करना होगा टेक्स्ट के जरिए 5599 पर। करेक्ट एंट्रीज को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा टू विन डबल पासेज। पावरफुल वोकल साउथ स्टेरिंग कवाली राहत फतेह अली खान लेकर आएंगे 25 जुलाई को। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं।

You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. May is NZ Music Month. तो जितने भी listeners से निवेदन है कि आप पूरा जो महीने भर हम local artist के गाने बजाएंगे, आप उनको vote करें. अगर आप गाने पसंद कर रहे हैं, repeat पर सुनना चाहते हैं या skip करना चाहते हैं, ये voting आपको करना होगा, क्योंकि आपके vote के जरिए ही decide होंगे top 3 artists जिनके गाने Rova app पर feature किए जाएंगे. 5599 पर keyword MM के साथ आप voting कर सकते हैं. और आप हमारे सोशल्स पर जाएं, इनफैक्ट वहां पर आपको आर्टिस्ट के वीडियो पर आप कमेंट, लाइक और शेयर कर पाएंगे टू शो योर सपोर्ट. विनर टोटल एंगेजमेंट से ही डिसाइड होगा. अब तो हमारा जाने का समय हुआ है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच. कल आ जाएंगे आपके लिए रिदम एंड रोमांस लेकर नाइट कैफे में, वो जो हमारा फाइनल डे रहेगा ऑफ द 4 डेज जो हमने आपके लिए नाइट कैफे पेश किया. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा था और थैंक यू सो मच फॉर योर कंपनी. अब मिलते हैं कल. गुड नाइट एवरीवन.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Just me.

அரே அரே அரே அரே அரே அரே Just me.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: Night flight on hum.
5: Hey, volume kam kar. Papa jab jayega.
6: Poo bhai poo, poo gadi poo. You like me and I like you too. Poo bhai poo, poo gadi poo. You like me and I like you too. Poo bhai poo, poo gadi poo. You like

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।

0: सैंडी एंड्रूस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड्रूस पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।

0: राम भट्ट महेश भट्ट
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
3: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले जब दिल मिले तब गुल खिले जब गुल खिले तब दिल मिले

0: the drive show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Manukau Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys la rahe hain Bhakti Kirtan Santhya Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center 32 Glasgow F Papatoetoe mein, jisme kalakar rahenge Fiji ke Nitin Nilesh Prakash aur New Zealand ke Davin Nath. Do pahunche hue kalakaron ko ek saath dekhne ka anokha mauka. Tickets sirf $20 hain. Taiyar ho jaiye Bhakti Kirtan Santhya ke liye Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center Papatoetoe mein.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
6: हाँ। अच्छा
5: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।
0: Night Flight.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
3: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ भी नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 AM।
5: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.in से।
6: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
0: You gotta go to the boat show. The beat of Bollywood.
7: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
0: Night Flight.

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424।
4: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale on now. Here's your chance to get beautiful floors and unbeatable value on their range of best-selling carpet and hard flooring. And to make it even easier, ask about their 16 months no payments and no interest offer with QCard. So find the flooring that suits your style and your budget at your local Flooring Extra showroom with trusted advice every step of the way. TC's, fees and credit criteria apply.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।

0: Bro, look at you. Blue light screen को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे promotion दे देगा. और ये coffee? Lukewarm. A taste बिल्कुल heartbreak जैसा. Please sir, तू cubicle के लिए नहीं बनाए. तू beach के लिए बनाए. तू life को enjoy करने के लिए बनाए.
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: ब्यूटीफुल हाउस प्लांट से लेकर हर वो चीज जो माँ को घर और गार्डन के लिए पसंद है सब मिलेगा माइटन मेगा वेस्टगेट और हैंडरसन में एवरीथिंग टू मेक मम स्माइल एक्सेप्ट द होममेड कार्ड बट यू कुड लेट मम डिसाइड विद अ माइटन गिफ्ट कार्ड एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हैंडरसन
3: मेनिकाउ चैरिटेबल क्लब इन एसोसिएशन विद भक्ति सत्संग बॉयज ला रहे हैं भक्ति कीर्तन संध्या फ्राइडे 8 मई को रात 7 बजे से वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापाटोईटोई में जिसमें कलाकार रहेंगे फिजी के नितिन नीलेश प्रकाश और न्यूजीलैंड के दवेन नाथ दो पहुंचे हुए कलाकारों को एक साथ देखने का अनोखा मौका टिकट्स सिर्फ $20 है तैयार हो जाइए भक्ति कीर्तन संध्या के लिए फ्राइडे 8 मई को रात 7 बजे से वैदिक सेंटर पापाटोईटोई में
4: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleepyhead beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या मतलब, क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m. प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
0: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
0: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. A cruise ship infected with Hunter virus is on its way to the Canary Islands after 3 sick passengers were evacuated. The vessel has been given permission to dock at Tenerife by Spanish authorities, but local leaders are staunchly opposed. A New Zealander is among the passengers stuck on board. Fears about media descending into uncontrolled chaos with the scrapping of the BSA are being rejected. The Broadcasting Standards Authority is being disestablished. Politic editor Richard Harman says media can't afford to be complacent.
7: If you want to keep your business going, you want to keep your readers or your listeners or your viewers coming back, then you actually need to deliver something that they can trust.
6: A survey has revealed a silent struggle in the social service sector. Nearly all providers are feeling the impact of fuel prices, but only 11% have asked for help. Belinda Himiona from Te Pai Ora says that they're trying to absorb costs.
8: I think we've been a bit reluctant to really put our hardship on the table, and we didn't realise how few providers would have gone to MB.
6: President Trump has issued a fresh ultimatum, telling Iran to accept a deal or face a new wave of bombing. Tehran says it's still reviewing a new US proposal to end the war, following reports a deal was close. And sport, batting all-rounder Dean Foxcroft is the new face in the 15-strong Black Caps squad for 3 tests in England next month.
9: It's a dream come true to be selected a test squad, and yeah, it's obviously pretty cool, and can't wait.
6: The cricket tour starts with a one-off test against Ireland at the end of this month. And in rugby with Shift 4, Stephen Perofeta starts at first five for the Blues against the Crusaders in Super Rugby tomorrow night.
0: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
10: Hum par shok soochnaye aap tak laate hai, Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
11: Suchit kiya jata hai ki Rakiraki Fiji ke Swargiya Bechu Prasad ke putra, यानी कैमरन चंद के पिता गो प्लेस द गार्डन्स के बोप कृष्ण चंद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-932-666 पर कॉल कर सकते हैं। रकीराकी फिजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के पुत्र यानी कैमरन चंद के पिता गो प्लेस द गार्डन्स के बोप कृष्ण चंद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-932-666 पर संपर्क कर सकते हैं। यलांड्रू तावुआ के स्वर्गीय मुनसामी के पुत्र यानी ओकलैंड की शारदा मणि के पति और रोनील कृष्णा पुजारी और मेलबर्न की शालिनी कृष्णा के पिता मनुरेवा के श्री कृष्णा और हेरी की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 1 बजे मेनकाओ मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनी रोड वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-292-6578 पर संपर्क कर सकते हैं। यलांड्रो तावुआ के स्वर्गीय मुनसामी के पुत्र शारदा मणि के पति यानी रोनील कृष्णा पुजारी और मेलबर्न की शालिनी कृष्णा के पिता मनुरेवा के श्री कृष्णा उर्फ हेरी की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 1 बजे मेनुकाओ मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनुई रोड वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-292-6578 पर संपर्क कर सकते हैं।
10: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
12: शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
11: 16 degrees temperature Auckland mein abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 21, overnight kam se kam 16 degrees rahega. Aaj badal chhaye rahenge, reh rahe kar kuch halki barish hogi. Sunrise subah 7:04 par aur aaj ka sunset 5:31 pm par hoga.
0: Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast catch up.
11: 5:30 ho rahe hain, 6:00. Namaskar, a very good morning. Swagat hai aapka. Welcome to the breakfast show with Vijay and Pooja. Thursday, 7 May. Aaj ki ye subah. Aap sabhi ko bahut bahut baar shubh ho aur aapko bhi a very good morning.
2: Good morning, namaste. Aap sabko bhi aaj ki subah ki bahut saari shubhkamnaen. Aur jahan kahin bhi hain, saath aap hamara de rahe hain, aaj ke safar ki shuruaat hamare saath kar rahe hain. Uske liye aap sabhi ka tahe dil se bahut bahut shukriya.
11: उम्मीद है कि कल का दिन आपका खुशियों भरा रहा होगा और एक नई सुबह को नई उमंगों के साथ आप वेलकम करने के लिए तैयार होंगे। और इस दिन में आज क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं या क्या होने वाला है, क्या शायद आपका दिन शेप अप करे कैसा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे अगले 4 घंटों तक।
2: बिल्कुल, और हमारा जो ब्रेकफास्ट शो का सफर ही ऐसा होता है कि एक और जहाँ पर ज़रूरी बातें जो है ये भी हम करते रहते हैं, वी डोंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट देम, तो वहीं दूसरी ओर इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि आपको एंटरटेन कैसे किया जाए, आपको खुश कैसे रखा जाए। सो विल बी डूइंग ऑल ऑफ दैट एज वेल, जिसके लिए आपको बस हमारे साथ ही बने रहना है। और एक और एक ज़रूरी बात ये भी आपको बता दें कि हमारे साथ विजेता बनने की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम आपको देते रहेंगे। देयर आर सो मेनी हीप्स ऑफ प्राइजेस जो आप हमारे साथ जीत सकते हैं। सम ऑफ द प्राइजेस जो कल जिनका ड्रॉ होगा, मतलब मदर्स डे स्पेशली, तो कल इनका ड्रॉ होगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे किसी भी मदर्स डे कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लिया है, सो टुडे इज द फाइनल डे दैट यू कैन डू सो।
11: तो इन अपॉर्चुनिटीज का भरपूर फायदा उठाएं। और इस घंटे तमाम चीजें होंगी, स्टार्टिंग थिंग्स ऑफ विद सनी साइड अब थोड़ी ही देर में।

0: Sunnyside Up.
1: 13 मिनट हुए हैं 6 बजकर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, और आज सनीसाइड अप में एक नए खेल के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं।
2: ओके।
1: इस खेल का नाम है स्पगोमी।
2: स्पगोमी?
1: या।
2: और कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ ये?
1: ओरिजिनेट कहाँ हुआ ये मुझे पता नहीं, लेकिन अभी दुनिया भर के अलग अलग शहरों में ये काफी पॉपुलर हो रहा है। और ये जो स्पोर्ट है, इसमें शहर में अलग अलग जो टीमें होती हैं, अलग अलग स्पोर्टिंग टीम्स होती हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, ये सभी पार्ट ले रहे हैं।
2: ओके।
1: इस स्पोर्ट में क्या होता है कि द टीम्स पिक अप रबिश।
2: ओह, क्लीन अप बेसिकली।
1: यस। क्या होता है कि एक टाउन के प्रॉब्लम को एक स्पोर्ट्स बनाकर पेश किया गया, तो एक तो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, और साथ ही में शहर की सफाई भी हो जाती है। तो क्या हुआ, एक शहर की कहानी जहां पर सामने आई है कि एक लोकल लाइफ सेविंग क्लब जो है, उसने 60 मिनट्स में 28 केजीज ऑफ रबिश जो है ये इकट्ठा किया था।
2: वाओ।
1: दे वर द विनर्स एंड टोटल इस कॉम्पिटिशन में जो रबिश बटोरा गया उस दिन वॉज 281 केजीज।
2: वाओ, इतना रबिश।
1: इतना रबिश था वहां पर। एंड जस्ट इमेजिन, अगर वैसे आप बोलते हैं कि देयर इज अ क्लीन अप कैंपेन, शायद लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बट सिंस इसको इस तरह से मार्केट किया गया
2: लाइक अ कंपटीशन,
1: हाँ, स्पगोमी के तौर पर, तो अलग अलग स्पोर्ट्स के जो टीमें हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स है, ये अपनी अपनी टीमें बनाकर आ गई।
2: दैट इज अमेजिंग यार। इमेजिन डूइंग समथिंग गुड, एक तो आप वो भी कर रहे हैं, एंड वही दूसरी ओर आप अपनी टीम के साथ एक किस्म का टीम बॉन्डिंग भी हो जाता है ये। और तीसरी चीज़ ये भी है कि यू आर डूइंग यू नो इट इन अ कॉम्पिटिटिव वे, तो क्या होता है कि आपका जो स्पिरिट है ऑफ डूइंग इट इवन विद अ लॉट ऑफ क्या बोलते हैं वो जज्बा, ये और बढ़ता है ना।
1: एग्जैक्टली। तो ऐसे और भी स्टोरीज हर दिन आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो हम लेकर आते रहेंगे। अभी तो 16 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर, थोड़ी ही देर में ग्लोबल हेडलाइंस।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: ए, देखो आ गए।
0: लेडीज एंड जेंटलमैन,
4: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल, और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
5: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
4: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
6: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का, और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
7: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
8: Shower dome.
9: Popeyes is turning 2, but you get the presents. Their limited-time birthday box is packed with 2 drumsticks, 6 nuggets, and regular Cajun fries for just $11.90. Celebrate 2 years of world-famous Louisiana fried chicken at Popeyes.
10: Love that chicken from Popeyes.
11: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
3: Menakau Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys la rahe hain Bhakti Kirtan Santhya Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center 32 Glasgow F Papatoetoe mein jisme kalakar rahenge Fiji ke Nitin Nilesh Prakash aur New Zealand ke Davin Nath do pahunche hue kalakaron ko ek saath dekhne ka anokha mauka tickets sirf $20 hain taiyar ho jaiye Bhakti Kirtan Santhya ke liye Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center Papatoetoe mein
4: The beat of Bollywood.
12: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
14: Global headlines.
1: आज सुबह सुबह ग्लोबल हेडलाइंस में यूएस और ईरान वो खत्म करने के लिए एक नए अग्रीमेंट के करीब हैं लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ वोन किया है कि अगर डील नहीं हुई तो बॉम्बिंग फिर से शुरू हो जाएगी। ईरान ने नए प्रोसीजर्स के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सेफ पैसेज की बात कही है जबकि ट्रंप ने ईरानियन पोर्ट्स की ब्लॉकेड जारी रखते हुए फिलहाल जहाज़ों को रास्ता दिखाने का काम रोक दिया है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यूएस ईरान बातचीत पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से अपडेट्स मांगे हैं क्योंकि इसराइल को डर है कि डील फाइनल करने के लिए यूएस आखिरी वक्त पर ईरान को बड़ी छूट दे सकता है। भारत में टीवी के चीफ विजय आज मुख्यमंत्री के पद पर शपथ नहीं लेंगे क्योंकि गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल उनके पास सरकार बनाने के लिए पूरे नंबर्स होने से संतुष्ट नहीं है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद टीवीके के पास अभी 108 सीट्स हैं और कांग्रेस के 5 सीट्स मिलाकर भी वो मेजॉरिटी मार्क से 6 सीट पीछे हैं जिस वजह से गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व कर दी है। विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और अब उन्हें एक दो दिन में इंडिपेंडेंस या दूसरे नेताओं का समर्थन जुटाकर हाउस में अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होगी। फिजी में कॉस्ट ऑफ लिविंग एक बड़ा संकट बन गया है जहां डायलॉग फिजी के सर्वे के मुताबिक हर दो में से एक शख्स बढ़ती महंगाई और खाने पीने की कीमतों से परेशान है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 77% लोग सरकारी खर्चे से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन एक्सपर्ट नीलेश लाल का कहना है कि फिस्कल हालात को देखते हुए टैक्स कट्स या वेट में बड़ी कमी करना फिलहाल नामुमकिन है। सर्वे ने हेल्थ सर्विसेज को भी टॉप प्रायोरिटी बताया है क्योंकि ज्यादातर हाउस होल्ड्स फाइनेंशियल मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार के पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए बजट की कमी है। आईपीएल के एक मैच में आज सुबह सनराइजर्स हैदराबाद की जीत पंजाब किंग्स से हुई। हैदराबाद ने पहले बैटिंग की और 4 खिलाड़ी खोकर 235 रन बनाए, जवाब में पंजाब किंग्स 7 खिलाड़ी खोकर 202 रन ही बना पाया। इस जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर चला गया है। यूएफए चैंपियंस लीग का दूसरा सेमीफाइनल आज सुबह 7 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में बायर्न की भिड़ंत पीएसजी से होनी है। अभी एग्रीगेट पर पीएसजी 5-4 से आगे है। आर्सेनल इस चैंपियंस लीग के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो चुका है जो 31 मई को खेला जाएगा। ओएफसी प्रो लीग लीडर्स ग्रुप कंपटीशन के दो मैचेस कल खेले गए। साउथ आइलैंड यूनाइटेड की जीत बुला एफसी के खिलाफ 1-0 से हुई जबकि साउथ मेलबर्न ने ऑकलैंड एफसी को 2-1 से हराया। मैचेस आज एक बार फिर जारी रहेंगे और आज के मैचेस की ओर अगर देखें तो आज चैलेंजर ग्रुप कंपटीशन के मैचेस खेले जाएंगे। ईडन पार्क पर 3 बजे सोलोमन किंग्स ताहिती यूनाइटेड का सामना करेगा जिसके बाद 7 बजे वनवातु यूनाइटेड और हेकारी एफसी के बीच मैच खेला जाएगा। एनआरएल कंपटीशन का एक मैच आज 9:50 PM पर डॉल्फिन्स और कैंटरबरी बुलडॉग्स के बीच खेला जाएगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
4: Hollywood's most wanted.
15: Gundi ghad gao. Ya seedha andar aao.
16: Main laau apna A game.
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: अमित मिश्रा, अनुष्का मनचंदा और उनके साथियों से ये गाना हम आपके लिए पेश कर रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जिसके साथ 29 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में। कल अक्षय कुमार और इनकी आने वाली जो फिल्म है उसके बारे में कुछ बातें हम कर रहे थे। आज उनके बारे में एक और खबर आई है कि अभी वो कुछ दिनों तक काम जो है ये नहीं कर पाएंगे।
1: क्यों? Has he met with some accident or something?
0: नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, लेकिन उनकी एक सर्जरी, एक माइनर सर्जरी जो है ये हुई है कल।
1: अच्छा, हो चुकी है।
0: हाँ, ये कल हुई है एंड उसके बाद he will now take a break and recover, और उसके बाद अनीस बज़मी की जो फिल्म जिसके बारे में कल हम बातें कर रहे थे उसे ये कंप्लीट करेंगे। नाउ ये माइनर सर्जरी जो है विजन करेक्शन के लिए हुई है। जस्ट डे बिफोर द सर्जरी अक्षय ने एक्सपर्ट शेयर किया था कि जो एक केरला के जो शूट स्केड्यूल है ये इन्होंने कम्प्लीट किया और उसके बाद ही मूव्ड बैक फॉर द सर्जरी और अभी कुछ दिनों तक आराम करने वाले हैं।
1: ओके, तो लेट्स सी कब तक ये वापसी करते हैं, और जैसे ही कोई अपडेट आता है इस रिगार्ड्स में तो डेफिनेटली आपके साथ हम शेयर करेंगे। वैसे मेरे पास भी आज एक खबर है जो आपके साथ हम जरूर शेयर करना चाहते हैं, एंड दिस इज इन रिगार्ड्स विद शाहरुख खान और साथ में दीपिका पादुकोण, इनकी जो आने वाली फिल्म है किंग, इसके बारे में। आई थिंक यस्टरडे मैंने एक आर्टिकल देखा जहाँ पर दे हैड मेंशन्ड कि ये दोनों यानी शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण शूट कर रहे थे इसी फिल्म के एक रोमांटिक सॉन्ग के लिए, और उसके कुछ इमेजेस एंड वीडियोस वगैरह जो है ये लीक हो चुके हैं। नाउ टुडे आई रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ऑन बॉलीवुड हंगामा, एंड इसके बारे में काफी बातें जो है ये हो रही है। दिस इज बेसिकली लीक्ड फोटोज फ्रॉम द सेट्स ऑफ द मूवी किंग, जिसमें ऑफकोर्स शाहरुख एंड दीपिका नजर आने वाले हैं, एंड इट वेंट वायरल ऑनलाइन। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने एक पोस्ट जो है ये शेयर किया अपने सोशल मीडिया पर, और उन्होंने फैंस से मांग की है नॉट टू शेयर द लीक्ड फोटोज एंड द लीक्ड वीडियोज फ्रॉम द सेट्स ऑफ द फिल्म, ताकि वो जो सरप्राइज एलिमेंट है वो स्पॉइल ना हो।
0: या
1: अर्लिया वैसे मूवी मेकर्स जो है ये काफी कंट्रोल रखते थे इन चीजों पे, एंड हाउ ऑडियंस वुड सी द फर्स्ट लुक वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज होती थी ना, जिस तरह से अनवेल होता था। आजकल जो फैन पेजेस है सोशल मीडिया पर वो ये लीक्स वगैरह जो है इंस्टेंटली स्प्रेड करते हैं, समटाइम्स इवन बिफोर द ऑफिशियल प्रमोशंस जो है ये शुरू होते हैं। कुछ मामलों में इन्हें एक पीआर गिमिक भी माना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में जेन्युइनली दे ट्राइंग टू कंट्रोल एंड इट हैपेंस। फैन पेजेस टुडे एक लाइक पावरफुल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड दे क्रिएट हाइप, शेयर अपडेट्स और जो ट्रेंड्स वगैरह है वो बहुत जल्द शुरू करते हैं। इट एक्चुअली हेल्प्स द फिल्म गेट फ्री पब्लिसिटी, लेकिन उनके लिए काफी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। पीआर मुफ्त में हो जाती है बट मुसीबतें बढ़ जाती है, और जो लीक्ड इमेजेस है स्पेशली अनक्लियर वंस वो ऑडियंस को काफी कंफ्यूज भी कर सकती है, और जो सरप्राइज एलिमेंट है उसे स्पॉइल भी कर सकती है। डायरेक्टर्स वांट टू रिवील थिंग्स प्रॉपरली विद इन कॉन्टेक्स्ट, और ये जो लीक्स है उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, बट इट्स नॉट दैट ईजी। देर ऑल्सो अ क्वेश्चन फॉर फैन कि शेयरिंग लीक्स शोज एक्साइटमेंट बट इट कैन ऑल्सो रिन सरप्राइज फॉर अदर्स, सो विच इज वाई Finally, someone has stood up and said it, and that particular person is Siddharth Anand, the director of the upcoming film King. इन्होंने ये बात जो है सामने रखी है। Now let's see, आने वाले दिनों में कितना control होता है इनके sets पर से, क्या कुछ और चीजें leak होती है या नहीं, but on the other hand, जो fan pages है वो इन्हें share करते हैं या नहीं is also a thing. The breakfast show.

0: आग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Traffic. Wardrobes Direct, great value wardrobes.
2: Cloud could slowly clear, but possible afternoon showers, 21 hour high. In on the southern motorway, almost half an hour in from Mataco now, 52 minutes from Drury. Slow Papakura on and off through to Mount Wellington. Not bad on the southwest.

0: Appliance ventilation system.
1: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
0: Moisture और ventilation का problem लगता है.
1: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
0: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance ventilation system से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba heat pumps के authorized dealers भी हैं.
2: Contact Reliance ventilation system on 0800 787 111. Reliance ventilation systems, solving ventilation problems for over 18 years.
3: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 21 मिनट रह गए हैं 7 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आज सबसे पहले 4 बजे से पहले ही आज मिस्टर माटा माटा निकल पड़े हैं. राम राम, जय सारा, हैप्पी थर्सडे एवरीवन, हैव अ ब्लेस्ड डे, इनका मैसेज आया है.
3: थैंक यू सो मच मिस्टर माटा माटा आपके मैसेज के लिए और आपके साथ के लिए भी. एंड दिस इज वन गाय जिनके बारे में हमेशा मेंशन करते, बिकॉज विदाउट अ मिस एवरी सिंगल डे, चाहे हम छुट्टी पर भी हो, ये हमेशा हमें मैसेज करते हैं, हर सुबह हमें याद करते हैं. थैंक यू सो मच बॉबी मान जी. जय साई राम, पूजा एंड विजय, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी थर्सडे इन्होंने कहा है. थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए.
2: गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा. मैंडी की ओर से मैसेज आए हैं. मैंडी, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग.
3: एंड इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और एक मैसेज जो है कि हमारे पास आया है. एंड एक मिनट है मेरा ये टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है ना, इसका ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, हमेशा ये आपको एंड मोमेंट पर ही धोखा देता है. राइट, उसके बाद अगर देखा जाए तो रोहिणी जी का मैसेज आया है, ऑल द वे फ्रॉम अपर हट इन वेलिंगटन. गुड मॉर्निंग, जय साई राम टू यू बोथ एंड ऑल एंड एवरीवन द हम फैमिली. थैंक यू सो मच रोहिणी जी आपके भी मैसेज के लिए.
2: और साथ में गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हैव अ ग्रेट डे अहेड. कोमल, आपको भी इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं.
3: फाइनली बिनीता जी, थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे इन्होंने कहा है. तो आपको भी हमारी ओर से आज के इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं जो है ये हम जरूर दे रहे हैं. जी
2: एक और मैसेज आए हैं. राम राम भाई, लिसनिंग फ्रॉम क्राइस्ट चर्च, गोइंग टू वर्क विद माई आरती.
3: विद माई हु?
2: विद माई आरती.
3: Oh, with my आरती. अच्छा, ओके.
2: अपनी पत्नी शलेन है, अपनी पत्नी आरती के साथ फिलहाल काम पर.
3: आरती, क्या बात है भाई.
2: शायद वाइफ लिखना भूल गए बीच में ना.
3: नहीं तो शायद ऐसे ही बोलते कि मेरी आरती ना. अरे यार, प्यार होगा इनका, अंदाज होगा इनका, उसमें क्या है. बात है तो कमाल की बात, ऐसे बोलना मेरी आरती ना, माय आरती,
2: मेरी आरती.
3: क्योंकि दो तीन और आरतियां होंगी इनके पहचान में. ये भी हो सकता है.
2: ये भी हो सकता है. अब चलेन बोलेगा ना कि मैं काम पर जा रहा हूँ विद माय आरती. मैं बोलूंगा मैं जा रहा हूँ मेरी पूजा के साथ.
3: Oh goodness, very nice. Shalin, I hope you have a wonderful day, and Aarti, you too have a wonderful day. Enjoy your day today. Thank you so much. आप दोनों के भी साथ के लिए बहुत सी चीजों के बारे में बातें हो रही हैं. और अभी एक और एक खबर जो है ये आपको हम दे दे. You're talking about Bollywood updates, and let's talk about this guy. He's also from Bollywood, लेकिन इनकी जो खबरें हैं ज़्यादातर ये आती है फॉर हिज फिटनेस, फॉर हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स फिटनेस एंड डिसिप्लिन, जो ये

0: at the age of 60 maintain करके रखे हुए हैं. I'm talking about none other than Milind Subban. और मिलिंद जो है इनके बारे में कहा गया है he has once again proved that age is just a number. ये फिटनेस आइकॉन तो है ही. सक्सेसफुली इन्होंने रिसेंटली कंप्लीट किया एक स्विम अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, इफ दैट्स हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड. I hope so.
1: आप पढ़ रही हैं
0: G-I-B-R-A-L-T-A-R. अच्छा चलो ठीक है. हाँ. नहीं अगर नहीं आता तो मैं सीधे सीधा बोल रही हूँ, अगर गलत प्रोनाउंस किया तो जरूर बताइएगा. सो ही कवर्ड द रूट बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका इन ओपन वॉटर्स, जहाँ के जो स्ट्रॉन्ग करंट्स है और डिफिकल्ट सी कंडीशंस है ये बहुत पॉपुलर है. और ये चैलेंज इन्होंने कंसिडर किया था एज वन ऑफ द टफेस्ट स्विम्स इन द वर्ल्ड. And at the age of 60, Milind Subban ने ये complete किया. And he continues to inspire people with his dedication towards fitness, discipline, endurance. Social media users जो है उन्होंने इनकी तारीफ की है, इनकी determination की तारीफ की है. And called him a true example of consistency and healthy living.
1: That's amazing, Milind Subban. At that age, इस तरह से अपना जो फिटनेस है ये बनाए रखते हैं. 18 मिनट रह गए हैं 7 बजने में. और मत भूलिएगा नेक्स्ट वीक मंडे को जो ड्रॉ है ये हो जाएगा. जो हमारे फेसबुक पेज पर कंपटीशन चल रहा है, इंडियस्ट बोल्डेस्ट कॉमिक आ रहे हैं ऑकलैंड मुनव्वर फारिकी धंधो ब्रूस मेसन सेंटर में 23rd ऑफ मई को. तो एक डबल पास जीतने का मौका है हमारे फेसबुक पेज पर. विजिट दिया एक रील है वहां पर, इट्स इन द फीचर्ड फोल्डर, आपको ऊपर ही मिल जाएगा ये. और ऑल यू गॉट टू डू इज आप इस रील को देखें एंड आपके दिमाग में देखते ही जो कोई सबसे पहले आता है उनको टैग कर दे जाकर कॉमेंट सेक्शन में, बस आप ड्रो में शामिल हो जाएंगे. और तैयार रहिएगा 23rd ऑफ मई के लिए, जब एक बहुत ही शानदार जो प्रोग्राम है ये होने जा रहा है. और टिकट्स ticketmaster.co.nz पर आपके लिए अवेलेबल हैं.
0: तो याद रहे धंधो के लिए आप टिकट जरूर ग्रैब कर लीजिए. और बिफोर द कंपटीशन फिनिशेस ऑन आवर फेसबुक पेज आप जरूर जाकर एंटर कीजिए कंपटीशन में, क्योंकि वंस द कंपटीशन फिनिशेस उसके बाद तो आपका हाथ, आई मीन ये मौके से आपका हाथ जो है फिसल जाएगा.
1: हाथ फिसल जाएगा या मौका फिसल जाएगा?
0: हाथ से मौका फिसल जाएगा. वही तो मैंने बोला, ये क्या बोल रही हूँ मैं. एक्चुअली आई वेंट एंड आई चेक्ड कि कितने लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट किया है एंड आई कैन सी कि अभी भी बहुत से लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने शायद इसके बारे में अभी तक रियलाइज नहीं किया है कि इट माइट फिनिश वेरी सून. तो अगर आप इस इम्प्रेशन में हैं कि अभी आपके पास टाइम है, दैट्स व्हाई यू हैव नॉट टेकन पार्ट, आपको बता दें बहुत जल्दी कंपटीशन खत्म हो सकता है. और अगर ऐसा हुआ तो आप फिर इसमें ना तो पार्ट ले पाएंगे ना तो डबल पासेस जो है ये जीत पाएंगे. इसीलिए विजिट आवर फेसबुक पेज टुडे, हम 104.2 FM और फीचर्ड फोल्डर में ये पोस्ट आपको दिख जाएगा. बस आपको ये रील जो वहाँ पर हमने पोस्ट अप किया है वो देखना है. उसे देखने के बाद आपके जहन में जो सबसे पहले फ्रेंड आपके आते हैं, जो शख्स आते हैं आपके जहन में, बस उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में जाकर उन्हें टैग करना है. कमेंट करते हुए इनको टैग करें एंड यू विल बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ.

0: Streaming on Rover.
1: Hum, accurate traffic.
2: Final weeks to sea sharks.
3: Quite cloudy, possible afternoon showers, 21 hour high. In on the northwestern motorway, it's about half an hour in from Massey. We're slow there to Tiaratu along the causeway. Heavy at St. Luke's and slow through to the city. Southern 33 in from Monaco Hour from Drury. Slow Papakura on and off right to Mount Wellington. Southwestern fine. Northern 25 from Constellation. Heavy there. It's slow all the way from Greville.
2: Don't miss the popular Sharks exhibition. Closes June 1st. Book now at AucklandMuseum.com.
4: Discover the magic at Go Bananas JK, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
5: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
5: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: ब्यूटीफुल हाउस प्लांट से लेकर हर वो चीज जो माँ को घर और गार्डन के लिए पसंद है सब मिलेगा माइटन मेगा वेस्टगेट और हैंडरसन में एवरीथिंग टू मेक मम स्माइल एक्सेप्ट द होममेड कार्ड बट यू कुड लेट मम डिसाइड विद अ माइटन गिफ्ट कार्ड एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हैंडरसन
7: इंट्रोड्यूसिंग पिज़्ज़ा हट्स न्यू टीका एंड पनीर रेंज रिच टीका बेस क्रीमी पनीर बोल्ड फ्लेवर गेट द फर्स्ट टेस्ट फ्रॉम $10.99 पिकअप एट पिज़्ज़ा हट लिमिटेड टाइम ओनली टीज़ एंड सीज़ अप्लाई
8: In this final hour, when the lives and well-being of your fellow country folk hang in the balance, is it you here that rise to answer NZ Blood's call?
9: Do they have parking?
8: There is some.
10: Are there biscuits?
8: Of course.
11: Can I do it during work hours?
8: Don't know. Talk to your manager. Probably.
12: Join forces and save lives. Plasma donations are powerful and help create up to 11 life-saving products. Book your plasma donation today at nzblood.co.nz.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast catch up. Throwback.
14: साढ़े आठ मिनट रह गए हैं 7 बजे में 7 पर न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए डोंट फॉरगेट आज एक और आर्टिस्ट रहेंगे बैक योर बैकयार्ड बीट्स में ऑन हम न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ के दौरान
15: तो आपके पास मौका रहेगा आज के जो आर्टिस्ट है इनको सुनने का और सुनने के बाद ये फैसला करने का कि क्या यूड लाइक टू बैक दिस पर्टिकुलर आर्टिस्ट बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इनके लिए वोट कर सके एंड वंस यू वोट फॉर द आर्टिस्ट What happens is कि उनका नाम उन टॉप 3 आर्टिस्ट में जाता है जहां पर मौका मिलता है कि उनके जो गाने हैं ये हम रोवर ऐप पर फीचर करें और साथ में उनको मौका मिलता है टू विन गिफ्ट प्राइज अ हैम्पर बेसिकली तो ये अपॉर्चुनिटी है एंड आपके पास सबसे ज्यादा मौका है टू वोट क्योंकि आपके हाथ पावर्स भी है टू वोट एंड सेलेक्ट द टॉप 3 आर्टिस्ट हमारे एनजेड म्यूजिक मंथ सेलिब्रेशन के लिए वोट करने के लिए बस जैसे ही जो भी गाना आप सुनते हैं इफ यू लाइक टू वोट फॉर दैट सॉन्ग आपको MM यानी म्यूजिक मंथ का शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है और फिर उस गाने के लिए वोटिंग करनी होती है और अपना नाम लिखकर 5599 पर आपको भेजना होता है
14: So make sure you get it done. आज एक और आर्टिस्ट और इनके बारे में डिटेल्स हम आपको बाद में चलकर जरूर देंगे फिलहाल आज का हमारा पहला थ्रोबैक का टाइम अब हो चुका है ये गाना आप एंजॉय करें और ये आया है फिल्म सलाम नमस्ते से 2005 में आई थी तकरीबन 21 years back
15: Yes.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज का डे पार्टली क्लाउडी रहेगा विद आइसोलेटेड शावर्स और फिलहाल टेम्परेचर 15.6 डिग्रीज है. हाई ऑफ 21 आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है. बाद में चलकर ओवरनाइट तो 16 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा. सनसेट 5:31 पीएम पर होगा आज.
0: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the

0: co.nz. 3 minute हो रहे हैं 7 बजकर. Welcome to Morning Madness on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. किसी का मैसेज आया था, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल यू बोथ, आपको भी ये सुबह मुबारक हो. गुड मॉर्निंग विजय जी, पूजा जी, विशिंग यू बोथ अ वंडरफुल डे. विमलेशन प्रिया, आपको भी ये दिन बहुत बहुत बार मुबारक हो.
1: थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेजेस के लिए, आपके साथ के लिए. हमारी सुबह भी एकदम बढ़िया बन जाती है, सुबह की शुरुआत भी बहुत कमाल की होती है जब आपका साथ इस तरह से मिलता है. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. और चलिए बात कर रहे हैं साथ की, तो एक मौका आपको दे देते हैं साथ को और भी यू नो लंबे समय तक चलाने के लिए. अपॉर्चुनिटीज इतनी है भर भर कर हमारे पास, तो समय समय पर वो आपके नाम हम करते रहेंगे. और इस बार जो मौका हम आपको देने जा रहे हैं वो है एक बहुत ही शानदार मौका, क्योंकि राहत फतेह अली खान और इनका बहुत ही कमाल का अनफॉरगेटेबल शो जो है ये होने जा रहा है 25th of July लाइव एट द ट्रस्ट एरिना. आपको इनको परफॉर्म करते हुए देखने का मौका मिलेगा 25th of July को. और ये तो आ ही रहे हैं, ऑल थैंक्स टू जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस. टिकट्स जो है ये dryTickets.com से आप ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि एक खूबसूरत शाम जहां पर ना केवल जो सूफी अंदाज में ये गाने लेकर आएंगे, कव्वाली भी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ बॉलीवुड, यू हैव लव्ड हिज सॉन्ग्स फ्रॉम बॉलीवुड, तो ये भी परफॉर्म करेंगे. बहुत ही पावरफुल परफॉर्मर है ये, बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक है ये, और इनके साथ एक फुल फ्लेज्ड बैंड जो है ये भी आएगा फ्रॉम इन, दे विल बी परफॉर्मिंग ऑन स्टेज ऑन द डे खास आपके लिए 25th of July इज द डेट, ये जरूर याद रखिएगा. एंड इसके लिए जैसे कि हमने कहा dryTickets.com, यहां से आपको टिकट्स ग्रैब कर लेने हैं. लेकिन अगर जो डबल पासेस आप जीतना चाहते हैं तो मौका आपके पास अभी भी है.
0: हम क्या करेंगे कि अभी एक गाने का एक लाइन आपको सुनाएंगे, और आज थोड़ा इजी भी हम आपके लिए करेंगे. अगर इस गाने का नेक्स्ट लाइन आपको नहीं याद आ रहा है, आपको हुक याद आ रहा है, तो वही आप हमारे पास टेक्स्ट कर दो.
1: अच्छा, तो आज हम लिरिक्स कंप्लीट नहीं करा रहे हैं, बस हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप हमारे पास वो मैसेज करो जो याद आ रहा है.
0: या एग्जैक्टली, एंड इट हैज टू बी फ्रॉम दिस सॉन्ग ओनली.
1: ओके,
0: तो गाना सुनने के लिए होपफुली आप तैयार हो. आज का गाना ये है. सॉरी, ये वाला नहीं था, ये तो हमने वही बजा दिया ना. आज का गाना इज दिस वन.
1: ओह गॉड,
0: अच्छी तरह से जो गाना है ये आप सुन ले.

0: तो अब ये लाइन है हमने सुनाई आपको, अगर आपको नेक्स्ट लाइन याद है तो वो टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर
1: लिरिक्स कंप्लीट कर सकते हैं।
0: हाँ, या फिर मैंने कहा नेक्स्ट लाइन है तो वो आप भेज सकते हैं, या फिर आप हुक गाने का वो हमें बता सकते हैं।
1: अच्छा, तो जो याद है वो बता दो, सिंपल एज दैट।
0: इजी होगा आपके लिए टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। सो सबसे पहले आपको लिखना है RFK, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम।
1: राइट, तो जल्दी से जवाब भेजिए, RFK सबसे पहले लिखे, फिर अपना आंसर लिखे या हुक लिखे या फिर नेक्स्ट लाइन जो याद है वो लिखे, और अपना नाम लिखकर 5599 पर जल्दी जल्दी हमारे पास मैसेज कर दीजिए।
0: 6 मिनट्स
1: ओके, चलो विदिन 6 मिनट्स जल्दी से मैसेज कर दो, क्योंकि तभी आपका नाम इस ड्रो में जाएगा जहां पर आप जीत सकते हैं डबल पासेस टू दिस अमेजिंग शो।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
0: Rashi Vibes.
2: So here are your Rashi Vibes for today. मेष यानी एरीज, आज कोई बड़ा काम आपका हो जाएगा, बन जाएगा, जिससे आप बहुत खुश होंगे। इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा होगा, बिजनेस ट्रेवल अच्छा जाएगा और आज झगड़ा झंझट से बचने की कोशिश करें। और आपकी कोई खास चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ या वैल्यूबल चीज़ समय पर आपको नहीं मिलेगी।
3: वृषिनी टोरस, आपके लिए कहा गया है बिजनेस अच्छा चलेगा, आपके एक्सपेंसेस जो है थोड़े बढ़ सकते हैं आज, इसलिए उसका ख्याल रखना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के बहकावे में या उकसावे में, इन्फ्लुएंस में ना आए, ऐसा भी आज आपके लिए बताया जा रहा है।
2: मिथुन यानी जेमिनी, कुछ नए कॉन्टैक्ट्स आप बनाएंगे और आपके भी रुके हुए काम पूरे होंगे, खुशियां होंगी। ऑफिस में भी आज आपके काम से सभी खुश रहेंगे और काफी इंक्विजिटिव रहेंगे लोग, आज आपके बारे में और ज्यादा जानना चाहेंगे।
3: एंड कर्क यानी कैंसर, आपके लिए कहा गया है कि आज आपकी आर्थिक उन्नति जो है, इसके प्रयास, इसकी कोशिशें जो आप कर रहे थे, ये सफल होंगे। कोई बड़ा काम करने का मन भी बनेगा एंड इनफैक्ट यू विल बी एबल टू डू इट एंड गेट अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। किस्मत भी आज आपका साथ दे रही है, खुशहाली ही खुशहाली हर ओर आप एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसा आज आपके लिए बताया जा रहा है।
2: सिंह यानी लियो, आज सरकारी सपोर्ट से आपके काम पूरे होंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा, ऑफिस में भी दिन ठीक ठाक ही रहेगा और आज जो आप काम कर रहे हैं उसको लेकर ख्याल रखें कि कोई उस में दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं कर रहा हो।
3: एंड उसके बाद आज वैसे कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि आज किसी भी तरह की मशीनरी का इस्तेमाल करते समय, गाड़ी चलाते समय या फिर कहीं पर भी आप कोई भी काम कर रहे हैं जहां आग से रिलेटेड कुछ आप कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, दूसरों के झगड़े में ना पड़े, ये भी आपको बताया जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी और के झगड़े में पड़ते हैं किसी और की मदद करने के लिए और खुद एक ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जिससे बाहर आना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए टुडे इज नॉट दैट डे।
2: तुला यानी लिब्रा, आपके लिए कहा गया है कि बिजनेस से आपको फायदा होगा, ऑफिस में इन्फ्लुएंस पड़ेगा, काम आपके बनते जाएंगे, इसीलिए आज आप काफी खुश रहेंगे।
3: एंड उसके बाद आज वैसे बताया गया है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के लिए कि मौका जो है ये आपको मिलेगा, बहुत सारे सुनहरे मौके इनफेक्ट आपको मिलेंगे खुद को साबित करने के लिए। किस्मत भी आपका साथ दे रही है, इसलिए जो कोशिशें आप कर रहे हैं वो सफलता आपको मिलेगी। हेल्थ थोड़ा कमजोर रहेगा क्योंकि शायद मेहनत इतनी कर रहे कि तबीयत पर ध्यान नहीं जा रहा है आपका, तो इसीलिए हम आपको याद दिला रहे हैं, पे अटेंशन टू योर हेल्थ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टेक थिंग्स लाइटली व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ।
2: धनु यानी सेजिटेरियस, आज किसी के गाइडेंस से, सपोर्ट से आपका काम होगा, ट्रेवल एंटरटेनिंग होगा, ऑफिस में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं, मेहनत ज्यादा करेंगे, शायद उतना रिजल्ट आज आपको देखने को ना मिले।
3: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है कि बिजनेस ठीक ठाक चलेगा, लेन देन में सावधान रहे, किसी भी अननोन व्यक्ति के साथ आज आपका कॉन्टेक्ट बनेगा एंड आगे चलकर यही अननोन रिलेशनशिप आपके बड़े काम आने वाला है।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, काम आसानी से आपके बनते जाएंगे, कुछ सोशल वर्क करने का मौका भी आपको मिलेगा, बिगड़े काम बनेंगे आपके और आज पार्टनर से काफी सपोर्ट भी मिलेगा।
3: एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो मकर यानी कैप्रिकॉर्न, माफ कीजिएगा, मीन यानी पाइसेस, आज आपके लिए बताया गया है कि कुछ नए दोस्त बनेंगे, अच्छी खबर भी मिल सकती है, आसपास एक हैप्पी एनवायरनमेंट आपका रहेगा एंड घर बाहर दोनों ही ओर शांति आज आप जरूर एक्सपीरियंस करेंगे। वन ऑफ दोज थिंग्स दैट यू रियली हैव बीन क्रेविंग फॉर इज पीस एंड फाइनली आपको वो एक्सपीरियंस करने का मौका जरूर मिलेगा।
2: So, this were your Rashi Vibes. और थोड़ी देर बाद सेलिब्रिटी अलार्म में देखेंगे आज किस सेलिब्रिटी की आवाज हम पहचानने की कोशिश करने वाले हैं।
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
4: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
5: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने। हम फीजी भजन्स।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
7: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
6: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
8: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
9: Available at selected branches. T's and C's apply.
10: ब्यूटीफुल हाउस प्लांट से लेकर हर वो चीज जो माँ को घर और गार्डन के लिए पसंद है, सब मिलेगा माइटन मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन में। एवरीथिंग टू मेक मम स्माइल एक्सेप्ट द होममेड कार्ड, बट यू कुड लेट मम डिसाइड विद अ माइटन गिफ्ट कार्ड एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
11: Danny didn't think he needed a DVS system.
12: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
11: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
12: Nah, only one room. It was just too noisy.
11: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
13: Hear that? That's the sound of discount day. Get 10 cents off per litre at Mobile when you want it, even on game day. Choose your discount day each week only in the Mobile NZ app. Let's go. For a limited time only, T's and C's apply.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune.

0: सेलिब्रिटी अलार्म का ये खेल काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है एंड कल स्मृति मंधना जो है इनकी आवाज कई लोगों ने पहचानी थी. मुझे लगा था कि शायद डिफिकल्टी होगी बट अ लॉट ऑफ पीपल मैनेज टू आइडेंटिफाई हर.
1: आई नो आई रियलाइज्ड इट कि जब हमने रोहित शर्मा की आवाज की थी तो सिर्फ 3 लोगों ने सही जवाब दिया था पर कल इनके लिए काफी लोगों का आंसर जो है ये आया. सो इट यू नो इट हैपेंस एट टाइम्स कि हम जो सोचते हैं उसका टोटल ऑपोजिट जो है ये होता है. बट लेट्स सी हाउ इट गोज टुडे. आज क्या होता है हमारे सेलिब्रिटी अलार्म का अंजाम. पर फिलहाल तो आवाज सुनते हैं और फिर अगर जरूरत पड़ी तो आपको क्लूज हम जरूर देंगे.
2: द फर्स्ट टाइम आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ए आर रहमान ऑफिस सेइंग दैट देयर इज दिस कंपोजर मिस्टर ए आर रहमान हु वुड वांट यू टू कम टू चेन्नई for recording the songs of his film, his new film, which is called Roja.
0: तो ये है आज की celebrity.
1: ये बहुत easy है. In fact, इतना easy है इनकी आवाज़ को पहचानना कि clues तो आज हम बिल्कुल भी नहीं देने वाले कि कौन है क्या करती है ये आपको ज़रा भी नहीं बताएंगे. इनकी आवाज़ वैसे बहुत popular भी है ना, जानी जाती खास अपनी आवाज के लिए.
0: इनकी आवाज ही इनकी पहचान है. तो अब कोशिश करें आप पहचानने की और अपने आंसर्स हमारे पास भेजें 5599 पर.
1: BF लिखना है सबसे पहले, फिर आज की सेलिब्रिटी अलार्म में आपको क्या लगता है कौन है ये, इनका नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है और भेज देना है ऑन 5599.
3: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
5: Brought
3: to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Breakfast.nz.
1: News headlines.
2: News headlines ka waqt ab ho chuka hai on hum playing Bollywood's biggest hits. Aur aaj khabron mein sabse pehle dekhe to Auckland ke ek vyakti Harry Singh ko 15 taxpayers ki identity chura kar $100,000 se zyada ka COVID relief fraud karne ke jurm mein 10 mahine ki home detention ki saza sunai gayi hai. सिंह ने अपने मृत पिता और दोस्तों के नाम पर 23 गलत एप्लीकेशंस भरी थी, जिसके जरिए उन्होंने कुल $224,400 का फ्रॉड करने की कोशिश की। कोर्ट ने उन्हें सजा के साथ साथ नुकसान की भरपाई के लिए $50,000 से ज्यादा का जुर्माना भरने का भी हुक्म दिया है। मार्च क्वार्टर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हल्का गिरकर 5.3% हो गया, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया है कि ईरान वो की वजह से आने वाले महीनों में ये 6% तक जा सकता है। केवी बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट जेरेड कर्क का कहना है कि पुराना डाटा अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि फ्यूल क्राइसिस का असली असर साल की दूसरी और तीसरी क्वार्टर में दिखेगा। के मुताबिक अगर हालात नहीं सुधरे तो बेरोजगारी का दर 5.8 से 6% तक पहुंच सकता है, जो फिलहाल 163,000 लोगों को प्रभावित कर रहा है। यूएफए चैंपियंस लीग का दूसरा सेमीफाइनल मैच फिलहाल अभी खेला जा रहा है। इस मैच में पीएसजी की भिड़ंत बायर्न से हो रही है और एग्रीगेट पर पीएसजी 5-4 से आगे था। प्रथम हिस्से में तकरीबन आधे घंटे का खेल पूरा हो चुका है और अब पीएसजी की जीत बायर्न के खिलाफ 1-0 से हो रही है। आपको याद हो कि आर्सेनल पहले ही फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो चुका है। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: With Vijay and Pooja. Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
3: 80s ke retro gaane.

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Accurate traffic.
2: Milldale House and Land Packages.
3: Cloudy with possible showers, 21 hour high today. Coming in on the Southern Motorway, 42 minutes, Manukau to the city. We're slow all the way in from Papakura with heavy patches building. Southwestern, quite slow northbound through Whitty. Northwestern, 32 minutes in from Massey, slow all the way from there. Heavy spots at Massey and St. Luke's. Northern, 34 from Constellation. Heavy gravel to the bridge and slow at Silverdale.
2: Award winning builders, wide range of homes. Milldale's Show Home Village, open daily. Everything's right here.
4: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है वे सिटी GWM हैवल हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले लिमिटेड टाइम ऑफर टीज एंड सीज अप्लाई फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स
5: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड बिना एडेड केमिकल्स बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट बिल्कुल घर जैसा जिंजर हो गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर और हाँ बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री लिमिटेड टाइम ऑफर 31st मई तक कशिश फूड्स ईट बेटर लिव बेटर
6: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
7: Showerdome.co.nz.
8: Farmers has the best gifts for mum. Surprise her with a new fragrance or beauty gift. Keep her cozy with a new robe and sleepwear. Treat her with some new styling tools or a gorgeous diffuser or candle. Celebrate mum this Mother's Day. Farmers, your department store.
9: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज तो उसे सीधा बिन में ना डालें पता करें कि वो कहां जाना चाहिए oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे तमाकी तुरुकी ओल्टुगेदर ऑकलैंड
10: Of Bollywood.
11: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
10: Birthday greetings.
13: इसका बर्थडे है?
14: मेरा ही बर्थडे है. चलो लाइन में आ जाओ.
15: Happy birthday to you.
16: 7th of May, आज अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या शादी की सालगिरह है, ये दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको हम कहना चाहेंगे और आज सबसे पहले ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं आशा वधान जी सनीवेल में अपनी सालगिरह आप मना रही हैं खुशी के इस मौके पर आपके तमाम परिवार वालों की ओर से आज शुभकामनाएं आपको मिली हैं ये दिन मुबारक हो आपको उधर बरकत अली खोजा जी हैं लिनफील्ड में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आपको भी अ वेरी हैप्पी बर्थडे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सालों साल आप इसी तरह से अपनी सालगिरह मनाते रहें और आपकी सालगिरह की खुशियों में हम शामिल होते रहें यही हमारी कामना है और उनके साथ आज धर्मेंद्र प्रसाद आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे खुशी के इस मौके पर आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी शुभकामनाएं और बधाइयां आपको दे रहे हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे

0: दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आज के सफर में अभी मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए जारी है. बाय द वे, आपको हम याद दिला दें कि फ्लाई अवे फ्रेंजी इसके लिए जो कोड है ये अगले घंटे हम जरूर रिवील करने वाले हैं. सो इफ यू हैव नॉट एज येट, आपने इसमें पार्ट नहीं लिया है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए. पहले से बता रहे हैं अगले घंटे कोड रिवील होगा एंड आपके पास टाइम है. आप कोड सुनिए और फिर उसके बाद इसे जाकर रोवा ऐप पर आपको एंटर करना होगा. वंस यू एंटर द कोड तो आप इस ड्रॉ का हिस्सा जरूर बन सकते हैं, जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जीत सके एक रिटर्न एयर टिकट टू फीजी, और ये आपका हो सकता है. पर उससे पहले हमारा जो फ्लाई अवे फ्रेंजी का कोड ये आपको सुनना जरूरी है और करेक्टली इसे एंटर करना भी जरूरी है. आई हैव बीन नोटिसिंग समथिंग कि अभी इतने दिनों से जब हम कोड्स वगैरह दे रहे हैं, सो हमारे जो लिसनर्स हैं, अगर कोई भी आरजे गलत तरीके से वो कोड वोड प्रोनाउंस भी करता है तो वो बड़े प्यार से यू नो दे राइट किट है, इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है. बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो नेटिव लैंग्वेज है फीजी में, वहाँ के लेटर्स और प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट होते हैं, और जो लोग फीजी से बिलोंग करते हैं उनके लिए इजी है टू प्रोनाउंस, बट इफ समवन इज नॉट फ्रॉम फीजी इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इसके इसको इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है.
1: या अभी कल सैंडी स्टोरी बता रही थी, अपना एक्सपीरियंस बता रही थी.
0: उतो का नहीं
1: तो आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे उनके प्रोग्राम में जो कोड वर्ड था वाज बिलो. सैंडी ने उसको अनाउंस किया कि आज का हमारा कोड वर्ड है बायलो.
0: Oh, bailo. Thank God she didn't say billo. That's another thing though. But yeah, that's what I'm trying to say. And we appreciate the fact ki aap understand karte hain ye cheeze aur bade pyar se aap wo samjhate hain. But right now, code word, agle ghante iska intezar kijiye. But another important thing, which is Pink Shirt Day, next Friday, yani 15th of May ko ye mark kiya jayega. If you have no idea what pink shirt is, to hum aapko ye batayenge agle ghante ki shuruaat mein.

सोनू निगम और साथ में अलका याग्निक को आप सुन रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जिसके साथ अब 7:30 रह गए हैं 8 बजने में। और आज अलका याग्निक की ही आवाज़ थी सेलिब्रिटी अलार्म में। कई लोगों ने सही जवाब दिया तो कुछ लोगों ने गलत जवाब भी दिए। थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 16.5 डिग्रीज टेम्परेचर अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं. आज का हाई 21, ओवरनाइट कम से कम 16 डिग्रीज रहेगा. बादल छाए रहेंगे दिन भर. आज रह रहकर कुछ हल्की बारिश होगी. सनसेट आज का 5:31 PM पर होगा.
0: Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: वेलकम टू द रश आवर ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM और रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. इस घंटे रिवील होगा आज का हमारा पहला काउटबोर्ड हम फ्लाई अवे फ्रेंजी के लिए, जहां पर यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू विन ए रिटेनियर टिकट टू पीजी. हर दिन वीक डेज पर सुबह 8, दिन में 11, दिन में 1, शाम 5 बजे के बाद ये काउटबोर्ड्स रिवील होते हैं. तो इसी घंटे ये होगा. स्टे ट्यून्ड. जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले उसके बाद जाकर काउटबोर्ड आपको रोवर पर एंटर करना होगा. बट राइट नाउ ट्रेंड पेट्रोल.
3: तो ट्रेंड पेट्रोल में आज बिफोर हम आपको बताएं आज की कहानी, हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं. पहले आप ये सुनिए और फिर हम आपको इसके पीछे की कहानी जो है ये भी बताएंगे.

0: तो ये बहुत ही खूबसूरत धुन जो है दरअसल एक बांसुरी की है, और ये धुन एक एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान एक शख्स ने प्ले की। अपेरेंटली ये रायपुर एयरपोर्ट में हुआ, जहां पर एक शख्स जो है अपने बैग में बहुत सारी बांसुरी जो है ये लेकर जा रहे थे, मतलब फ्लूट्स जो है ये लेकर जा रहे थे। एंड द आर्मी पर्सनल जो वहां पर चेक कर रहे थे, उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इनसे कहा कि कुछ बजाकर सुना दो। तो इन्होंने एक बांसुरी उठाई और फिर इन्होंने केसरी फिल्म का जो गाना है तेरी मिट्टी, उसका धुन प्ले करना शुरू कर दिया। एंड एवरी वन अराउंड हिम, जहां पर जो आर्मी पर्सनल्स भी थे, जो बाकी पैसेंजर्स जिनका चेक वगैरह भी हो रहा था, सब एकदम शांत खड़े होकर इनकी इस धुन को सुन रहे थे। पीपल गॉट देयर मोबाइल्स आउट एज वेल एंड स्टार्टेड मेकिंग वीडियो एज वेल। फिर उन्होंने इसे इंटरनेट पर भी डाला और ये वीडियो जो है फिलहाल ट्रेंड कर रहा है। इतना आपको बता सकते हैं कि जो शख्स है उनकी आइडेंटिटी तो खैर नहीं ज्यादा पता है, लेकिन इतना पता है कि वो एक बैंड का हिस्सा है, म्यूजिक ग्रुप का हिस्सा है, जिसका नाम है जयपुरी ब्रदर्स। और अच्छा। जब उनको ये प्ले करने का मौका मिला, ही मेड द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, और जितने लोग एट द एयरपोर्ट उस टाइम पर प्रेजेंट थे, सभी ने उनकी इस धुन को बहुत इंजॉय किया।
1: Amazing, बहुत ही खूबसूरत ये धुन है, और I don't know, I wish I had that talent.
0: ये बांसुरी बजाने वाला ना?
1: I absolutely love bansuri.
0: I know, not everyone is that talented, but he is. But फिलहाल के लिए ये आज का हमारा ट्रेंड पेट्रोल। Not forgetting कि हमने पिछले घंटे आपसे प्रॉमिस किया था पिंक शर्ट डे, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। So पिंक शर्ट डे जो है ये नेक्स्ट वीक फ्राइडे को मनाया जाएगा। इट्स ऑन द 15th of May, और 15th of May को ये सेलिब्रेट किया जाएगा। इसकी शुरुआत अपेरेंटली अगर देखी जाए तो कैनेडा से हुई थी, लेकिन आज ये नॉट दिस किया, लेकिन कई सालों से ये न्यूजीलैंड में भी मनाया जाता है। खासियत ये है कि ऑन दिस पर्टिकुलर डे, पिंक शर्ट डे, लोग पिंक कलर का शर्ट पहनते हैं एंड दे अटेंड या फिर होस्ट इन्फॉर्मेटिव इवेंट्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट बुलिंग, पर्टिकुलरली स्कूल्स में। पिंक शर्ट डे जो है इट बेसिकली स्टार्टेड इन 2007 इन कैनेडा, वेयर इट वॉज हेल्ड ऑन द लास्ट वेंसडे ऑफ फेब्रुअरी ईच ईयर, और इसे न्यूजीलैंड में अडॉप्ट किया गया था इन 2009 एंड इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन द 3rd Friday of May।
1: तो ये नेक्स्ट वीक फ्राइडे को रहेगा, और भी कई चीजों के बारे में बातें। द नेक्स्ट थिंग ऑन द लिस्ट इज व्हाट्स योर टेक, इस पर भी बातें थोड़ी देर बाद होंगी।

0: Backyard Beats.
1: वक्त है आज के अपने आर्टिस्ट को हम पेश करें बैकयार्ड बीट्स में। आपके पास मौका है अपने कलाकारों को सपोर्ट करने का, और आज के हमारे कलाकार हैं योगी। योगी जिनका जन्म जो है फगवाड़ा पंजाब में हुआ था और अब तो यही न्यूजीलैंड में है। मल्टी टैलेंटेड सिंगर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर। इनके म्यूजिक के बारे में कहा जाता है कि ब्लेंड्स वेरी ब्यूटिफुली, एकदम हार्टफेल्ट लिरिक्स होते हैं, कॉम्पोजिशन बहुत ही बढ़िया होता है, रिच नैरेटिव और साथ में एक बहुत ही आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है गानों के थ्रू आपको एंजॉय करने का मौका जो है ये मिलता है। सो आज अगर ये आर्टिस्ट आपको पसंद आ रहे हैं तो इनके लिए ज़रूर वोट करें। डबल एम उसके बाद योगी, YOGA इनका नाम है, ये लिखकर 5599 पर आप हमारे पास ज़रूर भेज सकते हैं। याद रहे डबल एम उसके बाद योगी और अपना नाम चाहे तो लिखकर 5599 पर आप हमारे पास भेज सकते हैं फॉर वोट टू वोट फॉर हिम।

0: driving you home?
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार।
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
6: Fly direct from Auckland to the Gold Coast with Qantas from June 16. From sun-soaked beaches and luxury retreats to world-class waterfront dining and lush hinterland escapes, find that holiday feeling in the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and 30 kilos of checked baggage included when you fly with Qantas. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply. Schedule subject to change.
7: There are days when you nail parenting, but this isn't one of them. There's not even a single cherry tomato for their lunchbox. And is that a tumbleweed? Luckily, a DoorDash hero emerges. That's me.
8: Dash! Savior of the lunchbox!
7: Now the kids have a tasty lunch that you can totally share on the gram. With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
8: Dash!
9: Stuck in the daily grind? Discover where your next adventure could take you at the Auckland Travel Show this Saturday and Sunday at the New Zealand International Convention Centre. With over 60 exhibitors, discover destinations like Sri Lanka, Europe, China, the Pacific Islands, loads of cruising, tours and more. Plus, go in the draw to win business class flights with Malaysia Airlines. T's and C's apply. Go to travelshow.co.nz for info and tickets. Discover, plan, book.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
11: What's your take?
12: What's your take का वक्त अब हो चुका है on the breakfast show with Vijay and Pooja. और आज Thursday है, थोड़ी देर हम बाद हम बातें करेंगे Logic Finance के गुरु कंडोलर से भी, और इसी घंटे हमारा जो हम फ्लाई अवे फ्रेंजी है इसका कोड वर्ड जो है ये भी रिवील होना है, तो आपको जल्दी से कॉल करना होगा आज के हमारे टॉपिक में हिस्सा लेने के लिए. और आज हम कुछ बातें जो हैं ये करने जा रहे हैं अबाउट रिटायरमेंट, खासतौर पर हम इंडियंस के रिटायरमेंट को लेकर. लीगल एस्पेक्ट्स को हम नहीं देख रहे हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है, डू वी रियली रिटायर एट द रिटायरमेंट एज? सिंपल क्वेश्चन है, क्या जब अवकाश लेने की उम्र जब आ जाती है, रिटायर होने का की जब उम्र हो जाती है, क्या वाकई में हम रिटायर हो जाते हैं? अभी क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं दे कम इनटू प्ले व्हेन इट कम्स टू अस, हम जो माइग्रेंट लोग हैं. मैनी फर्स्ट जनरेशन इंडियन इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन न्यूजीलैंड, यू नो, हाई वर्क एथिक and the drive to provide for their children. और इसका मतलब क्या होता है कि कई लोग into their late 60s or 70s भी अपना जो काम है ये करना जारी रखते हैं, not necessarily because they have to, लेकिन कहते हैं कहीं कहीं पर हमारी सोच जो है कि work until you cannot do anymore, ये एक mentality है, चाहे हम इसे accept करें या नहीं. फिर कहीं कहीं पर ये चीज़ आती है कि पेरेंटल ड्यूटीज़, ये हमारे में इंस्टिल है. रिटायरमेंट ऑफन डजेंट मीन लेजर, इट मीन्स अ शिफ्ट इन ड्यूटीज. आप पहले कहीं पेड एम्प्लॉयमेंट में थे तो उसके बाद आप निकल कर फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ऑफिस टू होम, यू नो, रेजिंग ग्रैंड चिल्ड्रेन, मैनेजिंग फैमिली प्रॉपर्टीज, जो कुछ भी हो. तो आज हमारा जो सवाल है आपसे डायरेक्ट एकदम हम पूछ रहे हैं कि डू वी रियली रिटायर एट द रिटायरमेंट एज. व्हेन इट कम्स टू रिटायरमेंट एज, क्या हम वाकई में अवकाश ले लेते हैं? डू वी रियली रिटायर? ओ 800 00 हम. और आपका क्या प्लान है ये भी आप हमें बता सकते हैं. एज यूजुअल एवरी डे की तरह आज भी परविंदर सबसे पहले. गुड मॉर्निंग परविंदर.
0: गुड मॉर्निंग,
12: हाउ आर यू?
0: आई एम गुड, हाउ आर यू?
12: बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच.
0: पंजाबी में कहावत है, जिन मुक जानी काम नहीं मुकने.
12: जिन मुक जानी
0: काम नहीं मुकने.
12: अच्छा, उसका मतलब क्या होता है?
0: तो लाइफ खत्म हो जाएगी पर काम खत्म नहीं होगा.
12: अच्छा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, काम नहीं होगा. ओके.
0: तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ चॉइस लोग आफ्टर रिटायरमेंट काम नहीं करते होंगे, बट जो दूसरी ड्यूटीज है, ग्रैंड पेरेंट ड्यूटीज, वो तो खत्म ही नहीं होती है. जैसे मेरे हस्बैंड की जो दादी है, वो अभी भी इतना करती है सभी बच्चों का. मेरे बेटे का भी वो उठा नहीं पाती थी, पर उसको देखती थी, जैसे पेपर वेपर चेंज कर दिया, ऐसे करते थे काम. और मेरी एक फ्रेंड थी, उसका डैडी विजिलेंट ऑफिसर था. जब उसका डैडी रिटायर हुआ, उसने प्राइवेट फर्म ज्वाइन कर लिया रिटायरमेंट के बाद भी. तो और मेरे पापा जब रिटायर हुए थे, जब घर पे होते थे तो ऐसे नोकझोंक होती रहती थी मम्मी डैडी की. मम्मी ने डैडी को बोला, आप प्लीज कोई और काम ढूंढ लो.
12: काम करते रहना होता है.
0: वो आदत रूटीन सेट हो जाता है ना बंदे का. फिर आई थिंक रिटायरमेंट के बाद मुझे लगता है कि वो एक वो जो होता है ना, कुछ मिसिंग उनको फील होता है लाइफ से, कि हमारा एक शेड्यूल था, एक रूटीन था, वो है नहीं, तो शायद वो इरिटेट हो जाते होंगे.
12: हो सकता है. आपका क्या प्लान है रिटायरमेंट एज हिट करने पर?
0: देखो, अगर तो मेरी लॉटरी कल लग गई तो मैं कल ही रिटायर हो जाऊंगी.
12: अच्छा, और अगर नहीं लगी तो?
0: बट नहीं लगी तो जब तक मेरे हाथ चल रहे हैं तब तक मैं काम करती रहूंगी.
12: ओके, इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच परविंदर आपके कॉल के लिए. तो आपकी भी राय हम बेशक जानना चाहेंगे. और 800 00 हम, और 800 00 4866 हमारा नंबर है कि हम इंडियंस या फिर किसी भी कम्युनिटी को आप ले लो, जो माइग्रेंट कम्युनिटी है, डू वी रियली रिटायर एट द रिटायरमेंट एज, या हम लोगों के लिए रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट की जब उम्र आ जाती है या जैसे जैसे रिटायरमेंट एज के करीब हम जाने लगते हैं, क्या चलता होगा हमारे दिमाग में? इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बातें कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग. हेलो.
11: हेलो, गुड मॉर्निंग विजय
12: जी. भैया
11: जी, बात करें
12: जी.
11: अगर काफी जने हम जनता वेट करे अपने रिटायरमेंट के.
12: अच्छा, क्यों क्यों?
11: कब 65 होगा, कब गवर्नमेंट का पैसा मिलेगा.
12: ओके, फिर उसके बाद आराम करते हैं.
11: आराम तो नहीं हुई, जितना दे हुए उतना हम कुछ नहीं हुई ना.
12: हाँ, वो भी बात है. इट्स वेरी हार्ड.
11: ई कंट्री में नहीं चली, उज्जैन जितना दे रहे हैं 900 पे 2 वीक्स.
12: ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके भी कॉल के लिए. तो सुपर एनुएशन के बारे में उन्होंने कहा, कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि रिटायरमेंट एज होगा तो सुपर एनुएशन जो है ये मिलेगा. बट एट द सेम टाइम भाई, आप जैसे इन्होंने भी कहा है कि जो सरकार से मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है. टैक्सेशन के बाद आई डोंट नो कितना मिलता होगा, जो कुछ भी मिलता है आफ्टर टैक्स. और क्वालिफिकेशन के लिए भी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स जो है ये होती हैं. गुड मॉर्निंग. हेलो.
13: गुड मॉर्निंग विजय जी, पूजा जी, हाउ आर यू?
12: हम लोग तो बढ़िया है सर, आप कैसे हो?
13: बहुत अच्छे विजय जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग.
12: जी बताइए.
13: सर मेरा व्यू है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको काम करता रहना चाहिए, अगर आपके हाथ पैर चल रहे हैं, यू हैव एनर्जी, तो देयर इज नो हार्म इन वर्किंग
12: जी.
13: एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल माइंड. और जैसा कि अभी परविंदर ने बोला ना कि एक रूटीन बन जाता है, तो मुझे अपने आप को देख के ऐसा फील होता है कि मैं नहीं घर पे बैठ पाऊंगा पूरे टाइम. ये जरूर हो सकता है कि मैं कोई पार्ट टाइम जॉब ले लूं, यू नो, या कुछ भी वॉलंटियरी करूं, बट आई वुड लाइक टू कीप कंटिन्यूइंग एज लॉन्ग एज आई कैन. और अच्छा होता है कि आप अपने ही पे डिपेंडेंट रहे ना, बिकॉज समटाइम पीपल फील कि अरे मेरा बच्चा कर देगा, मेरे बच्चा अब हमें यू नो वो करेगा. दैट मेंटालिटी एंड दैट यंग जनरेशन हैज पास्ड आउट इट. इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो यू हैव टू बी यू नो इंडिपेंडेंट टिल द टाइम यू कैन.
12: सेल्फ सफिशिएंट रहना पड़ेगा.
13: If you want to, you know, live a good life, and sometimes if you get lazy, तो 10 तरह की बीमारियां भी लगती हैं. And being from an Indian origin, हम लोगों की tendency है to put on lot of weight and all, अगर खाली बैठते. So it is good to keep doing something, you know, what you can.
12: Interesting. Thank you so much, भाई. आपके भी call के लिए. अभी अगर देखें एक और call जल्दी से ले ही लेते हैं. Good morning, hello.
14: गुड मॉर्निंग विजय जी, कैसे हैं आप?
12: ठीक हूँ सर, आप कैसे हो?
14: बहुत बढ़िया सर, थैंक यू. ये क्वेश्चन का आई वाज थिंकिंग पहले मैं आपसे पूछूं आपका क्या प्लान है, बट देन आई थॉट कि आई विल प्रॉब्ली उस पॉलिटिकली इनकरेक्ट ना हो से करके पहले अपना वर्जन बता देता हूँ. कि मुझे पूछा जाए तो आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, क्योंकि इनएक्सपीरियंस कह लो अभी उस टाइम तक आप नो आइडिया हेल्थ कैसी होगी. आई वुड लाइक टू वर्क, बट मेरे सामने जो मेरी फैमिली का एग्जांपल है, जैसे मेरे पेरेंट्स दे रिटायर्ड एट द रिटायरिंग एज.
12: ओके,
14: तो उसमें दे काइंड ऑफ वेंट ऑन रियली लेजी मोड. उसमें एंड आई कुड सी कि दे हेल्थ डिटेरियोरेटेड इन अ वे, और मेंटल हेल्थ काफी डिटेरियोरेट होती है. नॉट सो मच द फिजिकल हेल्थ बट द मेंटल हेल्थ. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी मेरे फादर लॉ जो है ही इज equally active in a different manner. So he's a doctor. तो पहले उन्होंने प्रैक्टिस की अपना क्लिनिक सेटअप किया, हॉस्पिटल चलाया एंड एवरीथिंग. देन व्हेन ही वांटेड टू काइंड ऑफ पुट ऑफ इश्यूज ही वेंट इनटू योगा. तो ही टीचेस योगा, डज योगा हिमसेल्फ, एंड अभी भी ही इज इन्वॉल्वड इन क्लिनिक. तो बट ऑन अ फील गुड बेसिस, कि जब भी उनका मन है तब वो जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं. एंड ऑन what I've seen in his health wise, he's mentally very positive. तो हर चीज को मतलब सुबह अभी भी जल्दी उठते हैं, get on with things. He does exercise, more exercise than what probably me and my wife does. And very fit person. And he's in 70. He's a 73 old man. And if you see him, you won't say कि भाई it looks like 73. So that is an example जो हमारी family में, and I think मेरा होगा कि मैं भी उसी direction में जाऊँ. रही बात वो पैसे की एंड फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करने की, ऑब्वियसली एवरीबॉडी विल हैव देयर ओन सिचुएशन. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वुड बी मस्ट होती है इफ यू हैव वर्कड हार्ड इन योर लाइफ एंड यू नो डन समथिंग गुड फॉर योरसेल्फ. तो रिटायरमेंट एंजॉयमेंट इज आई थिंक यू शुड नॉट जस्ट गिव अप वर्किंग. इट शुड बी मोर ऑन द लाइंस ऑफ यू डू व्हाट यू एंजॉय डूइंग, नॉट सो मच ऑफ कंपल्शन और बाउंडेशन.
12: या एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच भाई आपके भी कॉल के लिए. तो काफ़ी अच्छे व्यूज, अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है ये हमें मिले हैं. आप भी अगर कुछ सोच रखते हैं, अब तो टाइम नहीं है, कॉल करके आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, या फिर सॉरी टेक्स्ट करके बता सकते हैं 5599 पर.
10: Hollywood's most wanted.
15: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
16: Brought
10: to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी cute है.
2: फिलहाल 27 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में, या माफ कीजिएगा 9 बजने में. और हमने कहा था लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोलस से भी हमारी बातें होंगी, तो गुरु लाइंस पर आ गए हैं. गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो आप?
3: गुड मॉर्निंग विजय भाई, मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो?
2: एकदम अच्छा. और आज गुरु आपसे एक ऐसी चीज के बारे में हम जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, शायद आप समझा सकें, जिसके बारे में शायद बहुत कम हमने बातें की है या ना के बराबर बातें की हैं. ये IRD का जो डेट होता है, यू नो IRD खबरों में मैंने पढ़ा सुना है कि IRD इज़ गोइंग आफ्टर पीपल जिन्होंने अपना टैक्स वगैरह जो है नहीं भरा है, वो सारी चीज़ें, बिजनेसेस एंड ऑल दोस थिंग्स. तो इसके बारे में आप हमें कुछ अच्छी तरह से समझाएंगे कि क्या हो सकता है?
3: डेफिनेटली विजय भाई, जब आप बिजनेस में होते हो तो डेफिनेटली जो इनकम होती है वो ट्रूली सारी इनकम जो होती है वो आपकी इनकम नहीं होती है, बिकॉज यू हैव टू पे द शेयर फॉर IRD एज वेल, जो टैक्सेस. जब हम सैलरीज लेते हैं या PAY इनकम्स करते हैं तो उसमें हमें वो चीज पता नहीं लगती, बिकॉज वो टैक्स जो है PAY का वो एम्प्लॉयर काट के ऑलरेडी IRD को दे देता है, सो वी नेवर फील दैट वे. बट जब वो बिजनेस करना शुरू करते हैं, बेसिकली इट इज बिग चंक की उसमें जब इनकम आ रहा है आपका, और उसको अगर मैनेज सही तरह से नहीं किया गया, दे आर टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स है, GST है, PAY है, अगर आपने कोई एम्प्लॉयज रखे हुए अपने बिजनेस में उनका टैक्स है. फिर लॉजमेंट के बाद प्रोविजनल टैक्स आ जाता है कि बेसिकली आपको इस साल का तो भरा है, अगले साल का भी आपको आपको एडवांस में भरना पड़ता है, और उसके स्टेजेस हैं, और अगर वो स्टेजेस पे नहीं पेमेंट जाती है, आपका बैकग्राउंड में उनका एक मीटर चल पड़ता है IRD का, जिसमें वो फाइन्स लगाने शुरू कर देते हैं, इंटरेस्ट लगाने शुरू कर देते हैं, पेनल्टीज लगाने शुरू कर देते हैं, और जब आप अगले साल जाके दोबारा फाइल करते हैं तो वहां पे आपको ऑलरेडी इतनी सारी पेनल्टीज नजर आती हैं. तो पीपल डोंट गेट इनटू दिस वेरी नाइसली, और उनको वो समझ ही नहीं आता, और एकदम से बढ़ते बढ़ते बढ़ते प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो IRD के टैक्स खड़े हो जाते हैं, और अगर आप पे नहीं टाइम पे करते देन दे फोर्स यू टूवर्ड्स द लिक्विडेशन, कि आप इसको कंपनी को बंद करो और लिक्विडेट करो. सो एंड आपने खबरों में पढ़ा ही होगा काफी कि कितना लिक्विडेशन हो रहा है आज की डेट में, बिकॉज IRD चेजिंग दैट डेट्स. बट सेइंग दैट इज ऑलवेज, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होता ही है, राइट? सो इन टर्म्स ऑफ वी हैव हेल्प सो मेनी अभी अपने रिसेंट कस्टमर्स को, जिसमें वी हैव गॉट देम आउट ऑफ दिस IRD डेट by getting them funded and paying IRD, और उसके बाद एक बार प्रोसेस स्मूथ हो गया, उनको समझ आ गया कि कैसे इसको मैनेज करते हैं, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम प्रीटी श्योर उनके अकाउंटेंट्स उनको समझा रहे होंगे, बट समटाइम्स वो आप अकाउंटेंट्स के साथ बैठ के उस चीज को समझते हैं, अगर पूरा नहीं समझेंगे तो काफी वो केओस खड़ा हो जाता है. तो IRD का जो प्रोसेस है वो समझना बहुत जरूरी है कि कैसे किस टाइम पे वो पेमेंट जानी चाहिए. बट लेकिन अगर आप ऑलरेडी इस ट्रबल में फंस चुके हो और अभी आपको लग रहा है कि अब इसको कैसे करना है, तो देन डेफिनेटली गिव मी अ कॉल, विल फाइंड अ सॉल्यूशन, विल गेट दिस फंडेड, विल हेल्प यू टू नेगोशिएट विद IRD बाय गिविंग यू सम एडवाइस, और फिर आप वो अपने अकाउंटेंट से बात कर सकते हो, और एक बार वो नेगोशिएशन हो गया, IRD नेगोशिएशन भी करता है अगर आप उनको लमसम पेमेंट कर रहे हो तो. एंड देन वंस यू कम इनटू द स्मूथ प्रोसेस, जस्ट मेक श्योर कि वो दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए. And that's the gist of it. But yeah, getting funded, yes, we will try every effort to get this after listening your situation.

0: can come back to me. एक 0800 number है जो आप free dial कर सकते हो, which is 0800 logic G, which is 0800-564-424. 0800-564-424 is the number to get in touch with me.
1: गुरु थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए. अब नेक्स्ट वीक आपसे और बातें जरूर करेंगे.
0: थैंक यू विजय भाई.
1: थैंक यू.
2: आर यू रेडी? चैटबस्टर्स
3: थोड़ा सा हॉल बना दे.

0: today a much-needed renovation or simplifying debt. With weekly, fortnightly or monthly repayment options available. Apply online in under 7 minutes, and if approved, we'll waive the loan establishment fee. That's a saving of $240. Establishment fee waived until 19th of May 2026. T's and C's apply.
1: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
2: Whiteware Super Sale is on now at Noel Leeming. Get up to 25% off whiteware and cookware. Plus, check out our finance options available. Conditions and exclusions apply. Whiteware Super Sale ends Tuesday, 12th May. Only at Noel Leeming.
3: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
4: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
6: फिलहाल 16 मिनट रह गए हैं अब 9 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. अब वक्त है आपको हम बताएं कि आज का हमारा पहला कोड वर्ड क्या है. हम फ्लाई अवे फ्रेंजी के लिए. एंड इसके बाद एक घंटे का टाइम होगा. यू हैव टू विजिट रोवा और कोड वर्ड जाकर एंटर करना होगा. अगर डायरेक्टली आपको लिंक चाहिए कि कहां पर आपको कोड वर्ड एंटर करना है तो डबल एफ लिख कर आप 5599 पर हमारे पास भेज देंगे और लिंक यहां से हम आपको भेजेंगे. ज़्यादा इधर उधर भटकना आपको नहीं पड़ेगा. आज का कोड वर्ड है जांगी. जांगी यानी इसका इसको स्पेल करते हैं CAGI. जांगी CAGI. ये आज का हमारा कोड वर्ड है और अभी से एक घंटे का टाइम है आपके पास. देयर्स अ लॉट ऑफ टाइम. आप जाकर आराम से रोवा विजिट करें और इस कोड वर्ड को एंटर कर दें सो दैट यू गेट अ चांस टू विन ए रिटर्न एयर टिकट टू फिजी. और अगर आपको डायरेक्टली लिंक चाहिए कि कहां पर एंटर करना है डबल एफ ये लिखकर 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं.

0: You get money, get cash.
1: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry, and if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover. Accurate traffic.
2: Never seen ice hockey before?
3: Fine spells, lots of cloud, a high of 21 today. Lovely start to the day. Southern, 48 minutes, Manukau to the city at the moment. We're slow from Manukau, heavy Otahuhu to Ellerslie. Pretty good south of Manukau. Southwestern, a little slow northbound through Whitty. Northwestern getting better, 34 in from Massey. Heavy Te Aratu south to Point Sheep, then slow from there. Northern, 30 in from Constellation. Heavy gravel on and off to the bridge.
2: Ice hockey games this weekend. Fast, exciting, family-friendly entertainment. Search ice hockey tickets.
4: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाएं
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
6: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.in से
7: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज तो उसे सीधा बिन में ना डालें पता करें कि वो कहां जाना चाहिए oaklandcouncil.govt.nz/where-it-goes पे Tamaki Turuki All Together Auckland
8: The show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
8: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
10: तो कल जावेद अली पहुंच चुके हैं सुपर सिटी ऑकलैंड जहां पर ये आए थे या आने वाले हैं परफॉर्म करने वाले हैं टुमारो द 8th ऑफ मई को एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर और टॉकिंग अबाउट जावेद अली बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट है ये कल इनका मीट एंड ग्रीट भी हुआ इनफैक्ट और एक खास स्पेशल इंटरव्यू जो है ये भी हुआ जिसके बारे में डिटेल्स हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे बट रिमेंबर स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं रफ़ी और मैं टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफ़ी बाय जावेद अली प्रेजेंटेड बाय पैसिफिक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप भी इस बहुत ही खूबसूरत शाम का हिस्सा बने एक ऐसी शाम जहां पर रफ़ी साहब की खूबसूरत मेलोडीज गुनगुनाएंगे नन अदर देन जावेद अली और इनके खुद के गाने यार इतने खूबसूरत गाने हैं इतने कमाल के गाने हैं वी ऑलवेज मैंशन दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग्स जो इन्होंने गाए हुए हैं वन ऑफ माई फेवरेट ये पर्सनल फेवरेट्स वुड बी सौदा फ्रॉम आक्रोश जो मुझे बहुत पसंद है शिवल्ली गाना भी इतना पॉपुलर हुआ इनका तो ये सारे गाने ऑन द नाइट ये परफॉर्म करेंगे विच इज़ टुमारो 8th ऑफ मई एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर टिकट्स स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $59 अगर नहीं लिए हैं आपने तो स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट विजिट कीजिए और टिकट्स ज़रूर ग्रैब कीजिए स्टार अलायंस entertainment.com जहां पर जाकर आप इस शो के लिए टिकट्स अपने जो है ये ले सकते हैं फाइनल 350 टिकट्स बाकी थे द लास्ट वी नो आई थिंक मंडे को हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला था आज थर्सडे है विल ट्राई एंड फाइंड आउट कि अभी कितने टिकट्स बाकी हैं पर इसका मतलब ये है कि ज्यादा नहीं बाकी है एंड इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल नाइट क्योंकि ये जावेद अली का पहला शो है न्यूजीलैंड तो जरूर टिकट्स ग्रैब कर लीजिएगा ऑन टाइम

0: accurate traffic.
1: Experience fun at Snow Planet.
2: Our early mostly cloudy forecast turning into a mostly fine one, a high of 21. Northern Motorway, if you're coming in, just 30 minutes, Constellation Drive to the city. Slow at Silverdale a bit, heavy patches, Greville to the bridge. We had a crash northbound just before the bridge, but that's been cleared quickly. Northwestern, 28 minutes in from Massey, slow even heavy from the causeway. Southern 45, Manukau to town, slow from there, heavy Otahuhu to Ellerslie.
1: Ski, board, slide, tube, fun for the whole family at Snow Planet, not a million miles away.
3: Get into Bunnings today and get cooking, because you can pick up a Mistral 6.5-litre digital air fryer for just $69. But hurry, only while stocks last. Shop online or in-store at Bunnings
4: Warehouse. Ek sapna hai, sapna kuch apna karne ka. सपना एक अपने बिजनेस का
5: हम है क्रू केयर सिर्फ $15,000 onwards की इन्वेस्टमेंट में हम बनाएंगे आपके सपने को एक हकीकत
6: Crew Care offers commercial cleaning franchise, which caters to after and before hours cleaning services for offices and schools. Crew Care also has tie-ups with many cleaning sites, like offices, schools, gyms, medical centres and hospitality sites. Finance options available for approved purchases. Call Crew Care on 0800 800 209.
7: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार
8: क्यों क्या हुआ
7: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था $20,000 चाहिए थे बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत एक हफ्ता हो गया नो रेस्पॉन्स फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है
9: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 लॉजिक जी दैट्स 0800 564 424
10: What kind of businesses run on Business Fibre? Cloud thriving businesses, CGI building businesses, even big file sharing, video calling, meme sharing businesses. For uncompromising bandwidth and reliability, get your business running on Business Fibre.
11: Cooking ka asli flavor chahiye? Switch to Kashish Foods ginger garlic paste, freshly ground in New Zealand, bina added chemicals, bina preservatives and vinegar free. Sirf clean natural taste, bilkul ghar jaisa. Ginger ho, garlic ho ya perfect combo, har dish banegi full of flavor. Aur ha, buy any Kashish dosa batter any size aur pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods, eat better, live better.
12: Time check.
13: Good morning, इस समय ठीक 9 बज रहे हैं.
12: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. A Youthline report has revealed young people are under mounting strain. 59% say the most important issue they face is mental health. CEO Shay Ronald is troubled by this the most.
15: I'm really concerned that 41% of young people couldn't name one mental health organisation that they could reach out to for support.
14: A disturbing finding in a review of global studies about the impact of children's screen time on their development. University of Auckland's Claire Reid says the brains of kids with higher use at a younger age had shrunk.
16: You want kids to have the best chance to thrive. You want their brains to grow and their connectivity, the way the areas of the brain talk to each other to work at the best they can.
14: Coronet Peak's new snowmaking machine is up and running. The $2 million snow factory will allow the popular venue to open earlier. Ski area manager Nigel Kerr says it's a bonus for local businesses.
17: When winter turns on, a lot of businesses turn on. The sooner we can turn on the message that we're open for winter, the sooner people start booking with confidence.
14: President Trump has issued a fresh ultimatum, telling Iran to accept a deal or face a new wave of bombing. Tehran says it's still reviewing a new US proposal to end the war, following reports a deal was close. In sport, Dean Foxcroft's eager to get some more international experience on the upcoming Black Caps tour. The batting all-rounder's been included in the test squad for the first time for games against Ireland and England.
18: It's another experience where I can just go and try and see what I can do and learn from people around me.
14: And cowpats on the roads during a one-day race in Belgium are being blamed for several cyclists falling ill before the start of the Tour of Italy this weekend.
12: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
19: World's best, hamari good brands bhi hai.
12: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: Almost 19 degrees temperature. Abhi Auckland mein aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 21. Overnight kam se kam 16 degrees rahega. Badal chhaye rahenge. Rehkar kuch halki barish aaj hogi. Sunset aaj ka 5:31 p.m. par hoga.
12: The breakfast. Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
12: What's going on? Kya bakte ho?
0: Arre kehna kya chahte ho?
8: तो आज का क्या बकते हो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये. और इसके बारे में जब भी मैंने जब मैंने पढ़ा तो मुझे हंसी बहुत आई. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फाउंड दिस हिलेरियस. पर ऐसा लगा कि यार पुआ गाय, काश ऐसा ना हुआ होता उनके साथ. अपेरेंटली एक वायरल मोमेंट जो है ये एक लाइव कॉल के दौरान कैप्चर हुआ. नाउ दिस पर्टिकुलर लाइव कॉल वाज नॉट अ पर्सनल वन, इट वाज अ प्रोफेशनल वन, जहां पर एक पर्टिकुलर कंपनी की डिपार्टमेंट की मीटिंग चल रही थी. And an employee found himself in a very embarrassing situation. Pura department baithkar meeting jo hai ye kar raha hai. And suddenly there is this background mein ek particular jo shakhs yahan par meeting attend kar rahe the apne department ke saath. Usme team head bhi the, matlab manager bhi the us department ke. Aur piche se unke video mein awaaz aayi ki are jana tha, tum laptop lekar baith gaye ho. And दिस गाय गोज लाइक कि अरे मेरी क्या गलती है, मुझे भी तो जाना था ना, पता नहीं किसने इनको मैनेजर बना दिया, ऐसा मुझे भी तो मुफासा देखने जाना था, ऐसा कुछ वो बोलता है वो शख्स. और वो पूरा का पूरा जो उन्होंने बोला कि पता नहीं इसको किसने मैनेजर बना दिया, 7 बजे मीटिंग कर लेता ये वो चला गया लाइव उसी मीटिंग में.
13: वाह.
8: The other colleague, I think, कोई फीमेल कलीग थी जिन्होंने इनका नाम लेकर इनको बताया कि अरे तुम्हारा वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन है. And he goes like, oh, I'm sorry. And then he switches it off. But तब तक too late था क्योंकि the manager was sitting in that meeting paying a lot of attention. और उन्होंने एक एक वर्ड जो है बहुत अच्छे से सुना. It turned out to be hilarious. But of course, उनका जो unguarded remark था वो public हो गया. उसके बाद क्या हुआ इनका वो मुझे ज्यादा नहीं पता बिकॉज उसकी स्टोरी नहीं है. बट दिस इज समथिंग दैट हैज अपेरेंटली हैपेंड एंड आई हैव गॉट द वीडियो. अगर यू नो अप्लाई करना चाहे वी कैन प्ले इट. बट आई थिंक इट्स अ वेरी हिलेरियस सिचुएशन. आई डोंट नो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ या नहीं. आई नॉर्मली इफ आई अटेंड ऑनलाइन मीटिंग्स मैं हमेशा अपना माइक और जो कैमरा है ये ऑफ रखती हूँ. अनलेस एंड अंटिल आई एम आस्क्ड टू स्पीक और इफ आई वांट टू से समथिंग देन आई विल पुट माई रेज माई वर्चुअल हैंड अप. एंड इफ आई एम सेड कि अच्छा आप बोलो देन आई विल स्विच माई माइक ऑन एंड देन आई सेड बिकॉज आई नो कि कभी कभी गलती से आप कुछ कर रहे होते इधर ना वो हो जाता है. आई हैव अटेंडेड फोन कॉल्स ड्यूरिंग मीटिंग्स एज वेल सिटिंग अलोन. आई वॉच्ड सम वीडियोज ऑनलाइन सीरियल्स वगैरह भी ड्यूरिंग सम मीटिंग्स व्हाइल आई वाज गेटिंग बोर्ड. तो वो भी एक चीज़ है, पकड़े नहीं जाते ना जब आप थोड़ा केयरफुल होते तो.
13: तो बट यू ऑलवेज नीड टू बी वेरी वेरी जेन्युइन व्हेन यू आर अटेंडिंग मीटिंग्स. अब पता चल गया ना कि अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है मुझे.
8: See, I am not talking about our department meeting.
13: I am not saying कि you are doing that in our department meeting.
8: Yeah, you becoming a boss right now. Now try and be a co-host and enjoy the moment. Don't be a boss.
13: उतनी देर जब तक दूसरी कहानी चल रही थी, I was enjoying the moment.
8: हाँ, ये खुद पे आई तो फिर पता चला.
13: खैर, थोड़ी देर बाद देखेंगे आसपास कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है.

0: What's going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: 14 मिनट हो रहे हैं 9:00 और क्या हो रहे हैं हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में इसकी जानकारियां हम आपको देते रहते हैं. मैनुकाओ चैरिटेबल क्लब इन एसोसिएशन विद भक्ति सत्संग बॉयज ला रहे हैं भक्ति कीर्तन संध्या और ये कल होने जा रहा है वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापाटोईटोई में. और इसके लिए कलाकार लंबा सके या फिजी के नितिन नीलेश प्रकाश ये पहुंच चुके हैं न्यूजीलैंड और इनके साथ कल मंच पर रहेंगे ऑकलैंड के दवेन नाथ. इन दोनों कलाकारों को एक साथ देखने का मौका बहुत कम टिकट्स बाकी रह गए हैं सिर्फ $20 जो आप जेस फ्रेशमार्ट और कई इंडिया फैशन से ले सकते हैं और कल इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं.
3: दूसरी ओर श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भोजन मेला यानी फूड कार्निवल ये होने वाला है नेक्स्ट वीक संडे 17 मई को दिन में 11 से लेकर शाम 4 बजे के बीच और ये रहेगा 378 अररिमुरो ड्रामारामा साउथ ऑकलैंड. यहाँ पर आप पहुंच सकते हैं बिकॉज एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री. यहाँ पर आपके खाने पीने का भी पूरा बंदोबस्त किया गया है दैट टू फॉर फ्री और ऑफकोर्स यहाँ पर रिटेल स्टॉल्स रहेंगे चाहे क्लोथिंग का या ज्वेलरी का. यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. मेहंदी लगाने का अगर शौक है आपको तो हीना आर्टिस्ट will be available at the venue as well. और बच्चों के लिए face painting plus bouncy castle ये सब कुछ आप experience कर सकते हैं.
2: Fiji Girmit Foundation न्यूजीलैंड ला रहे हैं 147th Girmit Remembrance Day. ये Saturday 16th मई को रहेगा 4 बजे से Malayola Community Center 16 Waikauri Place मैंगरी में और 4:30 बजे से networking tea and snacks जिसके बाद 5 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा. कैंडल कॉमेमोरेशन आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले सीनियर्स रिकॉग्निशन अवार्ड कल्चरल परफॉर्मेंस और भी बहुत कुछ आपके लिए होगा तो इस बहुत ही खास प्रोग्राम में आप जाकर जरूर हिस्सा ले सकते हैं.
3: और इसके साथ साथ आपको याद दिला दें 23rd of May विच इज लाइक नेक्स्ट वीक ऑफ सैटरडे सैटरडे वाइब मिक्स इवेंट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं द ग्रैंड मस्ती नाइट जहां पर बहुत सारी कमाल की चीजें होंगी एंड स्पेशली अगर आप फिजी को बिलोंग करते हैं तो दिस इज द शो जहां पर आप जरूर जा सकते हैं एक्सपीरियंस कर सकते हैं बिकॉज फिजी से आ रहे हैं रेडियो पर्सनैलिटी सत्यानंद यानी SN एंड ऑफकोर्स जय जिन्हें भैया जी के नाम से भी जाना जाता है राउडी नमन इनसे भी आप वाकिफ होंगे तो ये तीनों आपके लिए एक बहुत ही शानदार ग्रैंड मस्ती नाइट जो है ये प्रेजेंट करने वाले हैं. और ऑफ कोर्स द डांसिंग लेजेंड चरफर कमिंग टू न्यूजीलैंड आफ्टर 17 years और यहाँ पर ड्यूअल वॉइस सिंगर मनी डिसूजा जो दोनों मेल एंड फीमेल वॉइसेस में गाना गा सकते हैं वो भी परफॉर्म करेंगे प्लस द अमेजिंग मोंटो मोनिका इनका भी परफॉर्मेंस रहेगा और युवा डांस ग्रुप न्यूजीलैंड यहाँ पर ये भी परफॉर्म करने वाले हैं. खास बात ये है कि लाइव डीजे परफॉर्मेंसेस भी होंगे दैट यू कैन डेफिनेटली एंजॉय एंड आवर वेरी ओन केतन कुमावत ये भी यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं हमारे लंच बॉक्स के जो होस्ट है इनका भी एक स्पेशल परफॉर्मेंस रहेगा. सो यू विल गेट टू एक्सपीरियंस ऑल दिस प्लस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू विन अमेजिंग प्राइजेस मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की ओर से वाउचर्स रॉयल गोल्ड हैम्पर्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर्स और या रॉयल गोल्ड की ओर से गिफ्ट हैम्पर्स साथ में ग्रीन हॉर्न की ओर से गिफ्ट हैम्पर्स एंड विकेट चिकन बोटनी डाउन्स ब्रांच जो है यहाँ पर फूड वाउचर्स इनकी ओर से ये भी आप जीत सकते हैं. There's heaps and heaps of parking or security bhi provided rahegi. Foods and drinks will be sold at the venue by Simply Divine. Tickets agar aapko chahiye to VIP table sitting ke liye $50 and standard tickets from $30 aap grab kar sakte hain. Hunter's Food Town Papatoetoe, Jay's Fresh Mart Papatoetoe, Get Fresh Supermarket Mangri, Kes Hair and Beauty Salon Manureva aur Wicked Kitchen Botany Downs ya Wicked Chicken maaf kijiyega Botany Downs branch, Gender Hair and Beauty Salon Cavendish Drive. यहाँ से आप अपने लिए टिकट्स ले सकते हैं. हैपनिंग 23rd of May नेटबॉल हॉल मनुरेवा और द शो विल स्टार्ट एट 6 PM.
2: तो और भी क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में भी डिटेल्स बारी बारी से हम आपको देते रहेंगे. और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स फिलहाल 18 मिनट हो रहे हैं 9:00.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
4: हे देखो मैं आ गए.
5: Bro, look at you. Blue light screen को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा. और ये कॉफी ल्यूक वॉर्म, अ टेस्ट बिल्कुल हार्टब्रेक जैसा. प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए.
0: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
6: From the age of 10, I knew you would come. I didn't know when, but you arrived. Almost identical twins, but not quite. One just slightly bigger than the other, but you are the bravest part of me. The older I get, you're not always first into the room, but sometimes, if I give you the support you need, you'll be first into the room. You're close to my heart, and I love you. My name is Ursula Carlson, and this is a love letter to my breast.
7: Get to know yours, visit breastcancerfoundation.org.nz.
8: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes, so eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
9: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
10: Elite Bathroomware help you create a bathroom you'll love.
11: With a huge range of vanities, tapware, showers and baths, Elite Bathroomware makes it easy to compare, choose and customise.
10: The team's there to help with plenty of options to suit your bathroom space, your style and your budget.
11: For quality that fits the way you live, browse online or visit the spectacular Allens Road East Tamaki showroom. It's worth the visit.
10: Elite Bathroomware.
11: A reflection of you.
12: Fly direct from Auckland to the Gold Coast with Qantas from June 16. From sun-soaked beaches and luxury retreats to world-class waterfront dining and lush hinterland escapes, find that holiday feeling in the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and 30 kilos of checked baggage included when you fly with Qantas. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply. Schedule subject to change.
13: Pacific Electrical Services presents Javed Ali, live in Auckland performing his blockbuster hits and a special tribute to the legendary Muhammad Rafi Saab in Rafi Aur Main, promoted by Star Alliance Entertainment at Victory Convention Center, 8th May, 7 p.m. onwards. Proudly supported by Key Contractors. For tickets, visit staralliancentertainment.com or call Edwin on 0211 3821.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 22 minutes after 9 o'clock on The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Hum playing Bollywood's biggest hits. Ek message hamare paas aaya hai abhi subah subah. तो इन्होंने कहा है कि राम राम, आज पत्नी घर से काम कर रही है और रोवर पर प्रोग्राम सुन रही है, उनको विश कर दो, आज वर्क फ्रॉम होम कर रही है। तो ये मैसेज जो है प्रीतेश की ओर से आया है उनकी पत्नी शालीन के लिए।
3: अच्छा,
2: बट मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, उनकी पत्नी घर से काम कर रही है, ये तो ड्राइविंग करती है, घर से ड्राइविंग कैसे कर रहे हैं?
3: तो ये थोड़े ना घर से काम कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं घर से काम कर रहा हूँ, उन्होंने बोला पत्नी घर से काम कर रही है।
2: हाँ, तो इनको कैसे पता कि पत्नी घर पर रोवा पर सुन रही है?
3: उन्होंने बताया होगा क्या हस्बैंड वाइफ के बीच में? हम एक बात मैं आपको बता दूं, शायद हम और आप एक दूसरे से बातें नहीं करते होंगे अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी डू, दिस इज आवर प्रोफेशन। प्रोफेशन के साथ आई मीन रिलेटेड बातें हम कर लेते हैं ना, काम कर लेते हैं, वही बात आप करते हैं। उसके अलावा आप शायद आफ्टर आवर्स अपनी पत्नी से उतना बात नहीं करते, बाकी लोग करते हैं। जो हस्बैंड्स होते हैं वो दिन में तीन तीन चार चार बार अपनी पत्नियों को कॉल कर पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपका दिन कैसा जा रहा है, क्या खाया। हाँ, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा अलग है। आई गिव अ कॉल एंड माय आई आस्क माय हस्बैंड की व्हाट्स हैपनिंग, लाइक काम कर रहा हूँ, मीटिंग में था। दिस रिएक्शन इटसेल्फ मेक्स मी फील लाइक कि अब नहीं कॉल करना मुझे। तुम बाकी करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, तो इन्होंने शायद कॉल किया होगा अपनी पत्नी को,
2: शायद कॉल किया होगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।
3: पर मेन मुद्दा ये है कि उनकी पत्नी शालीन के लिए एक अच्छा सा गाना बजाना है जिसकी रिक्वेस्ट प्रीतेश ने की है। तो शालीन, हम आपको अगले इस गाने में याद जरूर करेंगे आपके हस्बैंड प्रीतेश की ओर से खास तौर पर। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू हम ऑन रोवा।
2: हाँ, और अगली बार जब वो घर पर हो तो आप ये गाना चलाएं और उनको नचाएं। Just imagine Pritesh dancing.
3: You know Pritesh, others don't know him. They can't imagine. Anyways, तो 24 minutes after 9 for now, और Flyaway Frenzy का count तो हमने बता दिया है, जिन लोगों ने note कर लिया, good on you. Hopefully आप within time limit इसे enter कर देंगे। अब opportunity आपको हम देना चाहते हैं हमारे साथ होकर Mother's Day competition में भाग लेने का। सबसे जरूरी बात, आज का final chance है ये, because
2: the on the breakfast show.
3: On the breakfast show, yes, sorry to make things very clear. On the breakfast show, final chance, because the draw is happening tomorrow on the breakfast show. So, इस वजह से हम कल breakfast show में कोई entry नहीं लेंगे. This is the final entry we are taking on the breakfast show. Mum's mood swings on Mother's Day special. हम पर, yeah, on हम Mother's Day special. तो आपको क्या करना है? हम आपको एक scenario देंगे और आपको उस scenario पे अपनी mummy का reaction predict करना है. If you can predict it and enact it in the very same way जैसे आपकी mum react करेंगी on that particular scenario, आपका नाम हम draw में शामिल करेंगे।
2: तो आज का scenario बताइए जल्दी से।
3: Right, आज का situation. But this is a very hilarious one, okay?
2: हाँ, okay.
3: And it has happened with me like so many times.
2: Okay.
3: So many times.
2: Okay.
3: तो आज का सिचुएशन ये है कि आप अपने कमरे में हो, आई एम ट्राइंग टू पुट इट इन अ वे कि जैसे मैं मेरे मुंह से वैसा ना निकले जैसे कि निकलता है ना अक्सर। सो आप अपने कमरे में है, मम्मी इज इन द किचन, शी नीड सम हेल्प एंड शी गोज लाइक कि आपका नाम बुला रही है, जो भी नाम है आपका, चलो चाहे आपको बुला रही है ना, आप ऐसे इमेजिन कर लो कि आपका नाम है, वो लेकर बुला रही है आपको, बंटू। एंड आप अपने कमरे से बोल रहे हो जी, एंड फिर वो चुप हो जाती है, यू नो, एंड जी गोज अगेन बंटू, एंड यू लाइक जी, एंड फिर वो चुप हो जाती है। तो तीसरी बार वो एकदम गुस्से में आपको बुलाती है, एकदम लाइक लिटरली इन वेरी एंग्री वॉइस ना।
2: ओके,
3: हां, वो मैं नहीं बोल सकती, अदरवाइज माइक मेरा जो है इसमें बहुत गंदा इको आएगा। एंड देन यू लाइक जी व्हाट हैपेंड, एंड देन आप बाहर आते हो कमरे से, एंड आप किचन में जाकर अपनी मम्मी के सामने खड़े होते, यू लाइक मम्मी आपको जैसे देखती है, एंड चीज लाइक मैं इतनी देर से बुला रही हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, एंड यू ऑन द अदर हैंड आर स्टैंडिंग देयर कि अरे इन्होंने बोला मैंने तीन बार जी तो बोला, तो आप उनको वही बोल रहे हो कि आपने बोला मैंने हर बार आपको रिप्लाई किया। अब उसके बाद मम्मी क्या बोलेंगी या मम्मी क्या करेंगी?
2: हाँ, अच्छा, उसके बाद मम्मी क्या बोलेगी ये आपको रिएक्शन देना है अपनी मम्मी के स्टाइल में। टाइम का ख्याल रखें और जल्दी से कॉल करें 0800 004 8 866 इस नंबर पर आपको कॉल करना है और अपना रिएक्शन जो है ये देना है. और आपका स्वागत है. गुड मॉर्निंग. हेलो.
4: गुड मॉर्निंग जी, अपिंदर बात कर रहे हूँ.
3: क्या नाम बताया जी अपना?
4: अपिंदर.
2: ओके.
3: हाँ जी अपिंदर.
4: आपकी मम्मी तो फिर भी टर्न करके देख रही है. हमारे वाली तो पूरा जैसे वो होता है ना बेलन उठा के बोलती थी, पहले क्यों नहीं सुना था.
3: ये हुआ है मतलब आपके साथ?
4: आते हो घर में खाना खाने के लिए, अपने रूम में बिजी हो जाते हो, कोई आके रसोई का हाल भी देख लो, कोई वेट कर रहा है, आवाजें लगा रहा है.
3: अच्छा अपिंदर, ये आपके साथ हुआ है पहले?
4: हमारे साथ भी होता है और मैं अपने बच्चों के साथ करती भी हूँ.
3: कितनी खुशी के साथ बता रही कि मैं अपने बच्चों के साथ करती भी हूँ.
4: यार बच्चे सुनते ही नहीं है, हम भी नहीं सुनते थे जब आप छोटे थे.
3: That's the thing, जो बचपन में हमने किया और हमारी मम्मियों ने हमारे साथ किया, मम्मी बनने के बाद वो बदला अपने बच्चों से हम निकाल रहे हैं.
4: नहीं नहीं, ये बात मैंने सीखी है कि माँ बनना बहुत मुश्किल है. जब हम बने हमें अब पता लगा. क्योंकि तब हम सोचते थे कि यार मम्मी पागल है कि सुबह से लेके शाम तक काम ही ढूंढती रहती है, काम ही नहीं खत्म होते, ये हमेशा काम में बिजी रहती है. जब हम माँ बने अभी पता लगा यार सुबह से शाम तक काम ही नहीं खत्म होते.
3: ट्रू. थैंक यू अपिंदर.
2: हाँ हाँ बिल्कुल, आप बोल रही है तो सही बोल रही होंगी ना.
4: हाँ लग रहा है ये लोग क्या समझे कि उनको तो काम दिखता ही नहीं है.
2: हाँ हमको क्या काम दिखेगा,
4: उनके सामने काम होता है फिर भी वो आंखें बोल रहे नहीं नहीं घर साफ है, कुछ जरूरत ही नहीं है.
3: अभी नहीं, एक वो भी है कि आप बोलो ये कर दो तो बोलते हैं अभी करता हो, और वो अभी करता हो एक हफ्ते तक चलता है,
4: वो करता करता करता ही रह जाता है.
3: हाँ ट्रू. सी चलो बातें कर रहे थे मम्मी के बारे में, वहां से हस्बैंड पे कब आ गए पता भी नहीं चला.
4: थैंक यू,
2: टेक केयर, बाय बाय. तो आज अपिंदर का नाम हम ड्रो में शामिल कर रहे हैं. थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए. और बाय द वे आज फाइनल डे है फेसबुक पेज कंपटीशन में भी हिस्सा लेने का. अपनी माँ के लिए एक बढ़िया सा वाउचर बनाएं और जाकर उसे पोस्ट कर दें जो कमेंट सेक्शन है कंपटीशन पोस्ट के उसमें, ताकि आपका नाम ड्रो में शामिल हो सके. सो टोटल ऑफ $800 का ड्रो कल होगा, किसी के हाथ $200 लगेगा सोशल मीडिया कॉम्पिटिशन में, और लाइव होने या कॉम्पिटिशन में $100, $200 और $300 कैश जीतने का मौका आपके पास है. सो मेक श्योर यू गेट दैट डन as quickly as possible. By the way, ये अगला जो गाना है, so मैं भूल गया था ना, just to remind कि शाइलिन को next time या फिर आज आपके driving के बाद
3: message के हिसाब से ये गाना प्रितेश ने शाइलिन के लिए dedicate किया है.
2: हाँ तो अब शाइलिन खुश होगी जब प्रितेश घर आकर इस गाने पर नाच के
3: दिखाएगा.
2: हाँ dance करके दिखाएगा.
3: Very nice. Bollywood's most wanted. गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ. मैं लाऊं अपना A game. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: किधर है?
1: अभी बताया तो फ्लाइट चप्पल कंफर्म है।
2: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? From broken flower vases to लौकी की सब्जी experiments, guess कीजिए मम्मी का मूड और जीतिए ढेर सारा कैश। हम पेश करेंगे quirky scenarios on air और आपको बताना होगा मम्मी चिल करेगी या हिल करेगी। Guess and enter the lucky draw to win big cash prizes. तो तैयार हो जाइए for the ultimate game show, Mom's Mood Swings on Hum. Brought to you by Indelible Homes, PFSL, Amma's Food and Malabar Gold and Diamonds.
3: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number यार।
4: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
6: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.

0: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
1: Flooring Extra. Adore your floor.
2: The Vibe Mix Events presents
3: the Grand Musty Night in conjunction with Freight and Cargo Brokers, Lowfinity in Wicked Chicken, Botany Downs on 23rd May at Manurewa Netball from 6 p.m. Show featuring comedy, dance and giveaways with stars Satya Anand, Jay Bhaiyaji, Rowdy Naman Chapar alongside Money, Monto, Aku and Ketan. Tickets available at Get Fresh Mingri, Jay's Fresh Mart, The Agenda, Hunter's Food Town, Kes Manurewa and Wicked Chicken, Botany.
2: Don't miss out.
4: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: And then Mrs. Singh se maine pucha, enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho? Boli, bas, mera focus hai.
6: Achha?
5: Batao, toada focus, saada kuch nahi.
6: Shh, Mrs. Singh.
7: Arre Pammi ji, mera focus means mere ghar ka kitchen, jisko design kiya hai Focus Kitchens ne.
8: Modern classic shaker style kitchens, Focus Kitchens, Unit K, 33 Wansley Road, Otahuhu. Call 09281-3050 or visit focuskitchens.co.in.
9: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? Switch to Leap Motor C10 और B10 Ultra Hybrid और Electric. सिर्फ 44,990 plus on road से शुरू. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane और Botany. T's and C's apply.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
11: What's going on?
12: 18 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. बाय द वे, याद रखें अब धीरे धीरे वो समय भी आ रहा है जब रोवर पर चैटल भी खत्म हो जाएगा और आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं टू विन $100 कैश ईच वीक ये भी खत्म हो जानी है.
13: तो ये याद रखिए आप कि आप अभी इससे फायदा उठा सकते हैं बिकॉज राइट नाउ इट्स हैपनिंग फॉर यू एंड राइट नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट एंड विन $100 ईच डे. अ टोटल ऑफ $7,000 जो कि जीतने का मौका है. वी बीन टेलिंग यू दिस. जस्ट ओपन योर रोवर ऐप, विन टैब पर आप क्लिक करोगे, वहां पर चैनल आप क्लिक करोगे एंड देन यू हैव टू प्ले दिस कीवी विजिट बोर्ड गेम विच इज बेसिकली यू हैव टू गो देयर. और जो भी कीवी वर्ड हो, सेइंग हो, फ्रेज हो, ये आपको क्रैक करना है. उसका क्या मतलब है ये आपको बताना है. इंस्टेंटली जैसे सवाल देखा वैसे जवाब दिया, ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. बिना किसी हिंट का इस्तेमाल किए जवाब दिया, ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस मोमेंट. एंड ऑन द अदर हैंड आज है 7th ऑफ मई, थर्सडे 7th ऑफ मई. टुमारो

0: is Friday 8th of May aur kal hone ja raha hai the very beautiful amazing Rafi aur Main timeless classics of Mohammed Rafi by Javed Ali. Star Alliance Entertainment aapke liye lekar aa rahe hai, which is being presented by Pacific Electrical Services aur aapke paas ye mauka hai to be swept away by the magic magical melodies of Rafi sahab. वो भी बहुत ही खूबसूरत और सेंसेशनल वॉइस जावेद अली, इनकी आवाज़ में ये खूबसूरत सा शो जो है ये आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। हमने आपको पहले भी बताया है कि इससे पहले भी ये सोल्ड आउट शोज जो है ये कर चुके हैं अपने इस टूर के दौरान। ही हैड अ ब्रिस्बेन शो विच वाज सोल्ड आउट, देन ही वेंट टू सुवा इन फिजी एंड ही हैड अ सोल्ड आउट शो देयर एज वेल, एंड दिस इज हिज थर्ड शो। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये अपना शो लेकर आए हैं टू न्यूजीलैंड and he deserves this amazing welcome because itne kamal ke kalakar hai ye. Tickets are starting from just $59. On site parking bhi yahan par available hai, food stalls bhi rahenge, you can be at Victory Convention Center tomorrow aur aap enjoy kar sakte hain is mazedar performance ko, is beautiful evening ko aur show ka maza jo hai aap utha sakte hain. Javed Ali ke fan hain, unke awaaz ke fan hain to unka andaaz enjoy kar sakte hain live. StarAllianceEntertainment.com ये आपको विजिट करना है टिकट्स बाय करने के लिए।
1: जल्द से जल्द अगर कुछ बाकी टिकट्स हैं तो ये आप ग्रैब कर सकते हैं फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो कल आपको मिलने वाला है। अभी 9:45 बज रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, इनके बारे में डिटेल्स वगैरह जो है ये हम आपको ऑन द शो देते रहते हैं। खबरें भी बहुत सारी हाथ लग रही हैं और जो नए सिटीजनशिप टेस्ट हैं इनको लेकर प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने इन टेस्ट्स का बचाव किया है, डिफेंड किया है और नेक्स्ट ईयर, लेट नेक्स्ट ईयर से इनफैक्ट सिटीजनशिप एप्लीकेंट्स जो हैं उनको क्विज किया जाएगा, पूछा जाएगा अबाउट ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ बीइंग अ सिटीजन एंड यू विल नीड टू गेट 75% ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट। कई चीज़ें जो हैं ये इसमें शामिल होने वाली हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, एक स्पेशल जो अवार्ड्स हैं ये होता है जिसके लिए अब नॉमिनेशंस जो है ये इनवाइट किए जा रहे हैं और इन के बारे में डिटेल्स जो है ये कल ऑन द शो आपको हम ज़रूर देंगे।

0: आज की दो बातों का वक्त हो चुका है। हर दिन ऑन द ब्रेकफास्ट शो जाने से पहले ये दो बातें होती हैं और हो सके तो इन बातों का आप पर कुछ असर होता हो या फिर आप ऐसे ही सुन रहे हो असर नहीं होता हो, लेकिन हमारी कोशिश तो ये होती है कि
1: अच्छा सीख आपको मिले ना उससे।
0: यस, आज की पहली बात, शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो।
1: अच्छा।
0: हाँ, अगर शांति चाहते हो। दूसरी बात, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है।
1: Then?
0: समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है।
1: वेरी नाइस।
0: हो गया?
1: नहीं, मैं थोड़ा ऐसे गुम हो गई थी ना, बिकॉज आपकी दो बातें होती बहुत अच्छी है और कभी कभी बहुत सी चीजों पर यू नो सोचने पर भी मजबूर कर देती है। एंड वी होप इन अ गुड वे आपको ये चीजें सोचनी पड़ रही हैं। चलिए इन बातों के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत, जाने की अपना अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात अब ये तो होगी कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए अपना अपनों का ख्याल रखिएगा।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: May month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. Cooking ka asli flavor chahiye? Switch to Kashish Foods ginger garlic paste, freshly ground in New Zealand, bina added chemicals, bina preservatives and vinegar free. Sirf clean, natural taste, bilkul ghar jaisa. Ginger ho, garlic ho, ya perfect combo, har dish banegi full of flavor. Aur haan, buy any Kashish dosa batter, any size. Aur pao, 250 grams ginger garlic paste, bilkul free. Limited time offer, 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
3: Tiger Bar and Restaurant in Soho Hotel Mount Roskill. Aaye aur enjoy kare inka sophisticated dining experience jahan par aapko tarah tarah ke flavors milenge. Creative Asian fusion dishes se lekar zesty seafood tak, saath mein refreshing cocktails, sab kuch ek bahut hi elegant aur stylish andaaz mein. Ye open hai for breakfast, lunch and dinner. Close to Auckland CBD and minutes away from the airport. Tiger Restaurant Bar in Soho Hotel, Stodart Road, Mount Roskill. Visit Tiger at soho.co.nz.
4: Join the Great Big Balance Check at New World. Whether it's treating yourself to a chocky bar or treating the whole fam to dinner, you could have New World dollars waiting to spend. Check your balance in the New World app or ask at checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
5: बॉस देखा है ना, अब घर से बाहर निकलो और विनर को लाइव देखो. मुनावर फारूकी आ रहे हैं ऑकलैंड विद हिज स्टैंड अप कॉमेडी शो धंदो.
6: छोटा तो मेरे को नहीं समझ में आता, तो मैंने अपने चाचा से पूछा, कुबुले कुबुले कुबुले क्यों होता है ऐसा तीन बार? तो मेरा चाचा बोलता है औरतों को एक बार में समझ में कहा आता है.
5: सैटरडे 23rd में ब्रूस मेसन सेंटर ताकापुना 7 PM onwards. बुक योर टिकट्स नाउ ऑन ticketmaster.co.nz.
7: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI, on your side.
8: Make your budget stretch further with Mitre 10. Freshen up the walls with Accent Interior Paint 10 litre, now $119. Plus get 20% off assorted Nuvo tapware. T's and C's apply. Grab these great deals and more in store or online at Mitre 10.
0: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. A survey by Youthline on the state of young people is raising some alarm bells. Just over half say they feel positive most days. CEO Shay Ronald says some groups are worse off than others.
10: Rainbow young people with disabilities, neurodiverse young people are experiencing higher levels of psychological distress.
9: Six of the country's major cycle trails are getting a big revamp. The government's investing $7.1 million into upgrading the trails, including Roxburgh Gorge and Manawatu's Mountains to Sea. A new $2 million snow factory at Coronet Peak has been called a game changer. The ski field looks like it'll now open 2 weeks earlier. Ski area manager Nigel Kerr believes it will pay off.
11: We're not just looking at one short-term opening. We hope to make this the go-to for years to come.
9: And Rural Women New Zealand has joined forces with a wider coalition to take pay equity concerns to the UN. A formal complaint has been filed asking the global body to investigate the government's law change. CEO Sandra Kirby says the women who lost their pay equity claims are still showing up and still waiting to be paid fairly. In sport, Football First and Paris Saint-Germain will meet Arsenal in the Champions League final at the end of the month. The French club, who are the defending champs, drew 1-1 with Bayern Munich today in the second leg semi-final in Germany to win 6-5 on aggregate. Football updates brought to you by Hisense. And the Black Caps welcome back pace bowlers Will O'Rourke and Kyle Jamieson for the upcoming Test cricket tour of Ireland and England.
12: Sport. Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: The highs of 21, overnight temperature of 16. Aaj ka focus bataya ja raha hai, partly cloudy day rahega, thode isolated showers expected hai. It feels like 20 degrees right now, 5:31 pm pe sunset bataya gaya hai.
0: Non-stop Bollywood.
14: Jo bhi karte shiddat ke saath karte
0: hain. Hum playing Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
15: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai
12: My Time with Kashika.
13: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में समय सुबह के 10:02 हो चुके हैं. आपका साथ निभाने के लिए मैं काशिका आ चुकी हूँ माय टाइम लेकर कशिश फूड्स के सौजन्य से 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा. वैसे आज ये एक फाइनल डे है जहाँ पर मैं एंट्रीज लेने वाली हूँ फॉर मदर्स डे, क्योंकि कल ये ड्रॉ होगा. लेकिन इससे पहले कि ये ड्रॉ हो, मैं चाहती हूँ एक आखिरी दाव आप ज़रूर लगाएं. वैसे एक दाव की बात करती हूँ तो मैं क्वेश्चन निकालूंगी थोड़ी देर बाद और आपसे पूछूंगी और आपसे इंटरेक्ट करने के लिए भी कहूंगी. बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो, आप जितने भी लोग रोवा के जरिए सुन रहे हैं तो रोवा पे कितने मल्टी स्टेशन अवेलेबल हैं और उसमें रोवा पे नंबर वन म्यूजिक स्टेशन पता है कौन सा है? हम रिवाइंड, जहाँ 60s और 70s के ट्रैक्स आप सुनते चले जा रहे हैं. इसके साथ नंबर टू पोजिशन पर है हम का 80s का जूक बॉक्स, जिसमें आप 80s के नॉनस्टॉप गाने सुनते चले जा रहे हैं. बहुत सारे और भी यहाँ पर आपको म्यूजिक चैनल्स हमारे मिलेंगे, चढ़ती कला, पीजी भजन, पीजी कीर्तन संग्रह, राहत फतेह अली खान. और साथ साथ जब बात कर ही रही हूँ आपको बता देती हूँ रोवा ऐप के बारे में. भाई रोवा ऐप के ज़रिए आपको एक चांस मिल रहा है, हमारे पास $7,000 है जो बांट रहे हैं. और ऐसे में अगर आपने अभी तक नहीं जीता तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है जहाँ पर एक कीवी वर्ड विजर्ड आप कुछ बन सकते हैं और कोई फ्रेज, कोई सेइंग, कोई भी वर्ड जो है कीवी का, वो आप बिल्कुल आप यू नो उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं. आपका नाम चला जाएगा ड्रॉ में, हो सकता है आप ये जीत जाएँ. भाई अगले घंटे के बारे में तो बताना ही भूल गई, हमका स्पेशल कोड वर्ड आपको मिलेगा अगले घंटे में, जिसके जरिए रोवा ऐप पर आप भाग ले सकते हैं इन ऑर्डर टू विन अ रिटर्न टिकट टू फिजी. क्या बात है, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा. फिलहाल एक गाना बजाती हूँ और उसके बाद मदर्स डे के लिए आपसे सवाल पूछती हूँ. बजाओ क्या,
0: बजाओ क्या.

0: Mother's Day Song, brought to you by
1: Indelible Homes, your building experts. Known for subdivisions, visit indelibleHomes.co.nz. BFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google BFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Centre.
2: तो भाई आखिरी दाव है, आखिरी बार है जब मैं आपसे इस गाने के बाद आपकी एंट्री लेने वाली हूँ। मुझे आपने सिर्फ ये बताना है कि आप अपनी मम का मूड चेंज करने के लिए ऐसा क्या करते थे या करते थी। बस एक चीज़ आपको जो शेयर करनी है उसके ज़रिए मैं आपका नाम ड्रॉ में डालूंगी, जो कल ब्रेकफास्ट शो में विजय एंड पूजा के साथ आप हो सकता है वो प्राइज कैश मनी जीत सकते हैं, 300, 200 and $100 कैश। तो ये मौका आप गवाइएगा बिल्कुल मत। तैयार हो जाइए बताने के लिए कि आपने अपनी मम का मूड किस तरह से चेंज किया। ओके, 0800 00 हम 0800 00 4866 पर आपको मुझे कॉल करना है, ठीक इस गाने के बाद।

0: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, आप ही तो नहीं।
1: एक बात तो है, माँ एक ऐसा मिरेकल है जो, क्योंकि कहते हैं ना कि जब भगवान या ऊपर वाला जब वहाँ नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे वो माँ को भेज देता है। हजारों गम हो फिर भी एक खुशी से मैं फूल जाती थी, जब हंसती थी मेरी माँ मैं हर गम को भूल जाती थी, है कि नहीं। और ऐसे में ही मैं चाहती हूँ कि अब मैं लाइंस खोल रही हूँ 0800 00, हम पर आप कॉल करें, अपना नाम रजिस्टर करें ताकि मैं आपको ड्रॉ में ऐड कर सकती हूँ। ये आखिरी मौका होगा। बताइए आप अपनी मम को किस तरह से उनका मूड चेंज, या जिसे कहते हैं ना गेम चेंजर होता है, वो एक चीज़ ऐसे करते हैं, वो क्या था, हमें आप ज़रूर बताइए। सो ये कल के दिन जो है ये ड्रॉ होने वाला है ब्रेकफास्ट शो में, और ये उनका मूड स्विंग आप बता सकते हैं मुझे कॉल करके। वैसे एक चीज़ और है, कल एक और ड्रॉ होने वाला है, वो है हमारे फेसबुक के पेज का। इस ड्रॉ में भी आप भाग ले सकते हैं, $200 कैश जीतने के लिए एक पर्सनलाइज वाउचर मम के लिए आप क्रिएट कीजिए, जिसके अंदर आप जो भी आपको ऐड करना है आप वो ऐड कीजिए, और अपना थॉटफुल टाइम जो है उनके साथ जो गुजारना चाहते हैं या उनके लिए बताना चाहते हैं बस उसे आप रेडी कर दीजिए। ओके, तो मैं पहली कॉल अपनी उठाती हूँ एंड देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पे है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, एफाज हैं आप राइट?
2: जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: मैं ठीक हूँ। मॉम के लिए आई वुड से के सबसे पहले तो मैं उनके लिए उनका कोई फेवरेट सॉन्ग प्ले कर दूंगा बैकग्राउंड में,
1: वाह,
2: और कुछ ऐसी पागलपन सी करूंगा जो, यानी जैसे कि कुछ भी, जैसे काइंड ऑफ मिमिक्री और समथिंग लाइक दैट।
1: अच्छा,
2: जैसे मैंने किया हुआ है, जैसे मिमिक्री कर दूं तो मेरी मॉम हंसती है, तो कभी ऐसे करता हूँ।
1: नाइस जी, नाइस, गुड वन,
2: या
1: ठीक है। एफएस, मैंने आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर लिया है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल,
2: थैंक यू,
1: टेक केयर, बाय। तो ये तो एफएस ने बताया, बट पता है मैं क्या करती थी, मैं भी मिमिक्री बहुत कर लेती थी, तो मैं क्या करती थी कि उनके साथ तरह तरह के फनी फनी सॉन्ग्स के ऊपर मिमिक्री कर करके उस पर इमिटेट करने की कोशिश करती थी। और ख़ास तौर पे जब मेरी बुआएं होती थी ना, मेरी बुआओं की नकल उतारना मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं अपनी बुआओं की नकल उतारती थी, तो उसके बाद वो फिर कि वो अपने भाई के साथ, मतलब मेरे फादर के साथ किस तरह बात करते हैं, तो भाई साहब ये भाई साहब वो करके मैं उनको करती हूँ, मम्मी एकदम से हंस पड़ती थी। तो मैं उनका मूड जैसे भी होता था, मूड स्विंग्स चेंज करने में मैं काफ़ी एक्सपर्ट थी इस मामले में। आप भी अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ मेरे साथ कॉल करके शेयर ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि अभी एफाज ने किया। तो आई एम वेरी श्योर आपके पास भी ऐसा कोई मोमेंट होगा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। दिस इज़ योर लास्ट चांस, आई कैन से दैट। अगर इस आखिरी दाव में भी आपने बाजी मार ली तो समझ लीजिए हो सकता है कल आपके लिए वो दिन बहुत ज़्यादा लकी हो जाए, है कि नहीं। और मैं चाहती हूँ सबके लिए मॉम्स डे जो संडे के दिन सेलिब्रेट होने वाला है, आप सबके लिए बहुत ही अच्छा रहे। अपने पेरेंट्स में अपनी माँ को क्या दर्जा देते हैं, बहुत बड़ा दर्जा होता है माँ का, सबको घर में ना इकट्ठा करके एक मुट्ठी में वो रख सकती हैं, सबको इकट्ठा करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। चाहे वो मम्मी अपने मायके की बात करें या वो मम्मी अपने ससुराल की बात करें, सबका बैलेंस बना के रखती थी वो हमेशा, है ना, है कि नहीं, ग्रेट चीज़।
3: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
6: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
5: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने,
6: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
3: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
7: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस, फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून,
3: वीकडेज 6 to 10 a.m.
8: Resene is New Zealand's most trusted paint brand, made in New Zealand for our unique conditions. Resene's quality, innovative paints and wood stains, plus the huge variety of colors, are ideal for homeowners and professional painters. Always choose Resene for your decorating projects.
9: What kind of businesses run on business fiber? Businesses with no time for downtime, businesses that could flatline when deadlines are missed, and businesses that simply can't afford to be offline. If you need fast restoration when there's a network outage, get your business running on business fiber.
10: टाइगर बार एंड रेस्टोरेंट इन सोहो होटल माउंट रॉस्कल आए और इंजॉय करें इनका सोफिस्टिकेटेड डाइनिंग एक्सपीरियंस, जहां पर आपको तरह तरह के फ्लेवर्स मिलेंगे, क्रिएटिव एशियन फ्यूजन डिशेस से लेकर जेस्टी सी फूड तक, साथ में रिफ्रेशिंग कॉकटेल्स, सब कुछ एक बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश अंदाज में। ये ओपन है फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, क्लोज टू ऑकलैंड सीबीडी एंड मिनट्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। टाइगर रेस्टोरेंट बार इन सोहो होटल, स्टोरा रोड, माउंट रॉस्कल। विजिट टाइगर एट soho.co.nz.
11: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
12: Indelible Homes, your building expert.
13: There are days when you nail parenting, but this isn't one of them. There's not even a single cherry tomato for their lunchbox. And is that a tumbleweed? Luckily, a DoorDash hero emerges. That's me.
14: Dash! Ah! Savior of the lunchbox!
13: Now the kids have a tasty lunch that you can totally share on the gram. With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
14: Dash!
15: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: माय टाइम विद कशिका ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स। ईट बेटर, लिव बेटर।
1: तो मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो लाइन पर आई मिस्ड अनदर कॉल, बट हेलो, गुड मॉर्निंग, किन से बात हो रही है?
16: मॉर्निंग कशिका जी, मेरा नाम रेनू है।
1: जी रेनू जी, बताइए।
16: तो मेरे मम्मा का मैं मूड इस तरह से ठीक करती थी कि वो लोग शाम को वॉक पे जाते थे, अगर गुस्सा है या कुछ है तो मैं क्या करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम चार भाई बहन हैं तो बर्तन ये सब, तो मैं क्या करती थी, बर्तन मार देने और रात का खाना प्रिपेयर करके रखना।
1: ओहो?
16: और जैसे ही वो आती थी वो बहुत खुश हो जाती थी क्योंकि मैं छोटे होते बर्तन बिल्कुल नहीं करती थी।
1: अच्छा।
16: मेरे को मम्मा मेरी जो है वो आटे की मशीन बोलती थी।
1: ओहो।
16: तो मुझे तो अभी जैसे कुछ भी होता है तो मम्मा बोलती है कि तू तो क्या बोलते है, तेरे पास तो मशीन है, तू आटा लगा। मैं कब कौन साफ करेगा उसके इतने सारे बर्तन तो मैं इसलिए खुद ही लगा लेती हूँ। तो कहती हाँ तू तो छोटे होते से ही आटे की मशीन है। तो बस तो फिर क्यों तो मैं ऐसा मतलब उनका हेल्प कर देती थी उन चीजों के लिए, तो मम्मा खुश हो जाती।
1: सो स्वीट, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। रेनू थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड मैंने आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर लिया है।
16: थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे
1: एंड हैप्पी मदर्स डे टू यू।
16: थैंक यू, यू टू, थैंक्स, बाय,
1: टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, बाय। तो ये तो मैंने रेनू से बात कर ली, इनका नाम भी मैंने ड्रॉ में ऐड कर लिया। अरे कॉल मेरी मिस हो गई थी, बट आई एम सो सॉरी, उस समय मैं शायद एक कॉल एक्स्ट्रा होगी, शायद उनसे बात कर रही होंगी या कुछ ऐसा होगा। सो आई मिस दैट कॉल, सो इन केस यू स्टिल वांट टू कॉल मी, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल मी। अदरवाइज मैं ऑफिस शाउट आउट देने के लिए भी तैयार हूँ। अगर आप 5599 पे मुझे टेक्स्ट करते हैं या फिर आप 800 हम पर कॉल करना चाहते हैं ऑफिस शाउट आउट देने के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम
17: ऑफिस शाउट आउट।
1: तो ये ऑफिस शाउट आउट हम माय टाइम और लंच बॉक्स के दौरान करते हैं, क्योंकि आप मोस्टली जितने लोग ऑफिस से हमें सुनते हैं, बिग थैंक यू टू यू, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का दुलार हमें इतना मोटिवेट कर देता है कि हम मन करता है चलो हम ये भी आपके लिए करें, आपके लिए ये भी ट्राई करें, ये भी ट्राई करें। सो दिस गोज विदाउट सेइंग दैट हाउ गुड यू नो वी फील जब आप हमें कहीं किसी जगह से आप हमें कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं। सो मेरे पास मैसेज आया हुआ है, ये क्रिस्टल्स क्या है, क्रिस्टल्स ही लिखा है। क्रिस्टल्स की टीम इस समय मुझे सुन रही है फ्रॉम पापा टोयोटा, थैंक यू वेरी मच। एंड चलिए अगला गाना मैं आपके लिए डेडिकेट कर देती हूँ।
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Wah.
1: How?
0: Adbhut.
1: Are you ready? Shockbusters.
2: थोड़ा तो हॉल बना दे.
3: एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ है. वेलिंगटन ज़ू में यू नो अनाउंस किया गया आज के द डेथ ऑफ खुशी द एल्डेस्ट रेड पैंडा जो वहाँ पर था उसका हेल्थ चेक फ्राइडे के दिन हुआ था. देयर वाज़ अ शार्प डिक्लाइन उनकी हेल्थ में और सोशल मीडिया का सहारा लेके ज़ू ने बताया है. उनको वेटनरी टीम ने बताया कि सेवरल हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे. उनके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो गया था. ओवरऑल उनका वेलफेयर अच्छा नहीं जा रहा था. बट शी हैड अ पीसफुल डिपार्चर. सो ये रेड पैंडा इनके पेल फेस और इनके ज़ू की कम्युनिटी के लिए बहुत ही एक खूबसूरत बहुत प्यारी मैं फ़ोटो देख रही हूँ. ब्यूटीफुल है. सो उनका काम नेचर जो है बहुत ज़्यादा मिस किया जाएगा. एंड ऑफ कोर्स रेड पैंडास विज़िट करते हैं जब ज़ू में और आते हैं तो चार चांद लगा देते हैं. तो वेलिंगटन सॉरी टू हियर दैट.

0: ईट बेटर लिव बेटर।
1: ईट बेटर लिव बेटर, और यही पैगाम हमेशा मैं आपको बताती हूँ और चाहती हूँ। आपका वेल बीइंग बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और जब मैं बातें इसके बारे में करती हूँ, एक चीज़ तो है वैसे आपकी कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में क्या क्या होता है, बहुत कुछ चलता है, लेकिन ऐसे में कभी भी एक ऐसा मौका हंसने का अगर आपको मिले तो छोड़िएगा मत। अब ये मौका आपके लिए 23rd ऑफ मई के दिन होने वाला है बाय नन अदर देन मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी जो हैं ये ऑकलैंड में पहली बार आ रहे हैं। अपनी ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग, इनका विट, इनका बिना किसी फिल्टर के ह्यूमर बहुत सुपर्ब है, और इस लाइव एक्सपीरियंस को आप अगर महसूस करना चाहते हैं तो ticketmaster.co.nz के जरिए आप जाके फटाफट टिकट खरीद सकते हैं। अच्छा, अगर ये इसका हमारे साथ आप भाग लेना चाहते हैं, टिकट जीतना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक के पेज पे आ जाएं, अपने किसी भी एक फ्रेंड को टैग करें, इंस्टेंटली आपके माइंड में जो भी आते हैं वो, वहाँ एक रील है, उस रील के नीचे आपको बस लिखना है। ये ड्रॉ 11th ऑफ मई के दिन होने वाला है, तो अभी के लिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जल्दी चले जाइए फेसबुक के पेज पर। बट मीनवाइल नाउ द टाइम हैज कम जहाँ पे मुझे आपको बताना है आपकी ड्रीम, कोई ड्रीम ऐसी है जो आपको लगता है आपको परेशान कर रही है, क्या है, चलो मुझे बताओ। 5599 पे कॉल करना है तो कॉल भी कर सकते हैं आप, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद मैं अपनी ड्रीम डायरी खोलने वाली हूँ।
0: May month is NZ Music Month. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग। Presenting Back Your Backyard Beats, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार। आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे। ट्यून इन करो और अपने बैक यार्ड

0: ऑफर्स आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट westcityautogroup.nz और सर्च फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
1: So you're trying to eat less meat, but you're no Jamie Oliver? Before you spend 45 minutes trying to make a can of lentils taste like dinner or turn a cauliflower into steak, listen to the sound of a BK plant-based Whopper patty sizzling on a flame grill. Mmm, smoky, juicy, and effortlessly tasty. Tofu? Burger King, king of plant-based. See burgerking.co.nz for details on our plant-based range.
2: At IKEA, turn clutter into calm. With our wide range of storage solutions. Because behind every mess, every avalanche of toys is a new possibility. Shop in store or at IKEA.co.nz.
3: IKEA.
4: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
0: अच्छा, ये Dream Diary में आप का text आया है and I am actually trying to find out to see कि क्या हो सकता है. तो आपने कहा आपके सपनों में पैसे आते हैं. Very often आपके लिए वो आता है. तो basically ये symbolize करता है क्या? अब ये अगर मैं देखूं तो मैंने इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है, तो इसमें बताते हैं आपकी पर्सनल पावर, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और आपका वर्थ. ये लिटरली अगर देखा जाए तो कैश आ रहा है आपके साथ, कैश ऑफ कोर्स, और ये अपॉर्चुनिटी आती है फॉर सक्सेस. और आप अपने आप को किस तरह से वैल्यू करते हैं, आपके पॉजिटिव इमोशंस जो है वो इंडिकेट करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है. और एक चीज़ और है, कभी कभी जब आप सपनों में देखते हैं आपका इमोशन बहुत मैटर करता है. एक जॉयफुल फीलिंग जो होती है ना, उसके साथ आप बड़े पॉजिटिविटी पाते हैं. एक सिंबल ऑफ पावर जो मैंने आपसे कहा ना कि जो पैसा होता है वो पावर भी लेकर आता है ना, तो एक पर्सनल पावर, एक वाइटैलिटी भी आपके लिए लेकर आता है. और कहते हैं ना कि ये पैसा कभी किसी के ज़रिए आता है, कोई स्पिरिचुअल अटेम्प्ट करता है कोई आपको पाथ में लेके जाने के लिए, तो हो सकता है कि कोई स्ट्रेंजर से आ रहा है, तब उस चीज़ के लिए हो सकता है. अगर आप किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस से अपनी ज़िंदगी में गुजर रहे हैं, जैसे कि कोई बिल्स पे करने हैं, कोई लोन है, ये ड्रीम्स आपकी एंग्जाइटी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट भी कर देती है. ऑलराइट, तो आज के लिए ड्रीम डायरी में बस इतना ही.
8: दिल से दिल तक.

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Bedzaras Manuko and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
5: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only, T's and C's apply.
6: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy two full price pieces and receive a third one free, just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May, in store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
7: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
8: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. A 30-year-old man has been charged with the murder of a couple in the Ruapehu district. Brendan and Trina Cole were found dead at their property in Ruatiti in December. Police are continuing to search for a semi-automatic shotgun that should have been at the property. There are calls for decisive action as the Climate Change Commission outlines 10 significant risks facing New Zealand. Its latest report has identified which areas need the most investment, with extreme weather set to worsen. Water infrastructure, biodiversity and local government costs have made the list, as well as buildings. More than 500,000 are already exposed to inland flooding. Relentless pressure is having a negative effect on young people. A survey of 12 to 24-year-olds has found it to be the most challenging issue they face today. Youthline CEO Shay Ronald said it is constant.
9: Parental and family pressures, pressures from social media in terms of comparing themselves with others, pressure from academic environment and schools.
8: And a group of so-called ISIS brides and their children are expected to land in Australia from Syria today. Police warn some of the group face arrest due to their ties to the terrorist group. In sport, an ideal first hit out for the White Ferns on their cricket tour of England. Not only did they beat a local selection by 18 runs in Durham, assistant coach Craig McMillan also got some valuable intel.
10: Because we play on the same ground on Sunday in the first ODI against England, so we now know the conditions.
8: And in football, Paris Saint-Germain will face Arsenal in the Champions League final after PSG drew 1-1 in the second leg semi with Bayern Munich today, winning 6-5 overall. Football updates brought to you by Hisense.
7: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
4: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
11: Suchit kiya chata hai ki Rakira ki Fiji ke swargiya Bechu Prasad ke putra Kamran चंद केव के पिता गो प्लेस द गार्डन्स के बॉब कृष्ण चंद की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 0219322666 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, सूचित किया जाता है कि राकिरा की फिजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के पुत्र कमरन चंद के पिता गो प्लेस द गार्डन्स के बॉब कृष्ण चंद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड क्रिमेशंस में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 0219322666 पर आप संपर्क कर सकते हैं। याला द्रो तावुआ के स्वर्गीय मुन सामी के पुत्र ऑकलैंड के शारदा मनी के पति रोनील कृष्णा पुजारी और मेलबर्न के शालिनी कृष्णा के पिता मानुरीवा के श्री कृष्णा हेरी की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे मैनकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 0210-292-6578 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुनने, यालाद्रो तावुआ के स्वर्गीय मुन सामी के पुत्र ऑकलैंड के शारदा मनी के पति रोनील कृष्ण पुजारी और मेलबर्न के शालिनी कृष्णा के पिता मानवी रेवा के श्री कृष्ण हैरी की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे मैनकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 02102926578 पर आप संपर्क करें।
12: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: अगर हम मौसम की तरफ देखें तो दी हाइज ऑफ 21, ओवरनाइट टेम्परेचर ऑफ 16 आज का फोरकास्ट बताया जा रहा है. इट फील्स लाइक 21 डिग्रीज राइट नाउ. पार्टली क्लाउडी डे रहेगा. शावर्स एक्सपेक्टेड है. 5:31 पर सनसेट बताया गया है.
0: माय टाइम विद कशिका ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स. ईट बेटर लिव बेटर.

पता नहीं मैं कहाँ से आ रही हूँ, बट मैं आ गई हूँ आपके साथ निभाने के लिए. 12 बजे तक आपका मेरे साथ बना रहेगा. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है तो मैं काशिका आपका साथ माय टाइम में देती हूँ 10 से 12 बजे, और ये मंडे टू फ्राइडे का सिलसिला आपके साथ चलता रहता है. वैसे इस घंटे पर मेरे साथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. एक तो पहली बात ये कि एक कॉन्टेस्ट में भाग लेने का मौका देना है. आरएनजेड म्यूजिक मंथ है और इसमें हम एक आर्टिस्ट को आपके साथ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, एक प्लेटफॉर्म हमने दिया है. अलॉन्ग विद दिस आई हैव टू टेल यू दैट फ्लाई अवे फ्रेंजी. अब ये फ्लाई अवे फ्रेंजी में मुझे आपको कोडवर्ड देना है ठीक अभी अभी. ऑलराइट, तो आज का मेरा जो कोडवर्ड है, माफी चाहती हूँ अगर मैं इसे ठीक से प्रोनाउंस ना कर सकूँ. वाकालोलो एक फ्यूजन डिजर्ट है जो कसावा से बनाया जाता है और कोकोनट क्रीम से. वाकालोलो. ओके, सो इट्स समथिंग लाइक वाहा इज लाइक फादर, इजंट इट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट आई कैन बी रॉन्ग. सो जस्ट टू लेट यू नो, हमारा आज का जो कीवर्ड है रोवा ऐप के जरिए, अ कोड वर्ड जो है वो आप एंटर करके अपना नाम ड्रॉ में ऐड कर सकते हैं. टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर समझ लीजिएगा. और हमारा आज का कोड वर्ड है वाकालोलो. इसको प्रोनाउंस तो मैंने सही किया ही, आई होप सो, लेकिन इसको स्पेल किया जाएगा VAKALOLO. वाकालोलो. तो ये मैंने आपको बता दिया है, दिस द वे यू प्रोनाउंस इट, बट द वे यू स्पेल इट इज VAKALOLO. टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर 1 आवर. बचाओ क्या?

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जोगी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: सेलिब्रेटिंग एनजेड म्यूजिक मंथ
3: पैक योर बैकयार्ड बीट्स.
4: तो बैक योर बैकयार्ड बीट्स में आज जो हमारे साथ हमारे न्यूजीलैंड के कलाकार हैं, इनका नाम है योगी. ये फगवाड़ा पंजाब इंडिया से बिलोंग करते हैं, अब ये न्यूजीलैंड में हैं. योगी बड़े मल्टी टैलेंटेड सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, कंपोज़र हैं, और काफ़ी अच्छे लिरिक्स जो होते हैं इनके कॉम्पोजिशंस के साथ. ये नरेट करते हैं कल्चरल फ्यूजन, एक पर्सनल एवोल्यूशन और एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. वाकई ही कमाल है. तो चलिए आपको मैं बता देती हूँ कि इनका गाना मैं प्ले कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये टॉप थ्री में आए तो आपको 5599 पे MM लिखने के बाद उनका नाम लिखना है और अब उनकी डिटेल भेजना है. साथ साथ इनके हमारे सोशल्स पर आकर इनका कोई फेवरेट वीडियो है उसको लाइक कमेंट और शेयर भी आपको करना है. विनर की जो इंगेजमेंट होगी, टोटल इंगेजमेंट आपके वोट्स के ज़रिए सोशल मीडिया पे आप जो प्यार देंगे उनको, तो समझ लीजिए उसी के ज़रिए ये डिसाइड होगा कि ये टॉप थ्री में पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं. वेल, इनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग रहने ही रहने वाला है. बट अगर आपको लगता है कि आप भी बहुत अच्छा गा लेते हैं, आपका खुद का एक बेस्ट ट्रैक है, बायो के साथ आप buzz@hamfm.com पर हमें भेज सकते हैं.

0: Matter. हम कई बार अपने ग्रोसरी के आइल्स में जब जाते हैं ना, तो हम एक चीज़ नोट करते हैं, जब खास तौर पे हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं और जब हम ग्रेप्स की बात करते हैं या अंगूर की बात करते हैं, तो बायोलॉजिकली ये काफ़ी देर तक फ्रेश रहते हैं, बिकॉज ये सोते नहीं, ये ऑक्सीजन पे ब्रीद करते हैं एंड दे ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जस्ट लाइक अस. अच्छा, ये प्रोसेस इतनी अच्छी होती है जब हम इसके राइप हो जाते तो उनका वाइन बनता है या जो भी कुछ होता है, बट इनकी शुगर जो होती है, एसिडिटी कम होती चली जाती है, शुगर बढ़ती चली जाती है और इनका जो रेस्पिरेशन है ये कंटिन्यूड रहता है. और इन्हें ग्रेप्स जो होते हैं या अंगूर जो होते हैं, इनमें 80% पानी होता है, सो नेचुरली इनके अंदर मॉइस्चर अच्छा होता है. अगर आप इसे एयरटाइट बैग में डाल देंगे तो आप समझ लीजिए कि ये ख़राब हो जाएंगे. लेकिन जब आप इन ग्रेप्स को उठाते हैं, आप नोट करते हैं कि वो वाली जो थैलियाँ होती हैं जिनमें ये पैक होते हैं, उनमें ज़रूर छोटे छोटे होल्स होते हैं. अब ये होल्स होते हैं बिकॉज दे नीड वेंटिलेशन एज वेल लाइक अस. अभी इनको ये हवा चाहिए सर्कुलेट करने के लिए, वरना ये ट्रैप हो जाते हैं. अब ये ट्रैप हो जाते हैं तो ये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, इनमें मोल्ड आ जाता है, इनमें बैक्टीरिया आ जाता है और ये ग्रेप्स खाने लायक ही नहीं रहते हैं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आप नोट करते हैं ग्रेप्स को हमेशा एक जो भी हो छेद हो वाले जो थैलियाँ होती हैं उनमें आप पाएंगे तो डेफिनेटली यू विल से ओके गुड दे आर ब्रीदिंग. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे पता चली तो मैंने कहा आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अपनी किचन में भी अगर आप जब रखते हैं, आप चाहते हैं कि ये अच्छे से रहें, तो डोंट वॉश देम अंटिल यू ईट देम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इनका ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं जब ये पानी के आसपास आते हैं, तो इसलिए इनको अगर आपको रखना है किसी एक एयर ड्राई जगह पे रखें, ठंडा रखें और ड्राई रखें, दैट्स अबाउट इट. और एक अच्छा सा क्रिस्पी कॉर्नर ढूंढ लीजिए फ्रिज में जहाँ पे इनको आप रख सकते हैं, इससे इनकी ह्यूमिडिटी जो है बनी रहती है और ये काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं और धीरे धीरे ये अपने साथ रेस्पिरेटरी जो इनका एक सिस्टम है उसमें ये फॉलो करते हैं. ओके, आई नेवर न्यू दिस.
1: बेटा मेरा फोन किधर है?
2: अभी बताया तो फ्लाइट चप्पल कंफर्म है.
3: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? From broken flower vases to Loki ki sabzi experiments, guess kijiye mummy ka mood aur jeetiye dher sara cash. Hum pesh karenge quirky scenarios on air aur aapko batana hoga mummy chill karegi ya kill karegi. Guess and enter the lucky draw to win big cash prizes. To taiyar ho jaiye for the ultimate game show, Mom's Mood Swings on Hum. Brought to you by Intellible Homes, PFSL, Amma's Food and Malabar Gold and Diamonds.
4: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz.
5: Bunnings Trade is here to help you get set for winter with 134 Trade. For quick quotes and pricing, stock queries, order and delivery updates, and general inquiries, contact the 134 Trade team today on 0800 134 872. Bunnings Trade, helping business is our trade.
6: वो Indelible Homes वाली कहानी सुनाओ ना.
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
8: And award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
9: Kahani of Indelible Homes.
10: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tire pressure regularly and lighten the load like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
11: Pacific Electrical Services presents Javed Ali, live in Auckland performing his blockbuster hits and a special tribute to the legendary Mohammed Rafi Saab in Rafi Aur Main, promoted by Star Alliance Entertainment at Victory Convention Center, 8th May, 7 PM onwards. Proudly supported by Key Contractors. For tickets, visit staralliantsentertainment.com or call Edwin on 0211-382184.
12: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
13: हाँ। अच्छा
12: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
13: मिसेस सिंह,
14: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
15: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
16: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
0: ओहो, माइक ऑन नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं। देखो, वैसे आपकी कम्युनिटी में क्या खास हो रहा है बताइएगा, सिक्स वर्ड स्टोरी अगर आपकी तैयार है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन वैसे कल आप तैयार हैं, मैंने कहा चैरिटेबल क्लब और भक्ति सत्संग बॉयज़ आपके लिए भक्ति कीर्तन संध्या लेकर आने वाले हैं। ये $20 की टिकट है। देवन नाथ और नितिन नीलेश आपके लिए परफॉर्म करेंगे 7 बजे कल शाम से दोपहर रात 12 बजे तक ये परफॉर्म करने वाले हैं। इसी के साथ साथ ये होगा वैदिक सेंटर पापा टोयटोय में। 17 मई के दिन होने वाला है भोजन मेला। श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत टेंपल का प्रोजेक्ट, जो कि बनने वाला है एट 378 आरारीमू रोड, अरामारामा, साउथ ऑकलैंड में। और ये 11 से 4 बजे तक होगा संडे 17 मई को। एंट्री फ्री है, खाना फ्री है, सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्री हैं, खाने पीने के स्टॉल्स तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्वेलरी और शॉपिंग करने के स्टॉल्स भी आपको मिलने वाले हैं ना। पेंटिंग, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल बच्चों के लिए भी सब कुछ एकदम तैयार है। नॉट टू फॉरगेट 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे, ये 16 मई को होने वाला है द मलायोला कम्युनिटी सेंटर, 4:30 से 8:30 बजे। ये भी एक फ्री इवेंट है जहाँ पर आप पहुँच सकते हैं नेटवर्किंग करने के लिए, चाय और नाश्ते के लिए। फिजी गिरमिट फाउंडेशन NZ के जरिए आप पहुँच कर वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी पा सकते हैं। ओके, सो हियर वी गो, सिक्स वर्ड स्टोरी। मेरी आज की सिक्स वर्ड स्टोरी रेडी तो ऐसे नहीं है, बट मैंने कहा माय टाइम विद कशिका एवरी वीकडे, एक्चुअली माय टाइम विद कशिका एवरी वीकडे। तो मेरा सिक्स वर्ड का स्टोरी आज मेरी ये है। अगर आपके पास कोई सिक्स वर्ड की स्टोरी है ज़रूर बताइए, लेकिन साथ साथ रेस्क्यू मी रिसाइकिल मी में भी मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपके पास कोई टिप है तो डेफिनेटली। हाँ, रितु एंड साथ साथ 9702 ये फाका लोहलो जो मैंने आपको अभी के लिए दिया है, ये फ्लाई वे फ्रेंजी का, यू डोंट हैव टू डू इट ऑन द टेक्स्ट, यू हैव टू एक्चुअली गो ऑन द रोवा ऐप। रोवा ऐप पे जब आप जाएंगे तो ये आपको कोड ऐड करना है और फिर अपना एंटर करना है नाम। ऑलरेडी 24 मिनट्स निकल चुके हैं, 20 मिनट्स के करीब निकल चुके हैं। सो जल्दी जाइए, रोवा ऐप के जरिए जाइए और एंटर कीजिए।
16: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

याद रहे कि कल विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में जावेद अली का शो होने वाला है। $59 की बहुत ही कम टिकट्स बची हुई हैं। स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट .com के जरिए आप जाके टिकट्स खरीद सकते हैं। और स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट आपके लिए पहली बार पैसिफिक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज के साथ जावेद अली को लेकर आ रहे हैं, जो कि ट्रिब्यूट देने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब को। और इसके साथ साथ ये जो है अपने कमाल के गाने भी गाने वाले हैं। सो जाइए फटाफट जाके टिकट्स खरीद लीजिए। लास्ट फ्यू टिकट्स आर लेफ्ट।

0: Klassiker.
1: Boah,
2: hau!
1: An Gott.
3: तो याद रहे कि आपके लिए आ रहे हैं हमारी सुपर सिटी में नन अदर देन राहत फतेह अली खान जी. अब ये आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए 25 जुलाई को ट्रस्ट अरेना में, और साथ साथ एक रेयर म्यूजिकल एक्सपीरियंस जो होता है, आप इन्हें फिर से देखना पसंद ज़रूर करेंगे. तो जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, साथ साथ ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस, शहजादा प्रोडक्शंस आपके लिए लेकर आने वाले हैं राहत फतेह अली खान जी. इसका एक डबल पास जीतने का बड़ा सुनहरा मौका है, जहाँ पर मैं गाने को स्टार्ट में मैं प्ले करूँगी. अब आपको इसे कंप्लीट करना है, ठीक है, कि ये लाइन आगे क्या थी या वर्ड्स आगे क्या थे. 5599 पे RF के शॉर्ट फॉर्म ऑफ राहत फतेह खान, फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान का RFK आपको शॉर्ट फॉर्म जो है कीवर्ड में लिखना है. और उसके साथ साथ आपको फिर क्या करना है, अपना नाम लिखना है, गाना अगर कंप्लीट करना है आपको, और फिर नाम लिखना है, एंड आपका नाम रॉ में चला जाता है. 5599 पे डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं. तो मेरा गाना आज का तैयार है, एंड लेट्स सी इफ यू आर रेडी विद इट. ओके,

ओके सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ कि आपने गाने को कंप्लीट करना है. फिर भी मैं आपके लिए एक बार और अगर बोले तो मैं इसे प्ले कर देती हूँ.

0: I think each one of us loves this song and definitely उन्हें लाइव परफॉर्म करते हुए देखने में बहुत ही खूबसूरत मजा आने वाला है. dryTickets.com के जरिए टिकट्स भी आप जाकर खरीद सकते हैं. Your time starts now.
1: Bro, look at you. Blue light screen को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा. और ये कॉफी lukewarm. A taste बिल्कुल heartbreak जैसा. Please sir, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए.
2: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
3: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रेजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री. सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा. जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर. और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री. लिमिटेड टाइम ऑफर 31st मई तक. कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर.
4: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: हम सब चाहते हैं कि रिसाइकल सही तरीके से हो, तो याद रखिए, प्लास्टिक बैग, ड्रिंक कार्टन्स और पुराने लैपटॉप अपने रिसाइकल बिन में मत डालिए. रिसाइकल सही करें, ये आपके हाथ में है. सर्च ऑकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमाकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ऑकलैंड.
6: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
7: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
6: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
8: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
9: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
10: Rescue me, recycle me.
0: So, जो mesh के जो bags होते हैं ना, इनको आप suppose करो आपने वेस्ट हो रहा है आपका कुछ, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं एज स्क्रबर्स. जो पॉट्स होते हैं तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. या जो एक फ्लावर फ्रॉग होता है ना, जब फ्लावर अरेंजमेंट्स करते हैं, वो मेश का इस्तेमाल आप वहाँ पर भी कर सकते हैं. कभी कभी लोग क्या करते हैं, अपने घरों में अपने प्लांट्स को भी बचाने के लिए वो उस मेश का इस्तेमाल भी करते हैं. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू फॉलो समथिंग एज इंटरेस्टिंग एज दिस. अच्छा, हम कम्युनिटी के बारे में जब बातें कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, एक और इवेंट ऐसा हो रहा है, वाइब मिक्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं ग्रैंड मस्ती नाइट, जिसमें SN, जय भैया जी एंड राउडी नमन परफॉर्म करने वाले हैं. एक डांसिंग लेजेंड चार फार जो है न्यूजीलैंड में 17 साल के बाद आने वाले हैं. 5-6 मसाला स्किट्स होने वाली हैं, कॉमेडी, मस्ती, डांस होगा और इसके साथ साथ टॉप डीजेस परफॉर्म करेंगे. युवा डांस ग्रुप मोंटो मोनिका होगी, डुअल सिंगर्स हैं मनी डिसूजा, बोथ मेल फीमेल की आवाज़ निकाल लेते वो, और अपने केतन भी वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं. बहुत सारे गिव अवेज वगैरह भी हैं. तो आपको पहुँचना है, टिकट्स जो हैं आपको टेबल सिटिंग है, स्टैंडर्ड टिकट्स आप $30, 23rd of May के दिन नेट बॉल मानोरीवा में आप पहुँच सकते हैं. डोर शाम 7 बजे खुल जाएंगे. सो दिस विल बी एन अमेजिंग अमेजिंग नाइट, इसे आप मिस आउट बिल्कुल मत कीजिएगा.

कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है हमें बताना चाहिए. कॉमेट जिसका नाम है C/2025 R3 Pan Stars, ये है, इट्स स्वंग अराउंड द सन और अब ये विजिबल हो चुका है ऑन टेलीस्कोप बायनोकुलर्स एंड साथ साथ कैमरा फॉर जस्ट ओवर अ वीक. वेलिंगटन के एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के क्यूरेटर जो हैं, इन्होंने बताया कि ये कॉमेट जो है इट वॉज गेटिंग फर्दर अवे और इट्स बेटर दैट अभी आप इसे फोटोग्राफ कर सकते हैं एंड द बेस्ट टाइम इज येट टू कम कहा जाता है फॉर फोटोग्राफ. हर रोज आप इसे बिल्कुल देखते चले जा रहे हैं लेकिन ये छोटा होता ही चला जा रहा है. आप अगर स्काई में देख रहे हैं और कहीं आपको लग रहा है कि आप कुछ अलग किस्म की चीज़ देख रहे हैं, सो दिस इज़ वॉट इट इज़. सो मेक श्योर आपके टेलीस्कोप्स रेडी हैं, मेक श्योर आप इन स्टार्स को जब इसको कॉमेट को देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसे ढूंढ सकते हैं. तो चलिए इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार. बट बिफोर आई गो लेट मी रिमाइंड यू, कल शो होने वाला है स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट का रफ़ी और मैं, जहां टाइमलेस क्लासिक्स एक ट्रिब्यूट मोहम्मद रफ़ी साहब को, जावेद अली जो बॉलीवुड के म्यूज़िक के बहुत ही बड़े एक सिंगर हैं, ये हैं पैसिफिक इलेक्ट्रिकल के साथ ये अपने गाने भी पेश करने वाले हैं विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. $59 की टिकट हैं, लास्ट फ्यू टिकट्स आर लेफ्ट. स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट के जरिए आप फटाफट जाके ये टिकट्स खरीद सकते हैं. लास्ट फ्यू एज़ आई लेफ्ट. बट अभी के लिए मैं चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ. तो कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है गुरुवार, बृहस्पतिवार, वीरवार, जो भी से कहना चाहे. मिलेंगे कल धमाके के साथ, वो दिन कहलाएगा शुक्रवार. लुक आफ्टर योरसेल्फ्स. केतन कमिंग अप नेक्स्ट.